0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए आप सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ठीक 6 बजे आप हिंदी में मुख्य समाचार सुनेंगे और 6:02 पर आपके साथ रहेंगे गीत गुंजन प्रोग्राम सुप्रभात के साथ। बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार और 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे संतोष राव। 8 बजे हिंदी में मुख्य समाचार प्रसारित होंगे और 8:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ रहेंगे गीत गुंजन। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार प्रसारित होंगे। 9:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल की तरह में गाने नए पुराने संतोष राव के साथ।

अब आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील फिगरेट महेंद्रगिरी का जलावतरण किया है। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फुकेट द्वीप के पास पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। ईरान ने होर्मुज जल मरुद्ध मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा है कि एक जहाज के अनधिकृत रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश के बाद यह समुद्री रास्ता बंद किया गया है। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। चेक गणराज्य की 21वीं वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की कोरलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी

जी हाँ साथियों, जैसे ही हम जागते हैं यानी हमारी आँख खुलती है, जब हम नींद से जागते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो स्लीपिंग मोड से धीरे धीरे एक्टिव मोड में आने लगता है और हमारे जो अरमान है वाकई में उनमें पंख लगने शुरू हो जाते हैं, हम बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे कि आप रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छे अच्छे गाने हम आपके लेकर आए। आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके साथ गीत गुंजन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो पर। अब आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी किस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने उनसे भगवान की सृष्टि लीला के बारे में प्रश्न किए और उस प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद मांग रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। बहुत ही सुंदर स्तुति की है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, और आज हम 21वीं स्तुति पर चर्चा करेंगे, 21वां श्लोक। सुखदेव जी कह रहे हैं बड़े ही भाव से भरकर श्री कृष्ण के चरणों में, यदंग भी ध्यान समाधि धौतया ध्यान उपश्यन्ति ही तत्वमात्मनः वदन्ति चैतत कवियो यथारुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। अर्थात विद्वान लोग जिनके चरण कमलों के चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं और उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। आहा, कितना सुंदर श्लोक है, कितनी सुंदर स्तुति है। यहां क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी? सुखदेव गोस्वामी जी जानते हैं कि जितने मत हैं उतने पथ हैं इस जगत में। कोई भगवान की अंग की ज्योति का ध्यान करता है, कोई योग का ध्यान करता है, कोई कर्मकांडी है ना, कोई तपस्वी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और सब सोचते हैं कि शायद हमने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। कोई योग की सिद्धियां पाना चाहता है, कोई ज्ञान में पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता है। तो ये सब जो है शास्त्र के अनुसार कई तव है, यानी जहां भगवान के सुख का चिंतन ना हो कि भगवान को सुख कैसे मिलेगा, हम ऐसा क्या करें कि हम ठाकुर जी को सुख दें। अगर उस सुख का चिंतन ना हो तो वहां कुछ भी क्यों ना हो, तो वास्तव में उस कुछ भी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, भगवान के चरणों की सेवा की प्राप्ति नहीं होती, और जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का सेवक है। आज नहीं तो कल उस स्वरूप को हासिल करना पड़ेगा, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि हम सेवक तो उन्हीं के ही हैं और सेवा कर रहे हैं माया और माइक लोगों की।

जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है, लेकिन वो जब अपनी इंद्रियों का सुख चाहता है, अपना सुख चाहता है, तभी उसके स्वभाव में विपर्यय हो जाता है। स्वभाव में ये कह लीजिए कुछ बड़ी गलती हो जाती है, उल्टा स्वभाव हो जाता है। जाना था पूर्व की तरफ, यानी पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ, चलने लगता है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। ऐसी अवस्था हो जाती है। तो जो चीज पूर्व में मिलेगी तो पश्चिम में चाहे कितने भी कुशलता से चला जाए वो व्यक्ति मिलेगा ही नहीं उसे, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। तो हाथ में क्या लग रहा है? हाथ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तापन का अभिमान। मैंने ये किया, या मैं ये कर रहा हूं, या मैं ये कर दूंगा, या मुझे ये मिल जाएगा। तो अभिमान, सिद्धियां भी क्यों चाहिए? सिद्धियां भी इसलिए चाहिए क्योंकि सिद्धियों से भोग करके एक अभिमान को प्राप्त हुआ जाए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम छोटे हो सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं, हम इस शरीर में जा सकते हैं, हम उसे ला सकते हैं। तो सब क्या है ये सब? जो भी चीज भगवान से विमुख कर दे वो चीज ठीक नहीं है, वो मनुष्य को बारंबार फंसा देगी विभिन्न प्रकार की योनियों में, ये समझना होगा। तो जो विद्वान है, यहां एक शब्द आया देखिए, विद्वान व्यक्ति, ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विद्वान व्यक्ति है ना। यानी जिनके अंदर विद्वता है, जो इंटेलिजेंट हैं, जो समझ सकते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? वो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। भगवान के चरण कमलों का, चरण जो कमल जैसे कोमल है, ठाकुर जी के चरण जो कमल के जैसे कोमल, अगर कहा तो ये भी एक ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि कमल तो भौतिक चीज है ना। तो उस भौतिक चीज से भगवान जो कि सच्चिदानंदमय घन विग्रह हैं, आनंद घन विग्रह हैं, उनके चरण कमलों का कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ना। तो क्या है? तो जब अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है तो हम कैसे कह दें कि भगवान के चरण कितने कोमल हैं? अतिशय कोमल हैं। और जैसे कमल में लावण्य होता है या लालिमा होती है, भगवान के चरण भी अरुण हैं। अरुण, उनके चरण का तल अरुण है। जैसे कमल में शीतलता होती है, ऐसे भगवान के श्री चरण कमल अतिशय शीतल हैं। त्रिताप की ज्वाला को सहते सहते एक सांसारिक व्यक्ति जब अतिशय टूट जाता है, तप्त हो जाता है, जलने लगता है, तो वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय करके ही शीतलता को प्राप्त करता है। कहा भी गया है ना, निताई चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। यानी भगवान के चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल है। तो कमल में जितनी शीतलता होती है उससे भी अधिक शीतलता चंद्रमा में होती है, और उससे भी अधिक शीतलता कोटि कोटि चंद्रमाओं में जो होती है, उन शीतलताओं से अधिक शीतलता ठाकुर जी के चरण कमलों में है। तो शीतलता है और भक्तों का वात्सल्य है वहां पर। भक्त जो है वो भगवान के चरणों का ही आश्रय लेते हैं, तो वो मकरंद है भगवान के चरण कमल का। भक्तों के प्रति वात्सल्य मकरंद है, शीतलता है, और सुगंधित चरण है भगवान के, अतिशय सुगंधित चरण। ऐसे सुगंधित चरण हैं श्री कृष्ण के कि अगर उनके चरणों की सुगंध किसी की नासिका में चली जाए तो फिर वो नासिका में ही वास कर जाएगी और उसमें फिर किसी अन्य सुगंध का

हवा या गंध का प्रवेश नहीं होगा। देखा जाए तो भगवान के चरण कमल ही सुगंधित है, बाकी जगह तो गंध है। सुगंध तो भगवान के चरण कमल में ही है। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों का जो ध्यान करता है, भगवान के चरण कमलों में जो चरण चिन्ह है उनका ध्यान करता है, तो ये चरण वास्तव में तरी है, अर्थात चरण तरी यानी नौका। ठाकुर जी के चरण नौका हैं। जगत के जीव जो भवसागर में डूबते रहते हैं, भवसागर में तैर कर जाने का कोई मार्ग नहीं है कि अपने बल पर कोई जा सके भवसागर से पार, तो फिर क्या करे, नाव का सहारा लेना होगा। और वो नाव है भगवान के चरण कमल ही। भगवान के चरण कमलों का कोई आश्रय लेगा तो भगवान एक ऐसे संत से मिला देंगे जिनके अनुगत्य में भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर भगवत प्रेम जब मिला तो फिर कुछ और मिलना बाकी ही नहीं है। भगवत प्रेम ही जीव का प्रयोजन तत्व है, यही मिलना है, यही चाहिए। लेकिन क्या अपने साधन से भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति हो सकती है? अगर हम खूब हरि राम करें तो क्या हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि प्रेम साधन से नहीं मिलता है। साधन रूपी चेष्टा को देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, तो प्रेम कैसे मिलता है? तो प्रेम तो भगवान ही देते हैं। वो अपनी आह्लादनी शक्ति की वृत्ति प्रेम को इस धरती पर डालते रहते हैं। जिसका चित्त साफ है वहां ये वृत्ति जाकर के चित्त की वृत्ति से, यानी आराधनी शक्ति की वृत्ति चित्त वृत्ति से जाकर तदाकार हो जाती है। तो जब चित्त वृत्ति आराधनी शक्ति से तदाकार हो जाती है तो वो प्रेम में परिणत हो जाती है। तो एक उदाहरण है, जैसे कि पारद यानी पारा और गंधक चूर्ण। पारा में गंधक चूर्ण अगर कोई मिलाए तो मिल नहीं सकता, दोनों कठोर है। यानी पारा तो बहुत तरल है और गंधक चूर्ण बहुत कठोर, तो मिलता नहीं है, बहुत रगड़ना पड़ता है, रगड़ते रगड़ते रगड़ते रगड़ते फिर वो जब मिलता है तो फिर एक बहुत चमत्कारिक पदार्थ सामने आता है, उसे कहते हैं कज्जली। ऐसे ही हमारे पास चित्त है और भगवान प्रेम तो दे रहे हैं पर दोनों मिलते नहीं है। पर जब साधन भजन रूपी रगड़ लगती है चित्त में, तब कहीं जाकर के चित्त साफ होता है और फिर वहां प्रेम आविर्भूत होता है, प्रेम जो भगवान ही प्रदान करते हैं अपने लिए। तो देखिए, चित्त भी भगवान ने दिया, हमने उसे गंदा कर दिया विभिन्न प्रकार की कामनाओं और वासनाओं से। अनंत जन्मों से हम गंदा ही करते आ रहे हैं इस चित्त को। चित्त अधिभूत में जी रहा है, चित्त की गति नीचे की तरफ कर दी है हमने। तो चित्त की गति को भगवान की तरफ यानी ऊपर की तरफ करने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी खूब। और जब एक बार वो ऊपर की तरफ होगा तब इसे ऊपर रखने के लिए मेहनत करनी होगी, और दुसंग से, बुरे संग से बचना होगा, ताकि चित्त जो है फिर से नीचे की तरफ ना चला जाए। नहीं तो ये चित्त, ये मन हमें फिर से 84 लाख योनियों में डुबो देगा, फंसा देगा। तो विद्वान जो लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट, वो जानते हैं कि हमारे अपने करने से कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी ही जब चाहेंगे तो होगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी तो कुछ करना है, हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। हाँ, तो गीता में भगवान ने कहा ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मन मना भव, मेरा मनन करो, मद भक्तो मेरा भक्त बन जाओ, मन मना भव मद भक्तो, तो मेरा चिंतन करो। तो चिंतन क्या करें, चरण कमलों से प्रारंभ करके मुख कमल तक लेके आए अपने चिंतन को, और मुख्य रूप से मगर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करें तो बुद्धि शुद्ध होगी, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। यहाँ पर देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़े ही साफ शब्दों में ये बता दिया है कि अन्य उपायों से बुद्धि शुद्ध होगी नहीं। किसी का कल्याण करें, किसी को पानी पिलाएं, किसी को खाना खिलाएं, ठीक है वो भी करना चाहिए, लेकिन उससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो फिर बुद्धि किससे शुद्ध होगी? तो उसका तरीका बता दिया है कि बुद्धि तो भाई सिर्फ भगवान के चरण कमलों के

0: चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध होगी। अगर कोई सोचे मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं और कुछ ना देखूं और जो है इसी चीज पर ध्यान लगाऊं, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, बस नहीं है नहीं पे ध्यान लगाऊं, तो ये जो समाधि है इससे बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। तो फिर किससे बुद्धि शुद्ध होगी? तो यहां बता दिया ना, विद्वान पुरुष भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं और चिंतन में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं भगवान के सुखद चरण कमलों की अनुभूति में, ऐसे डूब जाते हैं उस रस में, उस भाव में ऐसे डूब जाते हैं, उस सुगंध में ऐसे डूब जाते हैं, उस लावण्य में, उस सौंदर्य में ऐसे डूब जाते हैं कि आहा, उनका मन फिर समस्त कामनाओं वासनाओं को त्याग देता है। सीधी सी बात है, अगर बहुत टेस्टी चीज मिल जाए, बहुत उच्च चीज मिल जाए, तो नीची चीज को फिर कोई नहीं ग्रहण करेगा, है ना। अगर किसी को बंगले में रहने को मिल जाए और फिर कहा जाए जाओ अपनी उस झोपड़ी में चले जाओ जहां बस गंदगी ही गंदगी थी, नाली में कितनी गंदगी थी, वहीं रहने को चले जाओ, तो क्या वो जाएगा? वो कहेगा नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा बंगला मिल गया, यहाँ बड़ी सुविधाएं हैं, तो मैं तो यहाँ से नहीं हटूंगा, कहेगा ना। तो वही बात है, ठाकुर जी के चरण कमलों का जो आस्वादन लेने के आदि हो गए, फिर वो कहीं नहीं जा सकते, और उन्हीं की बुद्धि शुद्ध होती है और वही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करने वाले ही समझ पाते हैं कि वो कौन है, क्या है, भगवान क्या तत्व है, माया क्या है, कर्म क्या है, जाना कहाँ है। और फिर दर्शन के बाद, यानी ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं मन ही मन में, अपने चित्त में, उसके बाद वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगते हैं अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार, क्योंकि भगवान के तो कई अवतार हैं। श्री राम जी के रूप में भगवान प्रकट हैं, श्री कृष्ण तो है ही, नरसिंह भगवान है, नारायण भगवान है, विष्णु जी हैं, तो जहां जिनकी रुचि है, जहां जिनकी मति है, तो उस रुचि के अनुसार वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, और वर्णन करते करते अघाते नहीं हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तो ये जो आनंद उन्हें मिलता है वो कौन देता है? वो भगवान देते हैं। ये प्रेम जो उन्हें मिलता है वो कौन देता है? वो भगवान देते हैं। और वो जो मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त, यानी अब भगवान में ही रमण करते हैं, तो ये जो मुक्ति है कौन देता है? वो भगवान देते हैं। तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, सुखदेव जी कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, आप जिनके चरण कमल इतने सुंदर हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति उन्हीं का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, यानी वो समस्त प्रकार के मनोधर्म से मुक्त हो जाते हैं, है ना, और तब वो निश्चित रूप से आत्म तत्व की उपलब्धि करते हैं। नहीं तो देखा जाए तो जो पंडित गण हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए मगर उनको प्रेम की प्राप्ति तो हुई नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण तो हुआ नहीं, आंखों में आंसू तो आए

ऐसे लोगों की बुद्धि भगवत आश्रय में नहीं है, भगवान का आश्रय उन्होंने नहीं लिया, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा वो शुद्ध बात नहीं हुई। तो इसलिए वो लोग भगवान का तत्व दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुकुंद हमारे प्रति प्रसन्न हो जो ज्ञान प्रदाता है। तो ज्ञान प्रदाता कौन है? वो जिनके चरण कमलों का ध्यान करना आवेश के साथ, समाधि के साथ, चित्त के एकाग्रता के साथ, यही मनुष्य का कर्तव्य है। उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, अलावा इसके किसी अन्य प्रकार की समाधि के द्वारा बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और चाहे कोई ज्ञानी अपने पांडित्य के बल पर कुछ भी क्यों ना कर ले तो भी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते। भाई भगवान क्या है, जीव क्या है, भगवान साकार है कि निराकार है? अब यहां तो बता दिया कि यदंग्रि भी ध्यान समाधि धौतया ध्यान उपश्यन्ति ही तत्वमात्मना। यदंग्रि यानी जिनके चरण कमल का ध्यान, अब चरण कमल की बात हो रही है तो भगवान साकार ही है ना, साकार ही है। और मुकुंद की बात हो रही है तो मुकुंद तो श्री कृष्ण का ही नाम है। ऐसे मुकुंद जो मुक्ति के प्रदाता हैं, किनको मुक्त करते हैं भगवान? उनको जो उनका आश्रय ले लेते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, शरणागति लेते हैं, जो अपने पांडित्य का अभिमान छोड़ देते हैं, वो समस्त शास्त्रों के श्लोकों को जानते हैं, इस अभिमान से दूर हो जाते हैं, जो अतिशय दीन हो जाते हैं, अतिशय दीन, उनको भगवान अपनाते हैं, है ना, उनको ही अपनाते हैं। तो ये जो भाव है कि भगवान उन्हीं को अपनाते हैं जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो ये सिर्फ हमारा भाव है ऐसा नहीं है, ये तो आचार्य ही कह रहे हैं हमारे। वो तो ठाकुर जी से मांगते ही यही है कि प्रभु आप हमें कुछ और मत दीजिए, अगर देना है तो अपने चरणों का दासानुदास बना करके हमें अपने पास रख लीजिए, अपनी सेवा दे दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। मुझे अपनी सेवा यानी मेरी सेवा नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है ना। इसीलिए हमेशा वो लोग अर्थात भक्त जो हैं वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कहते हैं कि राधानाथ देखिया होइए चे भय, तनु बल रास आर बुद्धि नाश कखनो की जानी होय। राधानाथ सकली छाड़िया गैलो, हाथ दांत गैलो, बधिर होइलो, नैने ना देखे भालो। ये राधानाथ देखो अब मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अब मेरे तन का बल कमजोर हो गया है, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त सब कमजोर हो गई है, अब जाने क्या होगा, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हाथ कमजोर हो गए हैं, दांत गलने लग गए हैं, दांत टूट गए हैं, बहरा हो गया हूं, आंखों पर चश्मा चढ़ गया है। तो राधानाथ तुम्ही करुणा सिंधु, तुम्हा बिने आर केवा उद्धारी बे, तुम्ही सब लोक बंधु। हे प्रभु, हे राधानाथ, हे श्री कृष्ण, आप ही करुणा सिंधु है, ये तो सोचिए आपके बिना मेरा कौन उद्धार करेगा, क्योंकि आप तो समस्त लोक के बंधु हैं, समस्त लोगों के बंधु हैं, सब आपसे प्रकटित हैं, तो फिर मैं कहीं अलग तो नहीं हूं, अगर आप जगत बंधु हैं तो मैं जगत में ही तो हूं, तो मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं होगी? राधानाथ आगे सब निवेदये, मरण समय व्याधि ग्रस्त होए, स्मरण नाही होए। राधानाथ से सकल सिद्धि, से कृपा बिने ब्रह्म पद आदि सकल सुख उपेखी। के प्रभु अभी से

मेरी विनती सुन लीजिए आप। मरते समय ना जाने क्या होगा, क्योंकि मरते समय तो आमतौर पर शरीर बीमार ही होता है, दर्द होता है शरीर में, तो उस दर्द में ही हम हाय हाय करते रहेंगे, तो फिर आपके चरणों में प्रार्थना कब करेंगे, हो सकता है आपका स्मरण तक ना हो, है ना। तो हे प्रभु, ये जो ब्रह्मपद आदि समस्त सुख हैं, उन सब की मैं हमेशा उपेक्षा करूं, ये आप मुझे वरदान दीजिए कि कभी कोई भी पदवी स्वीकार ना करूं। तो फिर क्या चाहते हैं आप? तो फिर एक भक्त ये कहता है कि प्रभु, मुझे तो बस आपका दासानुदास ही होना है, साधन भजन किछु करिनु ना, ब्रजे वना पाई तो मां, राधानाथ करुणा करो आमा। साधन भजन तो मैंने कुछ किया नहीं प्रभु, कैसे कहूं कि मुझे ब्रजवास दे दो, मुझ पर करुणा कर लीजिए। आप अपने बल पर ही करुणा कर सकते हैं, मुझ में इस करुणा को पाने की कोई योग्यता नहीं है, पर आप अदोषदर्शी हैं, किसी में दोष देखते नहीं है, आपसे उम्मीद है प्रभु, है ना। राधानाथ ए लागे आकुल चित, हरि हरि मोर संशय होइते, भाविते होइनु भीत, राधानाथ समय होइलो शेष, तब दया मोरे किछु न देखिए, भजनेर नाही लेश, राधानाथ तुमाते सौंपित काए, रमणी जदिवा कुपथि चले, पति नामी से बिकाए। ये प्रभु, अब तो मुझे संदेह हो रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि समय तो अब बीत गया है, मेरा शायद अंतिम समय ही आ गया हो, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए, मुझ में भजन का लेश नहीं है, परंतु अपनी काया चाहे जैसी भी है मैंने आपको सौंप दी है। अगर कोई स्त्री गलत मार्ग पर निकल जाए तो बदनामी उसके पति की हो जाती है, इसीलिए प्रभु आप ही मेरे पति हैं, सर्वस्व हैं, राधानाथ लोके बहासिए तो मां, जे कहे तुमार तारे न तराईले, अयश रवे घोषणा। हे राधानाथ, लोग आप ही की हंसी उड़ाएंगे, सब कहेंगे अरे ये तो कहता था कि प्रभु मेरे हैं, तो फिर ये कैसे डूब गया, इसी का उद्धार नहीं हुआ, आपका अयश मैं सह नहीं सकता, इसलिए प्रभु आप मेरे नाथ हैं, पतित पावन हैं, साधु मुख से यही सुना है, आप मुझे अपना दास अनुदास बनाकर अपने चरण की सेवा में रख लीजिए। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी भी भगवान की कृपा मांग रहे हैं, और हम भी उनके माध्यम से भगवान की ही कृपा मांग रहे हैं, भगवान हम सब पर कृपा करें। और भी सुंदर श्लोक हैं जिन पर चर्चा जारी रखेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण। और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार, मेरा नमस्कार।

प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू क्योक द्वीप के पास पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा है कि एक जहाज के अनधिकृत रास्ते का इस्तेमाल करने की कोशिश के बाद ये समुद्री रास्ता बंद किया गया है। और अंत में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, आज है संडे, जिसको हम सब फंडे के रूप में देखते हैं। अब ये फंडे कितना कारगर होता है, ये तो डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग्स पर, मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या फिर दोस्त लोग हों, है ना। अब अगर इनके साथ आपका संबंध अच्छा है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और अगर साथ में किच-किच करने वाले लोग हैं तो फंडे की जगह आज का दिन पक्का सैड डे बनने वाला है। खैर, आप टेंशन ना लें, क्योंकि एसआर है ना आपके साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बनाने आपका दिन। अब आपका दिन कैसे मस्त बनने वाला है, बस ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आनंद लीजिए इस गीत का और सोचिए कि ये गीत बड़े पर्दे पर देव आनंद साहब नहीं बल्कि आप गा रहे हैं, और किसके लिए। अरे, उन्हीं के लिए, समझ जाइए ना, हर बात खुलकर ऑन एयर नहीं बताई जाती है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ गुनगुनाने। 1, 2, 3

जी हाँ दोस्तों, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म देखी है ना, जिसका ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में, तो आपको याद होगा कि इस फिल्म में देव साहब को एक जुआरी शातिर चोर दिखाया गया है और हेमा मालिनी से ये प्यार करते हैं और हेमा मालिनी भी प्यार करती है अपने इस जॉनी से, और ये प्यार तभी इनका परवान चढ़ता है।

जब जॉनी है ना गलत कार्यों को छोड़ देता है, मतलब इनकी जो गलत आदतें थी उनको छोड़ देता है, यानी संदेश साफ था कि अगर आपको अपनों से प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी गलत आदतों को छोड़ना होगा और सही डगर पर चलने की करनी होगी आपको कोशिश, वरना बॉबी की तरह आपको यही सुनने को मिल सकता है।

दोस्तों अब बीवी रूट कर मायके जाए, इससे अच्छा है कि आप अपने आप में सुधार लाकर आपसी संबंधों को और बेहतर बना ले। इसी में समझदारी है ना? जी हाँ। और जब ऐसा होगा तो संडे भी बन जाएगा आपका फंडे। अब मेरी बात सुनकर आप इधर उधर देखकर है ना अपने सर को मत खुजलाइए। जीवन की यही रीत है जनाब, और हम सब उसी को फॉलो भी कर रहे हैं और करना भी पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आमिर खान की तरह तो हो नहीं सकता है ना। खैर, आमिर खान के जीवन से हटकर इतिहास के पन्नों को पलटकर अब देखते हैं कि आज 12 जुलाई का इतिहास कैसे भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक घटनाओं का गवाह रहा है। आज ही के दिन यानी 12 जुलाई 1823 में भारत में बनाए गए पहले भाप इंजन वाले जहाज डायना का कलकत्ता, मतलब अब कोलकाता में जलावतरण हुआ है, मतलब जल में उतार दिया गया है। और 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड मतलब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और 1912 में आज ही के दिन पहली विदेशी फिल्म क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। और 12 जुलाई 2005 को मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने संन्यास लिया था। क्रिकेट के इस जेंटलमैन अंपायर ने 92 टेस्ट और 172 ओडीआई में अंपायरिंग की। 6 फीट 4 इंच के अंपायर डेविड शेफर्ड कैंसर से लड़ते हुए 2009 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और 1998 में आज ही के दिन फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराकर पहली बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता था। वैसे कंपटीशन के खिताब जीतना अच्छी बात होती है कंपटीशन में, है ना, लेकिन जिंदगी में अपनों का दिल जीतना और उनके लिए जीना सबसे बड़ी बात होती है। और जब अपने साथ में साथ होते हैं ना, तो संडे को फंडे बनाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबके दिलों में एक दूसरे के लिए यही बात होती है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। अभी 1983 की फिल्म बेताब का गीत हमने आपको सुनाया, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि इसी फिल्म से, मतलब बेताब फिल्म से, सनी देओल और अमृता सिंह ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और उस वक्त अमृता सिंह मात्र 16 साल की थी। और जहां तक इस गीत की बात है कि बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में तूफानों के शीशे का मकान, यानी पूरा गीत अगर आप सुनेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये गीत बारिश, पहली मोहब्बत और थोड़ा थोड़ा डर पर आधारित है। वैसे बारिश के तूफान आने पर है ना, हम जल्दी से अपने आप को छिपा लेते हैं। जी हाँ, जैसे तैसे करके हम अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन जब धूल और रेत का तूफान आता है, जी हाँ, जब धूल और रेत का तूफान आता है तो जब तक हम अपने आप को संभालते हैं तब तक धूल और रेत अपना काम कर चुकी होती है ना। इसीलिए आज कैसे बालू धूल के तूफान से

कर सकते हैं मुकाबला, ये बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यूएन ने 12 जुलाई 2023 से अंतर्राष्ट्रीय बालू और धूल तूफान मुकाबला दिवस की शुरुआत की है। और आज इस दिवस पर लोगों को ये बताया जाएगा कि पेड़ लगाओ, मिट्टी को बांधो और शुरुआती चेतावनी सिस्टम बनाओ। याद रखिए कि रेत यानी बालू का तूफान आने पर हमें घबराना नहीं है, बल्कि पहले से तैयारियां करके रखनी है। जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, क्योंकि पेड़ ऐसे तूफानों को कमजोर कर देता है। बहुत सी फिल्मों में इसका जिक्र किया गया, आपने देखा होगा कि जब तूफान आता है, एक तो एडवर्टीजमेंट भी आपने देखी होगी। खैर, एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, 1976 की फिल्म लैला मजनू में, और ये बात आपने जरूर देखी होगी क्योंकि ये फिल्म रेगिस्तान, राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर में ज्यादा फिल्म आई गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म लैला मजनू की फिल्म की पूरी शूटिंग का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान में फिल्माया गया था। तो आपको इसी फिल्म लैला मजनू का एक पॉपुलर सॉन्ग सुनाता हूं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालू अत्तू धूल तूफान मुकाबला दिवस की। मुकाबला हमें करना है तूफान का, ना कि अपनों से, और खास तौर से उन लोगों से जो आपस में प्रेम करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। सुबह के बज रहे हैं 7:39:55। दोस्तों, फिल्म कबीर सिंह का ये गीत सुना आपने कि कितना तुझे चाहने लगे हम। वैसे कबीर सिंह फिल्म में जब से कियारा आडवाणी की मासूमियत और खूबसूरती देखी तब से कई लोग उनके दीवाने हो गए। शेरशाह और भूल भुलैया 2 में भी अपना जलवा बिखेरने वाली फिल्म अभिनेत्री कियारा आडवाणी आज अपना 34वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। 12 जुलाई 1992 में जन्मी कियारा का पहले नाम था आलिया। जी हाँ, आलिया आडवाणी। लेकिन आलिया भट्ट की वजह से इन्होंने अपना नाम कियारा रख लिया। और पता है ये नाम उन्होंने कहां से लिया था? प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म आई थी अनजाना अनजानी, उसमें प्रियंका चोपड़ा का जो नाम था वो था कियारा। वैसे तो ये फिल्म अभिनेता अशोक कुमार की परपोती है और एक्ट्रेस बनने से पहले ये एक प्ले स्कूल में टीचिंग किया करती थी। खैर, कियारा आडवाणी को उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी एफएम रेनबो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और एक प्यारा सा गीत उनके लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों ये गीत फिल्माया गया था बड़े पर्दे पर जुबली कुमार यानी फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार और साधना पर, और फिल्म थी आप आए बहार आए, दर्द भरा रोमांस और आंखों से बात करने वाले राजेंद्र कुमार की 1963 की मेरे महबूब, 1964 की संगम, 1965 की आरजू जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनको आज भी देखो ना तो मजा आ जाता है। अपने बेटे कुमार गौरव के लिए ये फिल्म अभिनेता से डायरेक्टर भी बने थे। आज राजेंद्र कुमार की पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है उनको शत शत नमन। वैसे दोस्तों आज पुण्यतिथि है भारत के प्रसिद्ध व्यंग कवि हुल्लड़ मुरादाबाद की भी, विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह और हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक और चरित अभिनेता प्राण साहब की भी आज पुण्यतिथि है। आप सबकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है शत शत नमन और इस बात का इकरार भी करता है।

जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है कि जब अपने साथ देते हैं तो एक उम्मीद बढ़ जाती है और हर परिस्थिति का हम मिलकर सामना कर सकते हैं। और इसीलिए आज 12 जुलाई को हर साल के लिए यूएन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय होप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और ये इसीलिए निर्णय लिया गया ताकि दुनिया भर में उम्मीद को बढ़ावा दिया जा सके, न सिर्फ रिश्तों में बल्कि जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे हर क्षेत्र में एक सकारात्मकता आ सके। और ठीक वैसे ही जैसे हम सब आपके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर प्रोग्राम अभी आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का अगला भाग 8 बजे से लेकर आएंगे गीत गुंजन। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। 9 बजे आपके साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर फिर हाजिर होगा आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। तब तक के लिए नमस्कार।

साथियों, अब आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पूरी की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वियतनाम में फू क्यो द्वीप के पास हुई नौका दुर्घटना में 15 भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के होमोज जल मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक बंद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील फिक्रेट महेंद्र गिरी का जलवतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FFSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्ट्रूमेंट को नोटिस जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। वेनेजुएला में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,300 से अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का व्यक्त किया है। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। लिंडा नोस्कोवा ने कैरीलेना मुचोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। और पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली। आपने सुने मुख्य समाचार, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: डुम डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक कडम डुम डुम डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक कडम डुम ए

साथियों, आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और दिल्ली वालों, बहुत कुछ हमारे पिटारे में है आपके लिए। आपके आज संडे को फंडे बनाने के लिए गीत गुंजन है आपके साथ।

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के वेदर के बारे में, क्योंकि वेदर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिन भर की प्लानिंग को बिल्कुल परफेक्ट बना देता है, अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया हो कि आज वेदर कैसे रहने वाला है।

तापमान की बात करें तो मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस। और वैसे ये प्रिडिक्ट किया गया है कि बारिश जो है उसके चांस 0% है, लेकिन मानसून ने दस्तक दे दी है तो कुछ कह नहीं सकते। और ह्यूमिडिटी, जी हाँ, 90% रहेगी और AQI 506 बहुत हैजार्डियस है। यही कहेंगे आपसे कि आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड। और ह्यूमिडिटी वैसे जुलाई के महीने में बहुत नॉर्मल रहती है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इंडोर आउटिंग्स करें, यानी कि जहाँ पे AC है या आपको AQI क्योंकि ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रीदिंग में होती है तो आप कोशिश करिए उन जगहों पे जाए जहाँ पे इंडोर शॉपिंग आप कर सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें घट रही है दिल्ली और उसके आसपास, जी हाँ हैपनिंग्स। और ये इसीलिए हम आपको बताएंगे क्योंकि आज है इन हैपनिंग्स का लास्ट डे। जी हाँ, सबसे पहले फूड एंड बेकरी एक्सपो 2026 इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, इसका जो टाइम है वो है 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक, 10 से लेकर 12 जुलाई तक था ये, यानी आज है इसका लास्ट डे। और क्या क्या है इसमें? इसमें है फूड प्रोसेसिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स हैं, स्पाइसेस हैं और कोल्ड स्टोरेज का सामान है। देर किस बात की। इसके बाद है गुड़गांव में गुड़गांव प्रॉपर्टी एक्सपो सेक्टर 48 गुरुग्राम 11 से 12 जुलाई, इसकी एंट्री है बिल्कुल फ्री। इसके पहले वाले शो की भी एंट्री बिल्कुल फ्री थी। न्यू लॉन्चेस है रीसेल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, तो फिर आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा एक और चीज है दिल्ली अमेजिनेस्ट पब क्विज पॉटर्स मेनिया ग्रेटर कैलाश, आज है इसकी लास्ट डेट, फ्री एंट्री है और उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको क्विज का शौक है और जो हैरी पॉटर के फैंस हैं। तो जो एक्सपोज होते हैं वो लास्ट डे बहुत क्राउडेड हो जाते हैं, तो फिर देर किस बात की, आप जरूर जाइए इन जगहों पर क्योंकि आज है लास्ट डे।

हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपका आकाशवाणी रेनबो। और चलिए झट से मैं आपको बता दूं दो तीन चीजें और जो आसपास घटित हो रही, वो है एक तो फ्री पर्सनालिटी टेस्ट, साइंटोलॉजी, 10 मथुरा रोड, जंगपुरा बी, नियर राजदूत होटल और नियर मेट्रो गेट नंबर 2, और 10 AM ऑनवर्ड चाहिए। जी हाँ, फ्री पर्सनालिटी टेस्ट। और उसके अलावा है 18th IPCA इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो 2026 प्रगति मैदान, आप यहाँ जरूर जाइए, बिल्कुल फ्री एंट्री है।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: सात बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना 4:00 से 5:00 तक।

जी हाँ साथियों, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और चलिए झट से आपको बता दें आज की ट्रैफिक अपडेट, थोड़ा आइडिया तो आपको हो ही जाएगा। जी

जी हाँ साथियों, हम बता रहे थे आपको ट्रैफिक अपडेट, तो चलिए जल्दी से बता देते हैं की हॉट स्पॉट्स टू अवॉइड। दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 नियर सिंहपुर नरसिंहपुर और बसाई कादीपुर, और स्लो मूविंग रहेगी, रिपेयर वर्क चल रहा है और वर्क ऑन गोइंग है। तो

0: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूँ आपके साथ गीत गुंजन। और देखिए ना, समय कैसे कैसे कैसे भाग रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी रीजंस है कि हम आपको कहेंगे आप रहिए हमारे साथ। जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज के साथ। तो बता दें आपको कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन सकते हैं थोड़े ही देर में। अगला प्रोग्राम आप सुनना मत भूलिएगा, संतोष राव के साथ दिल के तराने, गाने नए पुराने। उसके बाद आप सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैशलेस म्यूजिकार आकांक्षा के साथ। उसके बाद पोस्ट बॉक्स 111, इसका समय रहेगा 11 बजे। और फिर आप 12 बजे सुन सकते हैं प्रोग्राम प्ले इट कूल। और फिर समय रहेगा 1 बजे प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, लेकर आएंगी सोनू भट्ट। तो फिर देर किस बात की है? बिल्कुल किसी बात की देर नहीं, आपका और हमारा दिल जो मिला हुआ है।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पूरी की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर

श्रीलंका और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अंत में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो ये है इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम अब शुरू होगा, दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप गीत संगीत आकाशवाणी FM रेनबो पर। और आज आपके साथ रहेगा आपका दोस्त SR यानी संतोष राव।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: Wasn't that a beautiful, beautiful song? And the song is known to evoke a lot of emotions, especially in women. And we hope you enjoyed that song. And time by the studio clock is 36 minutes past 10 a.m. And it's time for us to take the last break of the show. We promise we will be right back. But in the meanwhile, do not touch the dial and stay tuned to the station of the Nation 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Yes, welcome back, dear listeners. As promised, that was the last break of the show, and we are

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
2: धन्यवाद मैडम।
1: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
4: थैंक यू मैडम।
1: श्री अशोक कुमार हैं, आप एजीएम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक

0: एक महाप्रबंधक अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू मैम।
0: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
0: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की, परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है

0: आपके लाइफ में, तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
0: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो 2 स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं
1: जी,
0: उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन 2 स्कीम से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
0: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
1: जी,
0: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
2: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हित लाभों को जोड़ा गया तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनकी भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी
1: जी।
2: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए 2 प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं, मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है, अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है, इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
2: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी,

0: कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
1: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवाई ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पे लोगों को उपलब्ध कराती हैं।
0: जी,
1: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए।
0: जी,
1: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए? तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध हैं। आप अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 26 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है,
0: जी,
1: तो पीएमजेजेवाई 23 करोड़ 35 लाख ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 26 तक दी जा चुकी है।
0: जी,
1: पीएमएसवीवाई 53 करोड़ 97 लाख, इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें
0: जी,
1: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसवीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कार्य से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है।
0: जी,
1: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ 436 रुपए एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए।
0: जी,
1: ये उसकी कंडीशन है। और 436 रुपए में लेने के बाद एक साल के लिए उसको 2 लाख रुपए का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
0: जी,
1: तो उसका 2 लाख रुपए उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए।
0: जी, इस बारे में मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को। अशोक जी, आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: मैं ना भूलूंगा
0: जी,
1: जो शोर फिल्म का गाना है उसको आप सुनवाइए।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई दो योजनाओं की, जो कि बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, और साथ ही बीमा क्षेत्र के बारे में हम अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीएनबी बैंक से प्रबंध निदेशक श्री अशोक चंद्र जी, हमारे साथ हैं जीवन बीमा निगम क्षेत्र के रीजनल मैनेजर श्री कुलभूषण शर्मा जी। इस समय स्टूडियो में श्री ह्यूबर्ट हैं, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार हैं एजीएम एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक। और हम बात कर रहे थे कि ये योजनाएं क्यों शुरू की गई और इनका लाभ किस तरह से मिल रहा है आमजन को। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या

0: महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
0: जी,
1: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
0: जी।
1: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
0: जी।
1: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
0: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया, अशोक चंद्र जी ने, कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
2: जहां तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
0: जी।
2: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
0: जी।
2: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से 2-2 लाख का वो बीमा नहीं ले सकता
0: जी।
2: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं
0: जी
2: तो बीमा ले सकते हैं, और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है और उनके खाते का होना, और खाते को भी नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं
0: जी। अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
2: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
0: जी,
2: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख का बीमा राशि पीएमजेजेबीवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
0: जी। इस बारे में मैं आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक सवाल कि आप कौन सा गाना सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं?
2: आज का जैसा वातावरण है
0: जी,
2: किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वो मुझे मेरा वैसे भी फेवरेट गाना है, बहुत मुझे अच्छा लगता है,
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे विशेषज्ञ आज हमें बता रहे हैं दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से और क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उचित माध्यम से इसका लाभ लिया जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी।
1: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली। तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया, और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
1: कि इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग एक माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
1: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है। इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरेटा पे वो कम हो जाता है
0: जी।
1: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है,

0: भी खाते इसमें कब आना है, आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए।
1: जी।
0: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करते हैं।
1: जी।
0: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए।
1: जी।
0: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं।
1: जी।
0: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है।
1: जी।
0: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके।
1: जी।
0: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है, और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें, तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिन करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे।
1: जी।
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है।
1: सो
0: इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए।
1: जी, ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, माली काका हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है, और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
2: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
1: जी,
2: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
1: जी।
2: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है, और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं, और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझें कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
1: जी,
2: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
1: जी। और यहाँ इसी मोड पर आपकी पसंद का एक गाना
2: मेरी तरफ से अगर आप कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है
1: जी,
2: अगर इस गाने को आप सुनाए तो

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि बीमा जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और विशेष तौर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को हम समझ रहे हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारे विशेषज्ञ बहुत ही सरल भाषा में और बैंकिंग प्रणाली किस तरह से सहयोग करती है वो हमें बता रहे हैं। दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, किस तरह से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है हमारी छोटी छोटी बचत से, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आम तौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो है, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
1: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
0: जी।
1: पीएमजेजे

0: वाई या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
1: जी,
0: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है
1: जी,
0: वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
1: जी,
0: तो हमारी साझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है
1: जी।
0: दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो
1: जी। और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
2: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है किसी भी कारण से होती है तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है, तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए
1: जी।
2: दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, क्योंकि एक्सीडेंटल स्कीम है ये, इसमें 2 लाख का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से है, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 रिपोर्ट होंगी इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी
1: जी।
2: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है तो वो भी इसमें कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है
1: जी।
2: तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा
1: जी।
2: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली आकाशीय बिजली गिरने से या उसका मकान ढहने से हुई है तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए
1: जी। और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
2: सो इसमें देखिए 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा
1: जी।
2: जब उसको पता चले उसके नॉमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था, पति का उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचे हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, चूंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है
1: जी।
2: तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते हैं
1: जी। यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती
2: है। यस
1: जी। यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में

0: क्या होता है?
1: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती है, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है।
0: जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं। छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
2: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया जैसा कि अभी बताया गया।
0: जी,
2: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको।
0: जी।
2: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए, आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है।
0: जी।
2: ये दो स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
0: और कंपनियां जो हैं, जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही हैं, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
2: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उनके बैंक के खाते से ही होता है।
0: जी।
2: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं, और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको। और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं। ये किया जा सकता है इसमें।
0: जी, ये किया जा सकता है। जी, कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीवन बीमा निगम के बारे में तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में, क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं, उसमें कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
3: नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ। मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ MOU साइन करके कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है, और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ये हमारे उत्तर क्षेत्र LIC से जुड़े हुए हैं, जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं।

0: जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।
1: जी।
0: नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले, क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त हैं। या तो एक ससेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है, या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है।
1: जी।
0: तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है।
1: जी। और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
0: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।
1: जी। अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
2: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी, इंडियाज़ विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन।
1: जी।
2: इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट, अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there.
1: Gee.
2: We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one, that is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation.
1: Gee.
2: Specifically in Northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility.
1: Gee.
2: But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office, we ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong, everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: जी, thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था वो भारत का पहला गांव है माणा, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है। तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को। हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये भावना नहीं है। ये योजनाएं जो हैं हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे, और यही उद्देश्य आकाशवाणी का हमारे इस

0: कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है। तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा। मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से। हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं। श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और श्री अशोक कुमार, आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में, और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया, जैसे नॉमिनी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
0: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
3: धन्यवाद।
0: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
5: Good afternoon, the News Alliance for this hour. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding a successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. EPFO introduces Amnesty Scheme 2026 for exempted PF trusts to regularize compliance. Government withdraws 2017 notification imposing travel restrictions on Indian citizens visiting Yemen, advises to refrain from non-essential travel. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. Death toll from earthquakes in Venezuela last month rises to more than 4,300. In tennis, Wimbledon men's singles Sinner to face Zverev in men's singles final today. In FIFA World Cup, France to face Spain in first semi-final on Wednesday. England and Argentina enter in second semi-final today to lock horns on Thursday. Those were the news headlines for this hour.

별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: Welcome back. As promised, that was a very short break, wasn't it? And we are 12:30 the show time, by the studio clock is 12:30. The program live right now is Play It Cool on the station of the nation, musically, magically, 102.6 megahertz, Akashwani FM Rainbow. And yes, this is a request-based program, so if you have a song to listen to, let us know on the studio's WhatsApp number, 9868107070. Yes, that is 9868107070.

नमस्कार, लीजिए सुनिए दोपहर एक बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा पूरी की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी करेंगे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स के हॉर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णिक क्षति है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश व्यक्त की है। और टेनिस में पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मैच आज खेले जाने के कारण विंबलडन के दो खिताबों के नतीजे सामने आएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। और पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो ये थे आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरू हो गया आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, तो जरूर अपनी रिक्वेस्ट हम तक बचाइए 9868107070 पर। और मेरा वाला सॉन्ग है तो पहला गाना मेरी पसंद का आप तक, और उसके बाद आपकी पसंद आप तक और सब तक पहुंचाऊंगी मैं। सोनू भट्ट, बने रहिए हमारे साथ।

जावेद अली की ब्यूटीफुल वॉइस, रांझना फिल्म का ये गाना और मेरी तरह ही बहुत सारे लोगों का ये पसंदीदा गानों में से एक है, इस लिस्ट में शुमार है। इसके साथ शुरुआत हो चुकी है मेरा वाला सॉन्ग की। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, जैसे बारिश की झड़ी में बहुत सारी बूंदें आती है ना और आपको भिगो देती है, बिल्कुल इस तरह से इस समय स्क्रीन के साथ हो रहा है नंबर अनाउंस करने से पहले और नंबर अनाउंस करने के बाद। तो इतने सारे मैसेजेस हैं, इतनी सारी रिक्वेस्ट है और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसानी रूप में जब हम हैं तो हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, तो हम इस एक घंटे में, एक से दो के बीच में जितना पॉसिबल हो पाएगा आपकी पसंद को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, बातें कम करेंगे, गाने ज़्यादा सुनाएंगे आपको। अमरावती महाराष्ट्र से चांद सिफारिश, ये जो गाना है इसकी रिक्वेस्ट आई है और ये करने वाले हैं पंकज। और पंकज ने एक बहुत अच्छी बात हम तक पहुँचाई है, वो ये है कि आज 35 साल पूरे हो गए हैं उस फिल्म को जिसका नाम है दिल है कि मानता नहीं। और इस फिल्म के बारे में आपको बताऊं, 12 जुलाई 1991 को आज के दिन सिनेमाघर में रिलीज हुई थी, सिनेमाघरों में, और बहुत अच्छी कमाल की ये फिल्म थी। और थैंक यू सो मच ये ट्रिविया हमसे शेयर करने के लिए और ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए।

शान की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी फना, और ये रिक्वेस्टेड था पंकज कमरावती महाराष्ट्र से। और अगला जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ वो भी बहुत ही प्यारा सा गाना श्रेया की आवाज में है, उत्तम नगर दिल्ली से इसकी रिक्वेस्ट आई है, हैप्पी न्यू ईयर मूवी से। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की, और साथ ही साथ में नाम लेना चाहूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमें मैसेज आया है, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता साथ में है, और राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता भी ये सब साथ में सुन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए, सप्रेम नमस्कार भेज रहे हैं, तो ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा।

ब्यूटीफुल ट्रैक। और इसी के साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट आई रिंकू कुमार की, ये लिख रहे हैं गांव खाकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, और इन्हें एक बहुत ही गाना, प्यारा सा गाना सुनना है जो कि हमारा ओल्ड नंबर है, एक हमारी गोल्डन एरा से लेकर आई हूँ। तो इसको सुनते हैं, इसको एंजॉय कीजिए आप गाने को। मीनवाइल मैं और ढूंढती हूँ आपके मैसेजेस और चलाती हूँ आपकी पसंद। आई होप आप रिंकू आप खुश हैं, काफ़ी लंबा इंतजार हो गया है आपका, कल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भेज रहे थे अपनी रिक्वेस्ट, और आज ये गाना फाइनली ऑनर।

बिल्कुल सही बात कही, थोड़ी शिकायत होनी चाहिए, जीने का मजा तभी तो आता है। और मैं तो अपने सामने देख रही हूँ कि कुछ लोग खुश हो रहे हैं जिनके जो हम रिक्वेस्ट है प्ले कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ नाराज भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो नाराज में तो ये देखिए, हर गाना अपने आप में, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना कुछ आप समेटिव होता है, तो उसको एंजॉय कीजिए। जो जिस समय जिस पल हो रहा है उस पल में हम जिए तो कितना अच्छा है। हाँ, मनचाहा हो जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए रेडियो की बातों को समझते हुए, रेडियो को समझते हुए जो आ रहा है उसे एंजॉय कीजिए। जैसे अब जिंदगी में जो मिलता रहता है उसे हम वैसे अपनाते चले जाते हैं। ये गाना सुनिए, इसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट होपफुली वो आप ही की हो, है ना, हो सकता है ना। अच्छा, ये है उमेश मंडल मधुबनी बिहार बोर्ड से, इन्होंने कहा ये गाना वीर ज़ारा से सुनने के लिए, ये आपके लिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक चलाने जा रही हूँ मैं आपके लिए इस प्रोग्राम में, जो कि है दिल जले मूवी का। नवलू वरक ने कहा है गांव मलपट जिला उत्तर गोवा से।

को तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट बी पॉजिटिव। और अब जिला मुरादाबाद से हमारे पास पहुंचे हैं, ग्राम दूल्हापुर है ये उत्तर प्रदेश का, और इसमें बहुत सारे नाम हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह। और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक में मैं आपको शामिल करने जा रही हूँ। और इसकी रिक्वेस्ट आई है राजकुमार के सनातनी अकोला महाराष्ट्र से। इन्होंने गुड आफ्टरनून कहा, गाय भी कोई भी रोमांटिक बारिश का गाना चलवा दीजिए हमारी प्यारी वाइफ नंदिनी जी के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल गाना मैंने आपके लिए चुना है।

बारिश का मौसम तो बना ही रहेगा, बाहर भी इसी तरह का मौसम हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो बरखा बहार वाले गाने हैं ना, वो आप रेनबो पर लगातार हर प्रोग्राम में जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि मौसम उसी हिसाब से बन रहा है, तो मौसम को तो डेडिकेट करना बनता ही हर गाना। तो लवली की रिक्वेस्ट मैं चलाने जा रही हूँ, बहुत ही लवली सी रिक्वेस्ट इनकी आई है, थोड़ा सा ओल्डी नंबर है, हमारे गोल्डन ईरा का गाना है, तो इन्जॉय कीजिए आप इसे मुकेश की आवाज़ में।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रामलाल जी हैं झारखंड से, प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक इन्होंने सुना है। एंजॉय कीजिए।

इस ब्यूटीफुल सी फैमिली मूवी की जो रिक्वेस्ट आई है उसके टाइटल ट्रैक की, वो आई है प्रगति राज की पटना से, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है उन्हें बहुत अच्छा लगता है और रोजाना वो उसको सुनती है, तो इस गाने को ही सुनना चाहती हैं, शामिल कीजिए, जरूर शामिल करेंगे।

ये बादल गरजने का जो गाना है ना, ये आगे जब चलेगा तो आप देखेगा कि बेहद खूबसूरत निकल कर आएगा कुमार सानू की आवाज में। और ये गाने की रिक्वेस्ट आई है जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से, मोहम्मद सरफराज आलम, कवि प्रेमचंद प्रेमी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी और फारूक अली खान की ओर से।

और इस गाने की रिक्वेस्ट जो आई है वो आई है धुरंधर 2 का ये गाना है जय सजना, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है। वरुण वार्ष ने इसे अलीगढ़ से लिखा है।

वेल, अगली रिक्वेस्ट हमारे पास आई है वेस्ट बंगाल से सादर की, और इन्होंने धमाल 4 का बोला है कि कोई भी आप एक गाना सुनवा दीजिए। चलिए, क्या बढ़िया है।

इसी ब्यूटीफुल सॉन्ग में, जो कि गुरु रंधावा की आवाज में आप तक पहुंच रहा है, दो ब्यूटीफुल नाम भी आप तक पहुंचा देती हूँ, प्रदीप सलूजा साहब और संगीता मैम का, जो कि हमें सुन रहे हैं जनकपुरी न्यू दिल्ली से, और ये नाम आपका शामिल हुआ है इस प्यारे से गाने के साथ। होप आपको पसंद आएगा। हैव अ गुड।

एक बहुत ही ब्यूटीफुल हमारे पास आया है मैसेज, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा मिलकर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। बहुत ही अच्छे से प्यारे से लता जी की आवाज के गाने की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। सुन साहिबा सुन फ्रॉम द मूवी राम तेरी गंगा वैली।

वेल, एक बहुत ही रिक्वेस्ट तो आई थी टिप टिप बरसा पानी की, लेकिन ये गाना शायद बजाने का उतना स्कोप मिलेगा नहीं, लेकिन नाम जरूर लूंगी, सुशील यादव, रेणू यादव, मोहित यादव, नमिता यादव और कार्तिक यादव। आप बने रहिए, गाना देखिए, बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए, जरूर आपके कानों तक पहुंच जाएगा।

देखिए इस तरह से प्यार की धुन बजती रहेगी, अब सुनते रहिए। कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, इनको गाना जो सुनना था अब उसके लिए तो आप और हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इतना समय नहीं है, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तो अब क्यों आप कोशिश कीजिए तो ये बिना गाने के भी काम हो जाएगा। भले इसी के साथ आप मेरे साथ बने रहे इतने लंबे समय तक, अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं। कुछ लोग खुश भी हुए हैं जिनके गाने प्ले कर पाई और कुछ नाराज भी हुए, मुझे पता है और आप भी जानते हैं। लेकिन देखिएगा इसमें समय की कमी के अलावा और किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं है, तो इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। कोई भी नाराजगी, कोई भी मनमुटाव ना लाते हुए अपने मन में सभी प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए, सभी गानों को इन्जॉय कीजिए। हमारे सभी लिसनर्स जो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान मेरे साथ जुड़े इस प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में, उनके लिए ये गाना मेरी तरफ से एंजॉय करते रहिए। गीतिका आ गई हैं आपके लिए प्रोग्राम लेके, आशियाना उनके साथ बने रहिएगा। सोनू को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, दिन के 2 बजे हैं और पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने ओस्मान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, एक भारतीय अब भी लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते संपन्न हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्थायी शक्ति के रूप में उभरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा हरमूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। वियतनाम सरकार ने स्पीड पोर्ट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश व्यक्त की है। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और एलेक्जेंडर जेवरेव आमने सामने होंगे। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बनी रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं छोटे उस्ताद। तो आइए टांके झांके और हंसी के फुवारों के साथ अपने घर के जो बच्चे हैं इनकी परवरिश में अपना समय लगा लें और अपने समय के साथ साथ इनके साथ खूब सारा प्यार बांटें, क्योंकि कहते हैं प्यार बांटने से ना और भी ज्यादा बढ़ता है।

वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीता गौनी। अलर प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद। जब हम अपने आशियाने की बात करते हैं तो सबसे हमारे दिल के अगर करीब कोई होते हैं तो वो हैं घर के बच्चे या फिर बुजुर्ग। अब जब घर के बच्चों की बात आती है तो घर के बुजुर्ग भी जो है ना बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं हमारे साथ कि बच्चों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों की तरफ ध्यान देना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर आज के दौर में, खास तौर पर महानगरों में जहां की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा मुश्किल है, यानी कि हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, खुद के लिए समय नहीं है। लेकिन जनाब, जब परिवार की बात होती है, फैमिली की बात होती है, बच्चों की बात होती है, तो हमारी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं। हमारी जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ और बढ़ती चली जाती हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों का खान पान कैसा हो, उनकी परवरिश कैसी हो, उनकी पढ़ाई लिखाई पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन को लेकर कभी कभी हो जाते हैं गफलत में। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, एक सेट पैटर्न है और ऐसी ही दुनिया चलती है। ऐसी ही दुनिया चलती नहीं है जनाब, अब दुनिया अपनी रफ्तार से चलती है और आपको इस रफ्तार के साथ चलना है तो आप को अपने कदम से कदम बढ़ाने होंगे, लेकिन कुछ चीजों को नहीं भूलना होगा जैसे कि सेफ्टी। तो आपकी मटर गश्ती एक तरफ, आपके बच्चों की मटर गश्ती एक तरफ, लेकिन जब आप उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी ऐसी वो बातें हैं जिनको आपको नियमित रूप से हर रोज लागू करना है, बात करेंगे इसी शो पर जिसका नाम है छोटे उस्ताद।

और समय हो गया 2:16। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, और छोटे उस्ताद में आज हम बात कर रहे हैं आपके घर में जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, ये फूल ऐसे ही खिलते रहें और इनकी महक चारों दिशाओं में फैली रहे, आपके घर आंगन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा कारगर रहें, यानी कि कार्य करते रहें, सोचते रहें, विमर्श करते रहें, और जो भी आप सोच विचार करें उसे लागू जरूर करें, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है ना। सच कहा। अच्छा जी, अब घर की सेफ्टी की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हमारा बच्चा सेफ्टी है, यानी कि लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं आप निश्चित कर लें कि वो लोकेलिटी आपके बच्चे के लिए सेफ है। वैसे तो मैं यही कहती हूँ, जहाँ माता पिता वर्किंग है और घर पर अगर दादी दादा हैं, बुजुर्ग हैं, तो बच्चा वैसे ही सिक्योर हो जाता है, क्योंकि दादी दादा की जो आंख है बच्चे पर टिकी रहती है, उनकी हर गतिविधि पर रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सेफ्टी लॉक जो है दादी दादा हैं, उनके हाथ में ही चाबी है। लेकिन अगर किसी कारणवश स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप अकेले रहते हैं अपने बच्चों के साथ, आप नौकरी पर जाते हैं, घर पर आपके बच्चों के लिए कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो उसके लिए भी आप ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, या तो आप ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को डे केयर में भेजें, या फिर ये सोचते हैं घर पर नैनी लगा लें, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बच्चों को आपके पीछे देखे। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जिसको भी आप अपने घर में रखते हैं उसका वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए ही तो, उनकी देखभाल के लिए ही तो आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिसर में पनाह दी, जगह दी, इसलिए कि वो आपके बच्चों की देखभाल ढंग से करें, ना कि आप इस चिंता में ऑफिस जाएं कि बच्चा घर के केयर टेकर्स के साथ सेफ है नहीं है। तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, सारे दस्तावेज इकट्ठे करें उनसे संबंधित, तो और उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर उनके मन में आपको उत्पन्न करना होगा। आप अपने घर के केयर टेकर्स के साथ बिल्कुल मानवीय व्यवहार करें, जैसे कि आप किसी घर के सदस्य के साथ करते हैं, पर घर के बच्चों की अगर प्रोटेक्शन की बात होती है तो आपको उन्हें सख्त हिदायत देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और जिस भी डे केयर में आपके बच्चे जाते हैं, आप जब ऑफिस होते हैं, तो आप उस डे केयर की भी पूरी जांच पड़ताल कर लें। हर डे केयर में सीसीटीवी कैमराज होते हैं, ये इंश्योर जरूर करें। और उसके साथ साथ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप डे केयर्स से ये कहें कि वो आपके फोन पर आप उनके सीसीटीवी कैमरा की एक्सेस दें। बहुत सारे डे केयर्स ऐसे हैं जो आपको एक्सेस देते हैं उनके सीसीटीवी कैमरास की, जिससे जब चाहे आप अपने फोन पर अपने बच्चे की गतिविधि को देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है ना। अच्छा सुझाव। तो जिस भी डे केयर में आप जाएं, जरूर उनसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि उनको ऐसी एक्सेस जरूर दें। भले ही वो मना करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें, नहीं तो दूसरे डे केयर में जाएं। और अपने घरों में भी आप सीसीटीवी लगवा सकते हैं, जब आपका बच्चा केयर टेकर्स के साथ घर पर है तो आप अपने फोन पर अपने बच्चे की गतिविधि को देख सकते हैं। और बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए हैं, लगता है केयर टेकर की जरूरत नहीं है, तो आपको उनको ब्रीफ करना बहुत ज्यादा आसान है। यही कि जब कोई स्ट्रेंजर आए, कोई घंटी बजाए, तो दरवाजा ना खोलें, अंदर से ही बात करें। आप अपने घर के दरवाजे कुछ इस तरह से बनाएं, लोहे के दरवाजे बनाएं, स्टील के दरवाजे बनाएं, कि अगर मेन दरवाजा खोला भी जाए तो बच्चा अंदर ही अंदर से बात कर ले, स्ट्रेंजर से बात ना करे, दरवाजा ना खोले। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने बच्चों को समझानी होंगी, और अगर आपका बच्चा समझदार है तो वो हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम करेगा, किसी से बात करेगा, किसी को एंटरटेन करेगा। वैसे आपको एंटरटेन करने के लिए हरदम हर पल हम हैं यहाँ पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कौनियाल। बने रहिए, टिके रहिए और उड़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि कहते हैं कि जो जीवन है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जीवन के हर मोड़ पर हमें लोग मिलते हैं और हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। अब आप कहेंगे हर व्यक्ति तो नहीं, मैं कहूंगी हर व्यक्ति खास हो जाता है। कुछ मीठी और कुछ ऐसी यादें देखी जाता है जो कड़वी जरूर हो, लेकिन उससे हमारा वर्तमान बनता है और वर्तमान से हमारा आगे भविष्य बनता है। और आज की बात करें तो आज आपके घर में आपके नन्हे परिंदे हैं जो कुछ समय बाद उड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, और आप ये सोचेंगे वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, काश उस वक्त हमने अपने बच्चों के लिए और भी कुछ किया होता। तो काश जिंदगी में ना रहे इसके लिए, काश को आज
आज बना दीजिए।

बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ भी करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, परिंदा बनना चाहते हैं, और वो सब आपसे चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमें वो सब करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी हो सो हो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारे बच्चे ना हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है जो ईश्वर ने दिए हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें याद है बचपन के वो दिन जब हम स्कूल जाया करते थे, जब बहुत छोटे थे तो पिताजी स्कूल छोड़ा करते थे हमें अपने स्कूटर पर। फिर थोड़े और बड़े हुए, स्वावलंबी बनाने के लिए पिताजी ने कहा कि चलो खुद जाना शुरू करो, पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे और फिर स्कूल से आया करते थे सीधा सीधा रास्ता। लेकिन घर में हमेशा हिदायत दी जाती थी कि ना कि सीट पर ही स्कूल जाना और ना कि सीट से फिर घर आना, कभी भी कहीं मत ठहरना, मत रुकना, क्योंकि अगर तुम्हें आने में थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। तो ये बात लाजमी है कि अगर बच्चे घर समय पर ना पहुंचे तो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उस दौर में तो मोबाइल फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ स्कूल का लैंडलाइन हुआ करता था जहां रिक्वेस्ट करने पर ही कॉल की जाती थी। लेकिन अगर एक बार स्कूल से बाहर निकल गए तो पता नहीं होता था कि क्या करें, कैसे बात करें। घरों में भी लैंडलाइन बहुत समय के बाद आए। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको निरंतर रूप से अपने बच्चे को हिदायत देने की ज़रूरत है। समय हमारा नोट किया जाता था कि इतने बजे निकले हो तो इतने बजे ज़रूर पहुंच जाओगे, अगर 1:30 बजे छुट्टी हुई है तो उसके मुताबिक 15 मिनट में घर पहुंच जाओगे, अगर उससे ऊपर समय लग जाता तो माँ घर से बाहर आ जाती, निकल आती सड़क तक देखने के लिए कि हम कहाँ रह गए हैं। तो ये चिंता है, और अपने बच्चों के लिए चिंता होना लाजमी सी बात है, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कभी भी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अपने आंगन के फूल को कौन चाहेगा कि कोई और तोड़ कर ले जाए, कोई नहीं चाहता है। अब जब बात होती है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो झूठ बोलने लगते हैं, स्कूल से बंक मारकर। छोटे शहरों में, यानी कि हमारे शहरों में, तो हम बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा किया करते थे, आज भी किया करते हैं। लेकिन अगर आज महानगरों की बात की जाए तो महानगरों में जो स्थिति है वो एकदम अलग है। स्कूल्स भी सतर्क रहते हैं कि बच्चा समय पर अपने घर पहुँचे, इसीलिए स्कूल पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का ब्यौरा उनके पास पहले से हो। अब देखिए, या तो आप अपने बच्चे को स्वयं को स्कूल छोड़ने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन, या फिर आप स्कूल बस के माध्यम से अपने बच्चे की आवाजाही सुनिश्चित करते हैं, या फिर आप प्राइवेट वैन्स या कैब्स के भरोसे रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण स्कूल प्रशासन और आपके लिए ये हो जाता है कि अगर आप नहीं जा रहे हैं और स्कूल कैब या स्कूल बस का सहारा लिया जा रहा है, तो इसके लिए स्कूल उत्तरदायी है अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है। तीसरी बात, प्राइवेट कैब्स जो स्कूल में लगी हुई हैं, वहाँ कई स्कूल्स इस बात के लिए दायित्व लेने से मना कर देते हैं कि ये स्कूल की परिधि के अंदर नहीं है, आपका बच्चा प्राइवेट कैब से आ रहा है, तो इसकी गारंटी आप लेंगे कि अगर आपके बच्चे के साथ ईश्वर न करे कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मा आप उठाते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जानती हूँ कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, आपके लिए मुश्किल है बच्चे को स्कूल तक छोड़कर आना। स्कूल बस एक निश्चित एरिया तक आती है, वहीं से आपको अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना होता है। पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने तक के लिए आपके पास समय नहीं है, घर पर कोई उपलब्ध नहीं है, तो आप सोचते हैं क्यों ना कैब्स का सहारा लिया जाए, वो बच्चे को घर से लेंगे और स्कूल तक छोड़ फिर स्कूल से घर तक लेकर आएंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि जिन लोगों के साथ, जिन प्राइवेट कैब्स के साथ आपके बच्चे जा रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं। फिर से यहाँ आपका दायित्व बनता है कि जिस भी कैब में आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उसका भी

पुलिस वेरिफिकेशन, उसके तमाम दस्तावेज अपने पास रखें। उनको भी आप यही कहिए कि उनके पास ट्रैकर हो, ट्रैकर यानी कि वो आपकी राइड यानी कि आप कैब ड्राइवर की राइड को सुनिश्चित कर सकते हैं, मैप्स में देख सकते हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी इतने फायदे हैं आपके पास कि आप हर चीज़ का ब्यौरा अपने पास रख सकते हैं। तो ट्रैकर्स के माध्यम से बहुत से स्कूल्स में स्कूल बसेस में ट्रैकर्स लगे हुए हैं और उसका एक्सेस आपके पास होता है। जब तक आपका बच्चा आप तक नहीं पहुंच जाता, एक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि बस कहां कहां से किस किस रूट से गई और कितने बजे आप के निश्चित पॉइंट तक पहुंचेगी। ऐसा आप अपने कैब ड्राइवर्स के साथ भी कर सकते हैं, उनसे गूगल मैप या कह सकते हैं कि वो आपको लोकेशन शेयर करें। ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका बच्चा कब कहां कैसे कितनी देर में घर पहुंचा, क्या उसने कोई रूट तो नहीं बदला, रूट बदला तो क्यों बदला। तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, आप अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं, स्कूल को कॉल कर सकते हैं, पुलिस से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो रोजमर्रा में नहीं होती है। तो ये छोटी बातें लेकिन बहुत काम की बातें आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि माता पिता का दिल क्या होता है। अपने दिल के टुकड़े को बस आप दिल में रखकर जीना चाहते हैं, और आप चाहते हैं ताउम्र आप उसको यूं ही हंसता खेलता मुस्कुराता देखते रहें। तो ज़रूरी है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें ज़रूर समझाएं कि आप जिनके साथ जा रहे हैं उनके साथ आप जाएं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि आप किन किन रूट से होते हुए घर पहुँच रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। आप अपने बच्चे जो आप स्वयं से स्कूल जा रहे हैं उनको भी आप ये हिदायत दे सकते हैं कि बेटा ना की सीट पे जाना और ना की सीट पर घर वापस लौटना। बहुत से बच्चे स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, पर बहुत से बच्चों के पास फिर भी मोबाइल होता है। वो बच्चे अगर कहीं फंस गए हैं तो अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, आप बच्चों को ये हिदायत दे दीजिए। वैसे बचपन में मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था ना पिताजी के पास था, तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर आपको ये महसूस हो कि कोई लगातार आपको फॉलो कर रहा है तो आप अपना रास्ता बदल दो। ये सुनिश्चित करो, चलो ना कि सीट पर, लेकिन अपने जो चारों अपनी जो छठी इंद्रिय है उसको हमेशा खोल के रखो और ये ध्यान रखो कि कोई लगातार तुम्हें स्टॉक तो नहीं कर रहा है, तुम्हें तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, किस तरह से तुम्हें देख रहा है। ये सब बातें वो हमें समझाया करते थे। तो आप भी अपने बच्चों को जब वो घर से बाहर निकलते हैं, खासतौर पर जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको आप इस बात की हिदायत दें कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनको कोई स्टॉक ना कर रहा हो। इस बात से उन्हें आपको रूबरू कराना होगा, अवगत कराना होगा। गुड टच बैड टच हमेशा स्कूल्स में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, घर पर भी आप सुनिश्चित करें। और मैं यही कहूंगी कि आप जब ये सीख अपने बच्चे को देते हैं तो किसी उम्र तक सीमित नहीं है, एक लंबे अंतराल तक आपको अपने बच्चों को समझानी होती है ये बातें कि ना की सीट पर चलो, न दाएं देखो न बाएं देखो, लेकिन अपनी छठी इंद्री को हमेशा खोला रखो, क्योंकि आपको परेशान करने वाला व्यक्ति कहीं से भी आप पर वार कर सकता है। स्ट्रेंजर से बातें ना करो, ये तो हम हमेशा बताते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के जो छोटे बड़े तमाशे हैं इनमें खुद को हमेशा मशगूल रखें और हमारे घर में हमेशा हल्ला गुल्ला कायम रहे, क्योंकि उस हल्ले गुल्ले में हमारी जान बसती है जनाब।

मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कहानी वाला प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद छोटे उस्ताद में। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर के बच्चों की सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आपके घर के बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के सारे काम होते रहेंगे जनाब, लेकिन आपके घर के बच्चे को आपका समय चाहिए और उस समय में आप का विचार विमर्श करना, सोचना, पूछना, बात करना कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम आपाधापी में हैं, रोज़ की दौड़ भाग में मशगूल हैं, पैसा कमाने में व्यस्त हैं, ऐसे में हम यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम देखो बस बस यहीं पर हमसे गलती हो जाती है। दुनिया में हम बच्चों को लेकर आए हैं अपने लिए, यकीन मानिए, क्योंकि आप माता पिता बनना चाहते थे, आप माना उनके लिए जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा कभी कभी खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक आप ज़हनी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका समय महत्वपूर्ण है और समय से बड़ी कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं, यकीन मानिए आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है। हमने सोचा कि हमने पैसे देकर केयरटेकर को घर पर रख लिया, हमने सोचा पैसे देकर हमने बच्चे को डे केयर भेज दिया, हमने अच्छे बड़े स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिला दिया, पर फिर भी क्या आप इस बात पर मेरे साथ हामी भरते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं, तब तक दुनिया में कोई भी आपके बच्चे के बारे में सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। जब बच्चा आपका, सोच आपकी, प्यार आपका, परवरिश आपकी, तो जनाब सुरक्षा भी आपकी तरफ से ही होनी चाहिए। माना जीवन में सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अगर वही ठीक नहीं रहेंगे तो क्या कुछ ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। आधे से ज़्यादा लोग महानगरों में सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं, खास तौर पर माताएं जो ऑफिस आती हैं, यही सोचती हैं कि बच्चा क्या कर रहा होगा, खाया होगा या ना खाया होगा, केयरटेकर ने कहीं परेशान तो ना किया होगा। होती हैं ना ये बातें। पहले तो संयुक्त परिवारों में लोग रहा करते थे और घर के बच्चे कैसे बड़े हो जाया करते थे महसूस ही नहीं होता था। ये लगता था कि ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए। कुछ समय पहले जब मैं अपने एक दोस्त के घर पहुंची तो उसके भरे पूरे परिवार को देखकर इतनी आत्मिक खुशी मिली, क्योंकि घर में उस बच्चे के लिए, यानी कि मेरे दोस्त के बच्चे के लिए, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी सब मौजूद थे और घर के अन्य बच्चे। वो मेरी दोस्त काम के लिए जाती और बिल्कुल निर्भीक होकर घर लौट

लौटती बिना किसी चिंता के घर लौटती और अपने बच्चे को खुशी खुशी गले लगाती। ऐसा मुमकिन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा को कुछ लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। खैर, सबके लिए जिंदगी जैसी नहीं होती, जिंदगी भिन्न है, लेकिन जीवन जीने का फलसफा तो एक ही है, वो है अपने और अपनों की सुरक्षा। अपनी सुरक्षा भी उसमें मौजूद है। अच्छा जनाब, अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं। एक उम्र के बाद आपके बच्चे बहुत सी बातें आपसे छुपाने लगते हैं, बहुत सी बातें आपके साथ साझा नहीं करते। खास तौर पर जब वो अपनी टीन्स या अर्ली टीन्स में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि माता पिता नहीं समझेंगे। उनके दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत प्रिय दोस्त होते हैं जिनके साथ उनको सब कुछ साझा करना बहुत पसंद होता है। हर छोटी बड़ी बात बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे खुलकर अपनी बात दूसरों से कहते हैं उनके लिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल भी आता है। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या उनका मिजाज है। आप निश्चित रूप से ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के दोस्तों को उनके बर्थडे पार्टीज या घर पर किसी पार्टी पर बुला सकते हैं। हालांकि फिर सिक्योरिटी की बात कहूंगी, बहुत से माता पिता शायद इस बात के लिए एग्री ना करें क्योंकि आज के दौर में भी माता पिता ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को घर के अलावा कहीं ना जाने दिया जाए। तो आप उनके माता पिता के साथ भी संपर्क में रह सकते हैं। आजकल जितने भी स्कूल्स हैं, सारा होमवर्क, पढ़ाई, मिलना जुलना, काम की बातें सारे ग्रुप्स के माध्यम से होती है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या अन्य ग्रुप हों, जहाँ पर साझा रूप से कार्य को एक दूसरे के साथ बांटा जाता है। तो ऐसे में एक ग्रुप ऐसा भी बनाया जाना चाहिए जहां क्लास के बच्चे या वो सारे दोस्त सम्मिलित हों और आप उनकी गतिविधियों को आसानी से ट्रैक कर सकें कि उनका दोस्त कौन है, उसका व्यवहार क्या है, बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, बच्चा कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चा अपनी राह से भटक सकता है और जब राह भटकेगा, कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को घर के परिवेश में रखते हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षित है, लेकिन जब वो भटकने लगता है, जब उसको बाहर की चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है, लोग पसंद आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो जब उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने बच्चे की रोज की गतिविधियों को जानना और समझना। ज्यादा चिंता मत कीजिए क्योंकि चिंताएं जो हैं वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं द्वंद में डालती हैं। कभी कभी ना सही फैसले लेने की जगह आप गलत निर्णय ले लेते हैं। आप चिंतित अगर हैं तो अपनी चिंता का स्तर इतना रखिए कि उससे कोई सोल्यूशन निकले, ना कि ये कि आप चिंतित होते होते खुद का ब्लड प्रेशर हाई कर लें। क्यों, सही कहा ना, ज्यादा फिगर नॉट।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त गीते कौनियाल। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद और छोटे उस्ताद में आज हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के बारे में। हम अपने बच्चे को हमेशा एक सुरक्षित परिवेश में रखना चाहते हैं, उसका लालन पोषण भी इसी तरह से करते हैं कि कोई भी बाहरी तत्व आकर हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अगर हम खुद ही आमंत्रित कर दें बाहरी तत्व को हमारे घर में अंदर बैठकर हमारे बच्चे की सुरक्षा के साथ खेलने के लिए, तो उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है बताइए। तो आपकी समझदारी, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि और आपकी पैनी नज़र ही आपके बच्चे की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकती है। अब सुरक्षा कवच अगर आप अपने बच्चे का बनना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की हर गतिविधियों पर ध्यान रखिए। कभी कभी आपके बच्चे की सुरक्षा पर वार कर सकते हैं आपके घर की गतिविधियां। अब आप कहेंगे घर की गतिविधियां कैसे? घर की गतिविधियां इस रूप से कि आज डिजिटल युग में बहुत कुछ बदल गया है। हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, हर बच्चे के पास इंटरनेट है और हर बच्चे के मोबाइल पर चलने वाले इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं या जो ऐप्स हैं वो घातक सिद्ध हो सकती हैं। यकीन मानिए, आपका बच्चा क्या एक्सेस कर रहा है, किस वेबसाइट पर जाकर क्या गतिविधि कर रहा है, इस पर पैनी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आज के युग में आपने इस परेशानी को एड्रेस कर लिया, यकीन मानिए आपने आने वाले भविष्य का के लिए अपने बच्चे के ऊपर काम कर लिया। कैसे? बात करेंगे इस गाने के बाद।

अब यही तो सारी प्रॉब्लम है जब हम कहते हैं ऑल इज वेल. हाँ, सब सही है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा. लेकिन जहां हमने अपनी नजर हटाई और वहां सोचिए कि बच्चों ने कुछ ऐसा कमाल दमाल किया जिसकी वजह से बाद में आपने उन्हीं की क्लास ले ली. अरे जनाब, थोड़ी सी अगर आपने अपनी क्लास ले ली होती, यानी कि थोड़ा सा होमवर्क कर लिया होता अपने बच्चों के ऊपर, तो उनका क्लास वर्क ना एकदम दुरुस्त होता. यहाँ स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आज के युग में हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास इंटरनेट एक्सेस है, हर बच्चा जिस भी साइट पर जाकर चाहे वो लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है ऐसी चीज़ों को जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है. मन चंचल है और इनोसेंट भी, यानी कि मन को अभी नहीं पता, मन बस ये चाहता है कि जो उसको दिख रहा है वो उसको प्राप्त कर ले. ऐसे में कभी कभी बच्चे अपनी ऐसी जानकारियां दे देते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है. आपकी बच्चे की सिक्योरिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि हर वेबसाइट पे जाकर आप लॉगिन नहीं कर सकते, अपनी जानकारी नहीं दे सकते. हाँ, और एक खास बात और कि आप अपने जितने भी कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनको कृपया कर अपने पास एक सेफ जगह पर रखें. अपने बच्चों को उनका बिल्कुल उनका नंबर ना बताएं, CVV नंबर ना बताएं, OTP जो आपके फ़ोन पर आता है. आपके बच्चे को आपका फ़ोन एक्सेस करने की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जब बच्चा आपका कार्ड यूज़ कर रहा है और वो आपके मोबाइल फ़ोन को आसानी से खोल सकता है, तो OTP भी प्राप्त कर सकता है. और जब OTP प्राप्त हो जाएगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, कि आप का अकाउंट कैसे साफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. बच्चा तो ये सोच रहा है कि वो अपने लिए वो अपनी मनपसंद चीज़ को खरीद रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी नादानी के चलते आपका पूरा अकाउंट स्वाइप हो चुका है. तो ऐसी गलतियां ना हों इसके लिए ज़रूरी है कि आप पैनी नज़र रखें और अपने बच्चों को निश्चित रूप से हिदायत भी दें. इंटरनेट पर वो क्या देख रहे हैं, आज बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तुरंत जाकर वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री पर जाकर चेक कर सकते हैं. भाई, आप लोग बहुत समझदार हैं. कहते हैं कि माता पिता को ना कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं किया, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं. और माता पिता ही हैं जो हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ को पहले से जानते हैं, परखते हैं. तो आप

और उसे गलत करने पर मजबूर कर रहा है। तो सारा क्लास वर्क होमवर्क भी मैं कहूंगी आप ही को करना है। जब होमवर्क बेहतरीन करेंगे तो क्लास वर्क निश्चित रूप से बेहतरीन आपको नजर आएगा और आप यही कहेंगे कि हमने बहुत काम किया है अपने बच्चों के ऊपर, जो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपकी दुनिया आपके बच्चे हैं और हमारी इस दुनिया में आप सभी शामिल हैं। इसीलिए एफएम रेनबो के जरिए हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप ना सुखी रहें, और सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि जो हम एक ट्रेडिशनल तरीका जीते आए हैं ना जीवन जीने का, आज भौतिकतावाद में बहुत सारी लग्जरीज हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ के पीछे ना भागा जाए। और हर चीज़ के पीछे हम तब भागते हैं जब हम अकेले होते हैं, लेकिन जब परिवार होता है, घर होता है, बच्चे होते हैं, समय कैसे कैसे बीतता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दीजिए, अपनों को दीजिए, और हाँ लगातार बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। फिलहाल गीतिक आपसे लेती है इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात 4:05 से। आप स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम सुनेंगे और फिर 4:15 पर आप सुनेंगे अपना फेवरेट शो रेनबो जीनियस, जहां आप शिरकत करेंगे, यानी कि आप हमारे सवालों के सही सही जवाब देकर बनेंगे रेनबो जीनियस। लेकिन 3 बजे के बाद आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर का पुनः प्रसारण।

0: पेश है 3 बजे के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, एक भारतीय अब भी लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधा कृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण करने और मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योग जगत के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और एलेक्जेंडर जवरेव आमने सामने होंगे। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये थे 3 बजे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो पर। आगे अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। हमारा आज का विषय है थैलेसीमिया, एक बीमारी जो विरासत में मिलती है, एक संघर्ष जो जन्म से शुरू हो जाता है और एक जिम्मेदारी जो जागरूकता से निभाई जा सकती है। जो लोग थैलेसीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़कर विशेषज्ञ से अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं। आज हम जानेंगे आखिर थैलेसीमिया होता क्या है, क्या इसका इलाज संभव है और कैसे जागरूकता बचा सकती है आने वाली पीढ़ियों को। आज हम इसी अहम विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। साथ ही डॉक्टर साहब एडल्ट थैलेसीमिया यूनिट भी चलाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
4: नमस्कार शिल्पा जी, और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबको अभिनंदन करता हूँ।
3: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे अपने एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए विस्तार से कि थैलेसीमिया क्या है।
4: हाँ शिल्पा जी, ये बहुत जरूरी है। तो आज जो है, मैं आकाशवाणी को सबसे पहले धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है और लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए एक कदम उठाया है। थैलेसीमिया जो है, जैसे हम लोग मामूली तौर पे जानते हैं अनीमिया जैसे होता है कि खून की कमी है, तो थैलेसीमिया में भी खून की कमी होती है, लेकिन ये दूसरे तरह की खून की कमी है। ये ऐसी कमी नहीं है जो कि किसी को खान पान में कमी है या आयरन कम है या किसी और कारण से, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं उस कारण से खून की कमी हो। ये जो है थैलेसीमिया, एक अलग तरीके का अनीमिया है जिसमें कि खून की कमी होती है। आपके शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बन रही होती हैं, जो RBCs बन रहे होते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें कि आयरन होता है और एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन करके, वो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहा होता है वो ठीक से नहीं बनता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से या हीमोग्लोबिन में जो है गलत तरीके से माध्यम से बनने से जो आरबीसीज होते हैं वो आमतौर पे 3 से 4 महीने रहते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है 1-2 महीने में ही नष्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कितनी ज्यादा सीवियरिटी है थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ आरबीसी बन रहे हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं वो हीमोलिटिक अनीमिया की श्रेणी में करते हैं। तो जो ब्लड बन रहा है, जो आरबीसीज बन रहे हैं, वो समय से पहले, अपने समय के अनुसार नहीं, समय से पहले नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूंगा।
3: तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है, इसका होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है?
4: देखिए, ये बीमारी जो है ये जैसा मैंने बताया ये किसी खान पान रहन सहन की वजह से नहीं है। ये एक जेनेटिक दिक्कत है जिसमें कि ये जीन्स के थ्रू आती है। तो ये ऊपर माँ या बाप दोनों में ही कोई दिक्कत होगी। और एक एक कण, जैसा कि हमें पता है कि बच्चा जो पैदा होता है शक्ल सूरत पे माँ के ऊपर भी जाता है, कुछ चीजें होती है कुछ बाप के ऊपर भी जाते हैं। तो दोनों के हिस्से से जो जीन्स आती हैं और जो कि आरबीसी के कण बनाती हैं, वो एक एक अंश दोनों के माध्यम से आता है। और जब दोनों में ही ये कैरियर स्टेट जिसे हम कहते हैं वो है, या फ्लोरेट बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे में थैलेसीमिया की संभावना हो जाती है। तो ये जरूरी है कि दोनों माँ या बाप या तो कैरियर हैं या दोनों में से एक को ग्रस्त है थैलेसीमिया से और दूसरा कैरियर है, तो बच्चे में ये दिक्कत थैलेसीमिया की होने की संभावना हो जाती है।
3: अगर किसी को थैलेसीमिया है तो हम कैसे डायग्नोस करें, मतलब क्या कुछ लक्षण है कि कैसे पता लगे हाँ इसको ये बीमारी है?
4: देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा तो ये बहुत जरूरी है, मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि थैलेसीमिया में आरबीसी जो लाल कोशिकाएं हैं या जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। और इनका कारण बाहर की कोई एंटीबॉडीज वगैरह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, ये जीन्स जो है डिफेक्टिव उन्हीं वजह से है। तो ये जेनेटिक डिजीज के होने की वजह से जो थैलेसीमिया में आरबीसी बन रहे हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप जो है अपने लिए इसमें ध्यान रखें कि इनको क्या दिक्कत है थैलेसीमिया की या नहीं। तो अगर ये ऊपर से आएगा तो बच्चे में प्रभाव आता है। और क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो जाएगा तो आज ही दिक्कत तो महसूस होगी, ये 6-8-9 महीने बाद बच्चे में होती है। तो बच्चा रोता रहता है, कमजोर हो जाता है, दूध नहीं पी पाता है माँ का, या फिर जो है बढ़ना बंद हो जाता है, सांस फूलने लगती है उसमें दूध पीने में। तो ये सब दिक्कतें हैं जो बच्चे में हो जाएंगी, बढ़ेगा नहीं अपनी रफ्तार से क्योंकि खून उसका कम है। क्योंकि माँ बाप ये नहीं हो सकता है, क्योंकि दौड़ भाग नहीं रहा है तो सांस नहीं फूलेगा। 6-8 महीने का बच्चा जो है तो दूध पीने में उसे थकान हो जाएगी, बढ़ना कम हो जाएगा उसका। तो ये बहुत जरूरी है। और कई बच्चे, जब तक आप इसको संभावना नहीं रखेंगे थैलेसीमिया हो सकता है, तब तक आपको ये पता नहीं चलता है। इसलिए डॉक्टर को दिखा करके इसकी जांच कराना जरूरी है।
3: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी जी डॉक्टर, मैं आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि थैलेसीमिया जो है तो वो बच्चों में ही होता है या बड़ों में भी होता है?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक आपने पूछा। थैलेसीमिया जो है ये जन्मजात बीमारी है, तो ये बचपन से ही होती है, क्योंकि जीन्स जो हैं ये तो इनहेरिट हो जाते हैं बचपन, जब बच्चा बन जाता है तभी से। लेकिन ये किस लेवल पे, किस उम्र पे ये मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष होगा, इसकी बीमारी के लक्षण आएंगे, ये जो है ये बहुत फर्क पड़ता है। जो थैलेसीमिया मेजर है, जैसा मैंने बताया, तो उसमें तो 6-8-9 महीने में ही बच्चा जो है उसमें लक्षण आने लगते हैं, सांस फूलना, दूध नहीं पी पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। लेकिन जो माइनर है उसमें डिपेंड करता है कितना जीन्स का जो है इनहेरिटेंस है। ऐसे भी अलग अलग जीन्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया भी अलग होते हैं, जो कि फर्क पड़ता है। तो ये वयस्कों में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। तो जो अगर एडोलिसेंट है या बड़े लोग हैं, उनमें अगर थैलेसीमिया पता चलता है तो उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा कम रहता है, तो वो अपना दौड़ भाग का जो काम है या जरूरत से ज्यादा, रोजमर्रा की दिनचर्या से ज्यादा जो काम करते हैं, उसमें उन्हें करने में दिक्कत होती है।
0: डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास ही लिखते हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया का मुख्य कारण क्या है होने का, और ये जेनेटिक है तो इसे जन्म के समय बच्चे को इस बीमारी से कैसे बचाएं?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स जो माँ बाप में हैं उनसे इनहेरिट होता है। तो हाँ, एक चीज है, आगे चल करके अगर आपको पता है कि जीन्स हैं और हम लोग जीन्स एडिट कर पाएंगे, तो शायद इसका इलाज तब संभव होगा वयस्कों में भी। लेकिन जब तक नहीं ये संभव है, तब तक ये माँ बाप से बच्चे में आएगा। तो इसको बच्चे का आप जाँच करा सकते हैं, अपनी खुद की जाँच करा सकते हैं। जैसे शादी से पहले लोग जन्मपत्री मिलाते थे पहले, तो आजकल ये कई जांचें हैं जो करा लेनी चाहिए, उसमें से थैलेसीमिया की भी एक जांच है जो कि करा लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप माइनर हैं, थैलेसीमिया ट्रेट है आप में या थैलेसीमिया माइनर है, तो आपको दूसरे थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो आगे आने वाली नस्ल है उसमें थैलेसीमिया के होने की संभावना होती है। मान लीजिए आपने दोनों ही थैलेसीमिया माइनर है, हस्बैंड वाइफ, तो फिर आपको जो बच्चा जब गर्भ ठहरता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग टेस्ट होता है, तो आप उसकी भी जांच करा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना क्या है उसमें। तो ये कई चीजें हैं जो आपको पता चल सकती हैं, और आप उस हिसाब से अपना आगे का जो है मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर बच्चे को थैलेसीमिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है, वो भी संभव है। तो जो इनका सवाल है, मेरे ख्याल से इम्तियाज जी का हमने जवाब दे दिया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर
0: भी हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से बोल रहे हैं, रघुवीर सिंह बोल रहे हैं मैडम
0: जी। बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना है डॉक्टर साहब।
1: हाँ नमस्कार, रघुवीर सिंह जी बताइए।
2: जैसे मतलब कोई आदमी है, जैसे वो अपने को कमजोर महसूस कर रहा है, तो खून की कमी है, जैसे उन्होंने चेकअप किया है हॉस्पिटल में, तो खून की बढ़ावा देने के लिए कौन से स्रोत से हम बढ़ा सकते हैं खून को? अगर उसकी नहीं है तो अंग्रेजी दवाई कोई बताइए सर, बस यही पूछना है।
1: देखिए, जो आप कह रहे हैं कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अनीमिया एक है, तो वो आपने बताया कि जांच में अनीमिया आया है। तो अगर अनीमिया आया है तो अनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे एक थैलेसीमिया है, तो उसमें तो मैं आपको नहीं दूंगा कि आप आयरन लीजिए या अलग चीजें लीजिए, लेकिन अगर खुराक में कमी की वजह से, या किसी को पाइल्स होती हैं, या किसी को पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस ज्यादा होता है, अगर उनको दिक्कत है, तो वो अपना न्यूट्रिशन जो है खुराक में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आयरन के मात्रा बढ़ाने के लिए आप चीकू, अनार, सेब, केला, ये सब फल ले सकते हैं, गुड़, चना। डिपेंड करता है कि अगर आपको और कोई बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप ये सब चीजें ले सकते हैं और अपनी खुराक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको, अगर आप खुराक पूरी ले रहे हैं और उसमें आयरन के सेवन ठीक से कर रहे हैं, चीकू जैसे मैंने बताया, या आयरन ये सेब, अनार, ये सब चीजें लीजिए, तो खून में मात्रा बढ़ जाएगी आयरन की, तो एनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो फिर दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब से आपने परामर्श किया है, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने कहा था कि शादी के समय थैलेसीमिया की जांच करा लेनी चाहिए, अगर बाय चांस किसी ने जांच नहीं कराई, हस्बैंड वाइफ दोनों को थैलेसीमिया है, तो आगे बच्चे में होने के कितने चांसेस है, या उसको बच्चे को आगे ना हो, तो क्या उसके लिए भी कुछ इलाज है?
1: हाँ देखिये, ऐसा है कि अगर दोनों माँ बाप जो है दोनों में थैलेसीमिया की जीन है, मतलब अगर वो कैरियर है तो बच्चे में होने की संभावना रहती है जो 25-50% हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप थैलेसीमिया मेजर हैं या थैलेसीमिया माइनर हैं। अगर ये आपको इनहेरिट हो गई है, मतलब जन्म से बच्चे में आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीद नहीं है बच्चे को हमेशा रहना पड़ेगा। जो इसका इलाज है, अगर आपको पता चल गया है कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर है, तो फिर एक आज की तारीख में पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा महंगा जरूर है इलाज, लेकिन ये है कि अगर आप इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, कोई और सिबलिंग है, भाई बंधु है जिसका जो है बोन मैरो मैच कर सकता है या कोई और जो मैच कर सकते हैं, तो अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थैलेसीमिया आपको क्योर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जैसा आपने कहा शिल्पा जी कि अगर नहीं है बोन मैरो मैच करता है और इनहेरिट हो गया है और थैलेसीमिया आप बच्चे को है, तो फिर इनका क्योंकि खून जल्द समय से जल्दी नष्ट हो रहा है तो हमें इनको खून चढ़ाना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत रहती है और फिर समय समय पे इन्हें खून जिंदगी भर चढ़ाना पड़ता है, जो कि अपने में दिक्कत का विषय है क्योंकि खून जो है आदमी का ही चढ़ता है और वो आपको फिर ब्लड बैंक से या कहीं से इंतजाम करना पड़ता है, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों को हो तो जेनेटिक है तो बच्चे में भी होगा ही, तो ऐसे में बच्चों को होने में प्रेगनेंसी के समय क्या दिक्कत आती है या बाद में बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है?
1: देखिए जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक तो ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसका जब शुरू में तो जो है एक ना हीमोग्लोबिन एफ होता है तो वो जो है उसमें दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए बच्चे को ना शुरू के 4-6 महीने में कोई परेशानी नहीं महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो है बच्चे का हीमोग्लोबिन जो है वो ए में चेंज हो जाता है और अपना खुद का हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो वो जैसा मैंने बताया जो अपना हीमोग्लोबिन बताया वो 3-4 महीने

0: रहता है। तो जब बच्चों में भी फिर ये जब बन जाने लगता है अपना, तो फिर मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये 6 से 9 महीने पे आमतौर पे अगर अपना बिल्कुल भी थैलेसीमिया में के मरीजों में, बच्चों में नहीं बन रहा है जो थैलेसीमिया मेजर होता है, तो ये 6 से 9 महीने में आपको यूजुअली पता चल जाता है। लेकिन इनमें कुछ कुछ ग्रेडियंट्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि कुछ सीवियरिटी कम हो सकती है, तो कई बार ये 1.5 साल की उम्र पे भी पता चल सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत बन रहा हो सकता है। तो अगर आपको खून में जांच करानी होती है तो फिर आप खून में HPLC की जांच हम लोग कराते हैं। हालांकि साधारण CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होती है या हीमोग्राम होता है, जो कि कॉमनली एनीमिया के लिए कराया जाता है या रूटीन हेल्थ चेकअप्स में कराया जाता है, उसमें भी इसके बारे में हमें मतलब ज्ञान काफी हद तक हो जाता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम लोग HPLC टेस्ट कराते हैं, तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वो टेस्ट करा करके फिर हम इसको कंफर्म कर लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शरीर में आयरन बढ़ने की समस्या और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सभी समस्याओं के साथ, इन सभी चीजों के साथ थैलेसीमिया का इलाज कितना सफल है?
0: देखिए, आज की तारीख में थैलेसीमिया का इलाज काफी सफल है। पिछले मैं कहूंगा 20-25-30 साल में काफी उपलब्धियां रही हैं और काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, और स्पेसिफिकली थैलेसीमिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज है कि ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे ही रेड क्रॉस जो है वो भी, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रेड क्रॉस के और अपने ब्लड डोनेशन से सब मरीजों को जो है ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, और ये मतलब थैलेसीमिक्स इंडिया है, नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, ये जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं इनको काफी जो है मदद करते रहते हैं। और हमारी सरकार ने भी जो है अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, और भारत सरकार के हिसाब से इनके ऊपर कोई भी खर्च नहीं आना चाहिए, और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकारी अस्पताल की तरफ से मरीजों को मिलती है।
1: तो ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिससे लोगों को इसका इलाज आराम से करा सके वो?
0: देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको जो ब्लड की सुविधा है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब मैं आपको बताता हूँ 2007 में करीब 20 साल पहले हमने अपने लेडी हार्डिंग में वयस्कों का, एडल्ट्स का शुरू किया था, तो करीब 8 मरीजों से शुरू किया था। आज की तारीख में 250 से ज्यादा मरीज जो है वयस्क मरीज, बच्चे तो हैं ही इतने, 300-350 करीब बच्चे भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में करीब 250 से ज्यादा मरीज जो है ये लेडी हार्डिंग में इनका इलाज चल रहा है, और इनका कोई खर्चा नहीं आता है। ये मतलब उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, कई एरियाज से, दूर दराज के एरियाज से हमारे पास आते हैं, और इनको पूरा इलाज दिया जाता है। इस इलाज में जो खून की सुविधा है वो तो डोनेशन से हमारे पास रहती है, क्योंकि देखिए, किसी को भी जिसको हर 15 दिन पे 2 यूनिट खून चढ़ना है, वो उसके रिश्तेदार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि घर में कितने रिश्तेदार होंगे जो साल में 50 यूनिट डोनेट कर देंगे। तो इसलिए सरकार की तरफ से व्यवस्था, और जैसे मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, रेड क्रॉस वगैरह की तरफ से सुविधा काफी रहती है, और ये पीरियोडिकली ब्लड डोनेशन कैंप्स में भी जो खून आता है तो ये मरीजों के काम आता है, और इनको ब्लड की दिक्कत नहीं होती है। और पहले एक आधी बार हुआ है कि ऐसी परेशानियां हुई हैं इन्हें कि ब्लड शॉर्टेज है, कोविड के दौरान दिक्कत थी, तो कोविड में भी सरकार ने बहुत ज्यादा उपलब्ध कराया इन लोगों के लिए कि आए तो दिक्कत ना हो, तो अलग अलग सुविधा थी हमारे लेडी हार्डिंग में, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया इनका, कोविड में हम लोगों ने अलग से ख्याल रख करके इन लोगों को खून चढ़वाया। खून चढ़वाने के बाद जो है इनको हमें बाकी खून चढ़वाने के लिए भर्ती की सुविधा, उनको जो किट्स चाहिए होते हैं उसकी, खून चढ़ाने के लिए जो किट इस्तेमाल होते हैं उनकी, ट्रांसफ्यूजन सेट्स की सुविधा और बाकी दवाओं की सुविधा, ये सारी सुविधाएं और जितनी जांचें होती हैं, क्योंकि हर बार जब खून चढ़वाने आते हैं 15 दिन पे या 10वें दिन पे, तो उनकी जितनी भी जांचें हैं वो सारी की सारी सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से मुफ्त ही होती हैं।
1: तो जैसे ये थैलेसीमिया बचपन से, मतलब बचपन से जब पैदा होते हैं, जेनेटिक ही होता है, बड़े होने पर भी हो सकता है या फिर छूने से भी हो सकता है?
0: देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका, छूने से नहीं हो सकता है, ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये किस समय मैनिफेस्ट करेगा, प्रत्यक्ष रूप से आएगा, ये अलग अलग अवस्था में पता चलता है। तो जैसे कि अगर मेजर है तो हो सकता है कि बचपन में बिल्कुल जो है 1 साल 6 महीने 1.5 साल पे पता चल जाए, और जो बड़े लोगों में है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पता चले जब तक आप खून की जांच ना कराएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो सकता है 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम पे आप अपना सुचारू रूप से जीवन चलते रहें, हालांकि हीमोग्लोबिन कम रहता है इनका वो, लेकिन जिंदगी हो सकता है पूरी निकल जाए, जिंदगी पर्यंत तक आपको पता ना चले कि

0: हैं, कोई दिक्कत है तो 50 साल 60 साल पे कभी जांच कराइए आपने, तब आपको हो सकता है पता चले। और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया तो भी हो सकता है कि आपका जीवन नॉर्मल चलता रहे। लेकिन यह है कि हाँ, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनको भी कुछ दिक्कतें होने की संभावना रहती है।
1: तो मेजर और माइनर में क्या अंतर रहता है? जिसे मेजर है उसमें क्या रहेगा और जो इसको माइनर है थैलेसीमिया उसमें क्या रहेगा?
0: देखिए ये तकनीकी सवाल है, लेकिन इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कहूंगा कि जो थैलेसीमिया मेजर है आप ये समझ लीजिए वो मेजर प्रॉब्लम है, और जो थैलेसीमिया माइनर है वो माइनर प्रॉब्लम है। तो माइनर को इतनी दिक्कत नहीं होती, उनको 30 40 50 साल की उम्र तक कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। उसके बाद कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सांस फूलना या उनके फेफड़ों में, क्योंकि इतने लंबे टाइम से ऑक्सीजन थोड़ा कम चल रहा होता है तो फेफड़ों में थोड़ी सी जो ब्लड प्रेशर जैसे है वो बढ़ने की, या कुछ थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स हो सकते हैं, हालांकि बहुत कॉमन नहीं होते हैं लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है उन्हें।
1: तो जैसे जिन बच्चों को जैसे जेनेटिक है तो बच्चों में होता है, तो क्या वो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन फॉलो कर सकते हैं? मतलब खेल कूद हो गए, पढ़ाई हो गई इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, या उस पर भी इफेक्ट आता है?
0: देखिए अगर इनका हर मरीज का, हर बच्चे का जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसका अपना एक कितने दिन में आरबीसी जो है रेड सेल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं वो एक बन जाता है 10 दिन पे 15 दिन पे 20 दिन पे, तो उस पे अगर बच्चा खून नहीं चढ़वाएगा तो हम लोग कोशिश करते हैं इनका खून जो है 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर रहे, आमतौर पे ये 12 से 16 14 से 18 ग्राम होता है, तो इनका थोड़ा सा हम कम पे ही रखते हैं कि 11 से 12 के बीच में रहे और ये करीब 8 से नीचे ना जाए किसी भी हालत में। तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो गतिविधियां इनकी नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि 8 ग्राम खून 11 से 8 पे आता है, फिर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, फिर 11 पे ले जाते हैं, 8:30 पे आ गया, फिर ले जाते हैं वापस 11 पे ट्रांसफ्यूज करके, तो ये चीज तो दिक्कत थोड़ी रहती है। लेकिन क्योंकि इनको ये क्रॉनिक बहुत लंबे समय से रहती है दिक्कत, तो ये इनका शरीर अडेप्ट कर लेता है, तो ये सारी चीजें अपनी सुचारू रूप से अपनी नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं अगर इनको ब्लड जो है हर 10वें 15वें 20वें दिन जो भी उस मरीज का है नियमित रूप से अगर मिलता रहता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारे पास जो आज की तारीख में है तो ये बच्चे, हालांकि अब तो बड़े हो गए और ये 45 साल तक की उम्र के लोग जो हैं अभी बिल्कुल सुचारू रूप से अपना कार्यकाल, अपने सारे काम वाम कर रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपने पेपर भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, आते हैं अपना करते हैं और खून चढ़वा के अपनी जिंदगी पूरी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हाँ दिक्कत तो रहती है क्योंकि 15 दिन पे आना पड़ता है खून चढ़वाने के लिए, कोई साथ में आता है क्योंकि एडमिशन बनता है और खून चढ़वाने के भी अपने रिस्क रहते हैं और दिक्कत होने की संभावना रहती है कुछ ना कुछ।
1: जी आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे, बातें और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करें थैलेसीमिया पे, तो एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, रेडियो डॉक्टर शो, मेन कॉज ऑफ थैलेसीमिया, विच एज इज थैलेसीमिया एंड व्हाई कांट अ थैलेसीमिया टेक आयरन, रेनबो लवर्स बॉय, नेम हितेंद्र दास फ्रॉम असम।
2: हाँ हितेंद्र दास जी, बहुत ठीक कहा आपने। तो जैसा मैंने बताया है कि थैलेसीमिया अगर मेजर है या ज्यादा सीवियरिटी का है तो जल्दी महसूस हो जाता है, तो आपको नवजात शिशु में 6 से 9 महीने पे उम्र पे पता चल जाता है। बाकी जैसा है, आयरन इन लोगों में इसलिए नहीं देते क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था शुरू में, ये एक हीमोलिटिक एनीमिया है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी बन रहे हैं उसमें आयरन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ये ग्लोबिन चेन्स हैं वो खराब होती हैं इसमें, और वो जीन्स के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो आयरन की कमी की वजह से इसमें अनीमिया नहीं होता है। जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है उसमें, इसमें हीम आयरन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसकी वाली प्रॉब्लम है। तो वो चेन्स जो है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी जो है, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन पेशेंट्स में आयरन की कमी नहीं होती। दूसरा, इन पेशेंट्स में हम हर 15 दिन पे या हर 10 दिन पे या हर 3 हफ्ते पे अगर हम खून चढ़ा रहे हैं, तो ये जो खून चढ़ता है ये तो नॉर्मल आदमी का खून चढ़ता है, तो ये आयरन रिप्लीट होता है, इसमें आयरन अच्छे खासा मात्रा में होता है। तो इनका अपने शरीर का आयरन जो कि पुराने आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी हम खून देते हैं उसका आयरन इनमें होता है। तो इसलिए ये इनमें आयरन हम लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि जो आयरन रिच फूड्स होते हैं हम इन्हें हिदायत देते हैं कि ये ना लें, ये बहुत जरूरी है। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि थैलेसीमिया के मरीजों को आयरन यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनमें नहीं होता है यूजुअली आमतौर पर।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये है केशव बिष्ट का, ये लिखते हैं, सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसका सक्सेस रेट क्या है थैलेसीमिया में?
2: देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा केशव जी, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब कि आपको किसी और मनुष्य का बोन मैरो, मतलब जो गूदा है अपनी हड्डी के अंदर जो होता है, मैरो जिसे कहते हैं, वो आपको निकाल करके इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी विधि है। एक तो आपको पहले मैच करना पड़ता है, ये कई लेवल की मैचिंग होती है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग होती है, HLA की मैचिंग होती है, ये सब जो है प्रक्रिया अलग होती है, इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, जो डोनेट करता है उसके टेस्ट होते हैं, जिसमें रिसिपिएंट जो थैलेसीमिया से ग्रस्त है उसके अलग टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मैचिंग होती है कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर मैचिंग की संभावना रहती है तो फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, और उसके बाद ये बोन मैरो जब ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट मतलब जब हो जाता है, तो शरीर उसे रिजेक्ट ना करे, जैसा आपने पूछा है। तो थैलेसीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सफलता काफी ज्यादा रहती है। हालांकि किसी भी ट्रांसप्लांट में आप उस आदमी के लिए पूछें तो वो 0% या 100% दोनों ही हो सकती है, क्योंकि जो हम आंकड़े बताते हैं 40% सक्सेस रेट है या 50% सक्सेस रेट है, वो तो 100 लोगों में 50 लोगों में हम मान करके चल रहे हैं या 40 लोगों में मान के चल रहे हैं, अगर हम 40% कह रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य के लिए तो उसमें वो अगर सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, नहीं सक्सेस है तो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड हो जाता है, तो थैलेसीमिया में कोशिश करना चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल होने में दिक्कत होती है।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये है जोगिंदर सिंह का, ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जोगिंदर दहिया सोनीपत से बोल रहा हूँ, मेरी बेटी को इंटरमीडिएट थैलेसीमिया है, उसकी उम्र 10 वर्ष है, मेरी बेटी का इलाज दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है और गुड़िया का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम के पास रहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गुड़िया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसका अधिकतम खर्च आपके अस्पताल में कितना होगा?
2: देखिए, अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हम अपने अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सालों में शुरू हो जाए, अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, इसका आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अलग अलग अस्पताल में अलग अलग खर्चा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 ग्राम खून है तो क्या इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है या नहीं, क्योंकि अगर थैलेसीमिया माइनर है, कई बार इनको ब्लड तो कम होता है जैसा मैंने बताया, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है तो हो सकता है कि अभी तक नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, निगरानी में रखना पड़ेगा, और क्या दिक्कतें हैं वो आपको मरीज को देखनी पड़ेगी कि क्या परेशानियां हो रही हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और आज आपको अवगत हुआ है कि हाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल इलाज है, तो अपने डॉक्टर साहब से इससे जरूर पूछें, और अब वो आपको जरूर राय देंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं बताया है तो लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा। खर्चा तो एक चीज है ही, लेकिन एक सक्सेसफुल डोनर भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपका एक कोई और बच्चा है जो कि थैलेसीमिया से ग्रस्त नहीं है, तो उसका जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट करना सबसे उचित रहता है। तो ये कई चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, और सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पहले जरूरत है नहीं वो भी देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर माइनर में हम लोग यूजुअली एडवाइज नहीं करते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और दिक्कत है उससे पहले, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको एक बार इसका सोच लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से जरूर परामर्श करें और वो आपको इसमें गाइड कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा, तो ये कितनी बार कराना पड़ता है, कितने समय के इंटरवल्स पे कराना पड़ता है?
2: देखिए, अब बचपन में आपको हो सकता है कि 3-3 हफ्ते पे कराना पड़े, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर में, क्योंकि हर

0: तीन हफ्ते पे खून चढ़ रहा है या हर दो हफ्ते पे खून चढ़ रहा है, तो कई बार स्प्लीन जैसे है या लिवर है, ये ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं और ये आपके जो ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसीज हैं जो आपको मिल रहे होते हैं, जो मरीज को मिल रहे होते हैं अच्छे, मतलब नॉर्मल आदमी के ब्लड, वो आरबीसीज वो भी डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दो हफ्ते से हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है हर हफ्ते करना पड़ जाए, तो ये बहुत सारी अलग समस्याएं होने की चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है। और इसलिए हमें मरीजों को देखना पड़ता है कि क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं या क्या परेशानी हो रही हैं, तो इन सब परेशानियों पे निगरानी रखना वो भी एक, जैसे आपने पूछा कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो सब सुविधा भी हमें बीच बीच में देखनी पड़ती है। और बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें, आप कहेंगे तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, मैं HPLC रिपोर्ट शोज RBC काउंट 3.8 HB इज 8.4, इट इज थैलेसीमिया और नॉट, विद रिगार्ड्स चित्रा सेठी अजमेर।
0: ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या कुछ आपने पार्टली बोली है, ये जिन डॉक्टर साहब से आपने कराई एक बार देखना पड़ेगा। उसमें HPLC रिपोर्ट में आपका हीमोग्लोबिन A2F ये सब चीजें का प्रोपोर्शन आता है, और जो थैलेसीमिया के लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो 95% से ज्यादा होना चाहिए, तो ये परसेंटेज जो है अलग अलग रहती है। तो इसको मैं आपको वैसे भी तकनीकी जो है टेक्निकल बिल्कुल एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उससे ना पैनिक बढ़ जाता है और हर कोई अपना HPLC कराना देखना शुरू कर जाएगा। तो ये शायद आपकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट और RBC की रिपोर्ट और HPLC की रिपोर्ट कुछ मिक्स हो गई है जो आपने भेजी है, लेकिन जिन डॉक्टर साहब ने कराई है उनसे जरूर एक बार आए लें। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसमें HPLC में मुझे लगता नहीं कि आपको थैलेसीमिया होगा अगर आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे। तो
1: इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, कितने हीमोग्लोबिन के नीचे PRBC का ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए और कितने हीमोग्लोबिन काउंट के ऊपर हमें पेशेंट्स को रखना चाहिए, आयरन ओवरलोड क्यों हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन बाय अनिल शर्मा फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश।
0: मैं मानता हूं कि ये सारे सवाल जो है ये थैलेसीमिया रोगियों के लिए हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर थैलेसीमिया रोगियों में देखिए, हीमोग्लोबिन अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है और 8 ग्राम है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको खून चढ़ाया जाए। तो लेकिन अगर थैलेसीमिया है और अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है और वो कम हो रहा है हर बार, जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं 11 से 12 के बीच में रहे या 10 से 11 के बीच में रहे, अगर वो कम होकर के 8, 8.5 के आसपास आ रहा है तो जरूर खून चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका, जैसे अभी बात हुई थी, किसी का थैलेसीमिया ट्रेट है और 9 ग्राम ही हीमोग्लोबिन रह रहा है, अब वो 9 से 8.5 हो गया है, तो ये लेबोरेटरी वेरिएशन हो सकती है, कुछ और कारण हो सकते हैं जिसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, इस पे खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं जो है रेडियो के, आकाशवाणी के माध्यम से, मैं ये राय नहीं दे सकता हूं बिल्कुल कि अगर आपका 8 है तो आज खून चढ़वाना ही है या आपका 10 है तो आज खून नहीं चढ़वाना है। देखिए मैं बहुत साफ बात बताऊं, अगर आपका 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है और आज 10 हो गया है तो हो सकता है आपको खून चढ़वाने की जरूरत पड़े। लेकिन मान लीजिए आपका कल तक 11 ही ग्राम खून था और आज वो 10 या 10.5 आ रहा है तो आपको खून चढ़वाने की जरूरत ना पड़े। तो ये कई चीजें हैं जो बताती हैं कि आपको खून चढ़वाना है या नहीं। थैलेसीमिया में मैंने बस ऐसे बताया, जो लोग थैलेसीमिया मेजर हैं जिनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उनका हम कोशिश करते हैं कि 2.5 ग्राम या 3 ग्राम तक अगर कम हो जाता है तो हमें उन्हें खून चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि उनको बाकी उनकी ग्रोथ पे या उनके काम करने में दिक्कत नहीं हो।
1: थैलेसीमिया पहचानने के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस बीमारी की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? क्या आम ब्लड टेस्ट से इसकी पहचान की जा सकती है या कुछ डिफरेंट टेस्ट है इसके लिए?
1: देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिल्पा जी आप। इसमें आम ब्लड टेस्ट से हम इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से हमें इसका जो है HPLC यूजुअली हम लोग कराते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कितना हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है, उसी से ही इसको जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लोग कराते हैं, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है कि कितना जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, कितना जो है एबनॉर्मल है।
0: और इसका इलाज कितने प्रतिशत मतलब सफल है, मतलब कितने प्रतिशत वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जो इलाज ले रहे हो?
1: देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में हमारे पास कई इलाज हैं संभव, जिसकी वजह से जैसे खून चढ़ना है वो तो एक चीज है ही, लेकिन खून चढ़ने से आयरन की मात्रा भी बढ़ जाती है जैसे कि बात हुई थी, तो उसको भी हमारे पास पहले एक ही दवा आती थी। आज की तारीख में हमारे पास 3 दवाएं हैं और वो मुंह से ली जा सकती हैं, पहले तो हमें उसे इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। तो काफी ज्यादा तकनीकी हमारे पास एडवांसमेंट हो गए हैं और इसमें रोगी जो हैं उनको, थैलेसीमिया के जो मरीज हैं उनको नियर नॉर्मल जो लाइफ है वो अपनी ये सुचारू रूप से कर सकते हैं, व्याप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है सरकार ने जो है डिसेबिलिटी में भी थैलेसीमिया को इंक्लूड कर लिया है, उससे भी इन लोगों को काफ़ी जो है आराम मिला है और ये लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके लिए मेहनत की है और आज की तारीख में थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी है, तो और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं थैलेसीमिया सर्टिफिकेशन होता भी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन मरीजों को मतलब नॉर्मल

0: लाइफ अपना खुद जो है स्वावलंबी बन करके अपना खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और अपना सारा रोजमर्रा की जिंदगी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आज की तारीख में।
1: तो इसका जो इलाज है वो महंगा है या इजी टू अफोर्ड है? मतलब
0: देखिए अगर सरकार मदद भी करेगी तो इजी टू अफोर्ड तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि दवाइयां बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं और दवाइयां लेनी भी ज्यादा मात्रा में पड़ती हैं और रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, साल दर साल लेनी होती है। सिर्फ ब्लड चढ़वाना और ब्लड को चिलेट करना, जो आयरन है उसको चिलेट करना या उसको कम करने की दवाएं, ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी क्योंकि आयरन काफी जाता है, उससे आयरन शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है, तो उस अंगों में दिक्कतें जो होती हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन की दिक्कत होती है और हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, थायराइड की, डायबिटीज, ये सब दिक्कतें जो हैं इनका भी इलाज हमें करना पड़ जाता है। तो अगर आप मानेंगे तो कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है महंगा तो हो ही जाता है, तो अगर आपके पास कई बीमारियां हो जाएंगी जिनमें कि आयरन जहां जहां जमा हो रहा है, जिस जिस अंग में जमा हो रहा है, उसकी हमें अगर इलाज करना पड़ेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सस्ता होगा। जो इवन हमें इन फिल्टर इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो खून चढ़ता है वो साधारण खून नहीं होता है, ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड खून चढ़ता है जिसमें काफी खर्चा आता है। तो सरकार हमारे तो सरकारी अस्पताल, इसलिए सरकार खर्चा बियर करती है। और नहीं तो हम लोग जो ल्यूकोसाइट डिप्लीटिंग फिल्टर यूज करते हैं उसका एक फिल्टर का कॉस्ट ही 1800-2000 रुपए है, तो हर ट्रांसफ्यूजन के लिए वो यूज होते हैं, तो खर्चा सस्ता नहीं है। इसीलिए किसी अस्पताल से या एनजीओ के तहत अगर इन्हें मिल रहा है तो इनको काफी फायदा रहता है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मेमन सर, थैलेसीमिया माइनर, क्या आयरन सप्लीमेंट ले सकते हैं?
0: देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि मैं थैलेसीमिया के लिए कह चुका हूं कि आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। तो अगर थैलेसीमिया माइनर है तो भी आयरन सप्लीमेंट जब तक बिल्कुल आयरन डिफिशियंसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तब तक नहीं लेना चाहिए, जरूर डॉक्टर से परामर्श करें। कायदे से तो थैलेसीमिया माइनर में भी कुछ हीमोलिसिस या कुछ आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, इसलिए उनको आयरन की कमी नहीं होती है, आयरन ज्यादा ही होता है। तो जब तक बिल्कुल ही ये ना पता हो कि हाँ आयरन कम है शरीर में तभी लेने की जरूरत है, अदरवाइज लेना नहीं चाहिए।
1: तो क्या इससे जुड़ी कोई रीसेंट रिसर्च है कि जिससे लगे कि
0: हाँ
1: हाँ इस आगे नहीं
0: जरूर,
1: होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफी नई दवाइयां आ रही हैं जिनसे लेने से, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, कुछ लोग किसी किसी चीज का सेवन करते रहते हैं, जिनसे आपका आयरन का ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स है उसका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, और जो आपके अपने शरीर में बन रहे होते हैं आरबीसी, जो रेड सेल्स बन रहे होते हैं, लाल कोशिकाएं बन रही होती हैं, वो ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, उनकी रहने की अवधि थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो आपको खून उतनी जल्दी नहीं चढ़वाना पड़ता है। तो ये कई नई दवाइयां आई हैं अभी हाल में, पिछले 3-4 साल में, जिससे कि हम ये संभव प्रयास कर सकते हैं कि इनका खून अगर 14 दिन पे चढ़ रहा है तो हो सकता है कि 17 दिन पे चढ़े या खून की चढ़ाने की मात्रा कम हो जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आपने बताया था कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका इलाज है, तो क्या उससे ये, जैसे डिजीज जेनेटिक है, तो क्या उससे ये है कि आगे की जो जनरेशन है उसको ये नहीं होगा अगर इंसान अगर ये करा लेता है तो?
0: नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट उस मरीज के लिए तो ठीक है, लेकिन जीन्स नहीं चेंज होती है, तो आप ट्रांसप्लांट करके जो है बोन मैरो बदलते हैं, जीन्स नहीं चेंज होती हैं, तो जीन्स तो वही रहेंगी, तो आपको ध्यान आगे की नस्ल के लिए तो देना पड़ेगा।
1: कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आगे ये चीज ठीक हो जाए, आगे जनरेशन में ना हो?
0: देखिए उसके लिए जरूरी ये है कि जो कैरियर है थैलेसीमिया का, वो जीन जो एक है अंश है, तो उससे मैरिज जो है वो नॉन कैरियर करे, जो कि नॉर्मल आदमी है जिसमें बिल्कुल भी कैरियर की अवस्था नहीं है, तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा।
1: तो आपने वैसे ये बताइए हमारे श्रोताओं की, जिन लोगों को थैलेसीमिया है तो उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए?
0: देखिए थैलेसीमिया रोगी जो है, मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब ये शुरू किया था हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग में वयस्कों का क्लिनिक, तो दूर से मुरादाबाद, बड़ौत, इधर जगह से लोगों के शाम को फोन आते थे कि डॉक्टर साहब ये आपके यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, खून चढ़ रहा है इस मरीज का, ये थैलेसीमिया का है, तो मैं इनको ये दवा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो बहुत ही असमंजस होता था कि भाई ये दवा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है उन डॉक्टर साहब की भी कि वो पूछ रहे हैं, तो मैं ये एक आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूं कि थैलेसीमिया रोगी जो है बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उन्हें दिक्कत ये है कि उन्हें खून चढ़वाना पड़ता है और इसलिए उन्हें खून संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है, और थैलेसीमिया से ग्रस्त होने की वजह से उनको अपने शरीर में कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनको कोई परेशानी और नहीं होती है,

0: तो उसे थैलेसीमिया हो। तो आज मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के बारे में तो जरूर देखें और ये सोचें, अगर आपकी शादी नहीं है तो अपने बारे में भी स्टेटस क्लियर कर लें, क्योंकि कोई भी, अगर हम लोग सब जागरूक रहेंगे और अपना हमें पता होगा कि हम थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं है, मैं मेजर को तो पता ही है, जो थैलेसीमिया माइनर अगर हमें पता है कि हम नहीं है, तो कम से कम हम आगे आने वाली नस्ल को तो थैलेसीमिया जैसे रोग से बचा सकते हैं, और तभी जाकर के धीरे धीरे कम होगी ये बीमारी और हमारा जो थी परेशानियां हैं वो किसी को हमारे घरों में नहीं झेलनी पड़ेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे आखिर में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, सबको स्वस्थ रहना चाहिए और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो कि प्रिवेंट की जा सकती है और जिसके लिए सरकार काफी रोकथाम कर रही है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी भी नेस्ट्रॉप्ट और काफी जांचें होती हैं, तो उसका जरूर जांच कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं अपने जो जच्चा है उनका, जिससे कि ये सारे टेस्ट हों, और अपनी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जब भी अगली बार कराएं तो डॉक्टर साहब से जरूर एक बार थैलेसीमिया के बारे में पूछें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और आप आगे आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बचा सके।
1: तो श्रोताओं, थैलेसीमिया से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ भी लड़ी जाती है। अगर समय रहते जांच हो और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही उपयोगी और जागरूकता से भरे कार्यक्रमों के लिए। साथ ही आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है health@delhi.gmail.com। दोस्तों, आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो श्रोताओं, आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बीमारी कोई भी हो, जागरूकता जरूरी है, और यही संदेश लेकर आता है आपका अपना कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्य के पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है, एक भारतीय अब भी लापता है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान कई समझौते संपन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभम की प्रतिमा का अनावरण करने और मन्नम स्मृति मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा कर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योग जगत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और एलेक्जेंडर जेवेरेव आमने सामने होंगे। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार, बनी रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ सकें, क्योंकि 24/7 हम प्रयासरत हैं, आपके लिए कार्यरत हैं, आपके लिए। कहते हैं कि जीवन हर व्यक्ति का अलग अलग इस मायने में है कि हम सभी के पास अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग जिम्मेदारी हैं, अलग अलग कठिनाइयां हैं, लेकिन अंततः जीत उसको जरूर प्राप्त होती है जो अविरल बहता रहता है, जिसने रुकना नहीं सीखा, जिसने सिर्फ ये जाना है कि वो चलता रहेगा और जीवन की कठिनाइयों को हराकर अपने गंतव्य को, अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेगा। और आपकी इस प्राप्ति में, आपके संघर्ष में, आपकी खुशियों में, आपके दुख में, हम सदैव हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम लम्हे, और उसके उपरांत हम आपके लिए लेकर आएंगे विशेष कार्यक्रम रेनबो जीनियस, जहां आप हमारे 5 सवालों के सही जवाब देकर बन जाते हैं विजेता। आप जीवन के हर संघर्ष में विजयी हों, यही हम चाहते हैं। प्रयासरत रहिए और जिस चीज की कामना आप कर रहे हैं, प्रयासों के माध्यम से आप निश्चित ही उसे पुनः प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश, बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो पर हमें। और हम अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं. आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं. व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता. आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है. इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें. निर्णय लेने की क्षमता. एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं. इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए. सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है. यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है. निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039.

0: 0951522739. I repeat, 0951522739. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीख कर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। With this, we conclude today's program. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0951522739. I repeat, 0951522739. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और लेकर आई हूं आपके लिए आप ही का अपना प्रोग्राम रेनबो जीनियस, जहां आप 5 सवालों के सही जवाब देकर बन जाते हैं सरताज यानी कि आज के विजेता यानी कि रेनबो जीनियस। तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए अपनी दोस्त को, क्योंकि आपके लिए चुन

चुन के सवाल लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको सभी सवालों के सही सही जवाब पता है और इस बात को आप तब साबित करेंगे जब आप सवालों के सही जवाब देंगे। तो भाई अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। वैसे हम जानते हैं कि आप सभी को हमारे नंबर्स पहले से ही पता होते हैं, लेकिन अगर कोई नए श्रोता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तो आपके लिए नंबर्स ये हैं 2342-1080 या फिर 2342-1084। इन जादुई नंबरों पर आप जैसे ही कॉल मिलाएंगे आप तक आप हमारी दिल की धड़कन यानी कि आपके फोन कॉल की आवाज हमें जरूर सुनाई देगी। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 01101। तो जल्दी से कॉल कीजिए और फिर देखिए कैसे जादू होता है। जी जादू होता है यही एफएम रेनबो के स्टूडियोज में।

समय हो गया 4:16 और कॉल्स मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। इस बात से ये पता लगता है कि आपको इस प्रोग्राम से कितनी मोहब्बत है। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए गीतिका को।

0: प्रोग्राम रेनबो जीनियस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम जानते हैं कि आप सब बहुत ज्यादा बेसब्र हैं कि कब आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कब आप बन जाएंगे रेनबो जीनियस। तो आपका समय अब शुरू होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट यानी कि पहले कॉलर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं संध्या बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: संजय जी, तो
1: जी
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: लिए पहला सवाल ये है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, सबसे बड़ा
1: मैम
0: बैंक?
1: थोड़ी सी आवाज अपनी तेज कीजिए, थोड़ी सी स्लो आवाज आ रही
0: जी,
1: है।
0: हमने तो अपनी आवाज बहुत तेज की हुई है
1: हाँ जी,
0: अब।
1: हाँ जी, बोलिए
0: जी, क्या
1: बोलिए।
0: बात है, क्या बात है, बताएं कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है?
1: बैंकों का बैंक
0: जी, सबसे बड़ा बैंक।
1: आरबीआई।
0: वेरी गुड। पीलिया यानी कि जॉन्डिस किस अंग का रोग है?
1: क्या 34 क्या बोला आपने?
0: पीलिया, पीलिया आपने सुना होगा नाम, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, किस अंग का रोग है?
1: अच्छा, यहाँ तो का
0: थोड़ा और पास जाइए। आंतों के पास और क्या है?
1: अच्छा, और क्या है ये दांत
0: जी
1: का?
0: नहीं, पीलिया, पीलिया जॉन्डिस बोलते ना, पीलिया हो गया है। किस
1: अच्छा,
0: अंग में होता है?
1: दिमाग
0: हाँ जी,
1: चलिए पता नहीं, पर
0: चलिए
1: कुछ
0: कोई
1: नहीं
0: बात नहीं।
1: बताऊंगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमें कॉल करने के लिए और जवाब देने के लिए। हेलो हेलो हेलो हेलो दोस्त, आपकी,
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
1: हाँ, केशव चक्रवर्ती, लखीपुरा से। जी
0: वाह, क्या बात है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इस बार आपने एकदम सटीक समय पर कॉल लगाई है ना। तो जी, आप हमें बताएं कि विश्व महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है?
1: विश्व महिला दिवस।
0: जी,
1: हाँ, 1 मार्च।
0: वेरी गुड। अभी हमने एक दोस्त से पूछा था, पीलिया जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, किस अंग का रोग है, यानी कि शरीर के किस हिस्से में होता है?
1: हाँ, ये लीवर।
0: वेरी गुड, तो सही सवाल आपने दिए, इनका जवाब दिया। अच्छा, आप संगीत सुनते हैं?
1: हाँ, संगीत तो सुना है।
0: अच्छा, आपको पता है कि राग भैरवी किस समय गाया जाता है?
1: मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
0: डिफिकल्ट
1: नाग
0: क्वेश्चन है।
1: है।
0: चलिए, अब संगीत में रुचि नहीं रखते हैं जो लोग, उनको शायद ना पता हो। खैर, कोई बात नहीं, आप हमें ये बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी?
1: प्रथम पंचवर्षीय सम्मेलन, ये तो शुरू हुआ 1951।
0: वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप हमें ये बताएं कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में?
1: क्या मैडम, आवाज थोड़ा आ रहा है
0: साइलेंट
1: प्लीज?
0: वैली, बहुत तेज बोल रही
1: ओ,
0: हूँ।
1: ये केरला, हमारा
0: वेरी
1: देश
0: गुड,
1: केरला।
0: वेरी गुड। अब आखिरी सवाल आपसे ये है, रोतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है?
1: वो ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए है, ए।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप पिछले 2-3 शो से कोशिश कर रहे थे और आज आप बन गए हैं रेनबो जीनियर्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको केशव
1: हाँ,
0: जी।
1: मेनी थैंक्स मैडम। गुड
0: जी जी
1: आफ्टरनून,
0: गुड
1: हैव ए
0: आफ्टरनून,
1: नाइस
0: बहुत
1: डे।
0: बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी मिलती है जब हमारे कोई दोस्त शिरकत करते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और जीतते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी,
1: नमस्कार
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम। जी, रामधारी अवाना बात कर रहा हूँ,
0: जी
1: कुतुबपुर
0: राम,
1: हिसार हरियाणा से। जी
0: जी रामधारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए ये पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है?
1: दिसंबर 10 को।
0: वेरी गुड, बहुत खूब। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
1: जेएल बेयर्ड।
0: वेरी गुड। तीसरा सवाल आपके लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था?
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: वेरी गुड, तीसरा सवाल भी आपका सही, यानी कि आपने सही जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है?
1: संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी।
0: चलिए, अगला
1: हेलो।
0: सवाल, हाँ जी, अगला सवाल आपके लिए, भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ से शुरू हुई थी?
1: कोलकाता।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के, आप रेनबो जीनियस बने हैं और यूं ही इस प्रोग्राम में आप जुड़ते रहें और रेनबो जीनियस बनते रहें, यही हम चाहते हैं, यही हमारी कामनाएं। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं उमेश बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप
1: जी
0: के लिए हम पहला प्रश्न हमारी ओर से, अशोका द ग्रेट, अशोक महान, उनका संबंध कौन से वंश से था?
1: मौर्य वंश से।
0: जी बहुत बढ़िया, आज मुझे लगता है बहुत सारे रेनबो जीनियस में मिलने वाले हैं। आप ये बताएं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
2: जी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया
0: जी। बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया है।

0: दूसरा सवाल आपसे, तीसरा सवाल आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
1: 5 जून को।
0: वेरी गुड, 3 सही जवाब दिए आपने। इसके बाद चौथा सवाल आपसे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया?
1: गैलीलियो गैलीली।
0: वेरी गुड, बहुत खूब। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, कौन सा सन था वो?
1: 1526।
0: वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप बन गए हैं रेनबो जीनियस और यूं ही आप प्रगति मार्ग पर प्रशस्त रहेंगे ही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं रामधारी जी।
1: धन्यवाद।
0: अगले कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो।
2: हेलो मैम,
0: हेलो, ऑल गुड, आप बताइए कैसे हैं?
2: बढ़िया मैम।
0: नाम बता दीजिए अपना।
2: मैम मेरा नाम है मनु शर्मा।
0: जी मनु, आपको बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैम मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ।
0: ओह वाओ, वेरी गुड, तो इसका मतलब आप हमें मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं?
2: हाँ जी हाँ जी, ये माई ट्यूनर रेडियो की ऐप है।
0: वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यू हैव स्टोलन माय हार्ट। जब हमें बहुत दूर दूर से सुना जाता है और अब तो एकदम देश के बाहर सुना जा रहा है तो हमें लगता है कि हमारा दिल कोई ले गया, लेकिन कीप इट सेफली। हाँ अच्छा, आपके लिए आप अच्छा कहते क्या मनु आप?
2: मैम मैं शिपिंग कंपनी में जॉब करता हूँ।
0: वाओ वंडरफुल वंडरफुल, तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
2: आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का शायद यूनाइटेड स्टेट्स होगा।
0: इट्स इन जिनेवा। यहाँ पर गलती हो गई, बट आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू और हम चाहेंगे मनु यू कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन लिसनिंग, मतलब हमें सुनते रहिए आप हमेशा और हमारे हर शोज का हिस्सा बनिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
2: एंड
0: थैंक यू सो मच। देश से बाहर रहकर भी जब देश का रेडियो सुना जाता है तो दिल बाग बान हो जाता है। थैंक यू सो मच।
2: बिल्कुल, हैव अ नाइस डे।
0: थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो ये थे हमारे टेलीफोन लाइन पर मनु, और ये कहते हैं कि देश प्रेम जो है ना आपके मन से कभी जाता ही नहीं है, आप कहीं भी क्यों ना रहें लेकिन देश हमेशा आप में रह जाता है। हेलो,
3: नमस्कार मैडम। हेलो
0: जी, नमस्कार, कैसे हैं, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी शंकर बोल रहे हैं, कटिहार से मैडम।
0: जी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और
4: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
0: ओह दिस इज माय फेवरेट। ये फिर मेरा दिल और तेज से धड़कने लगता है कि मैं, मुझे कोई रिकॉर्ड कर रहा है, हाय हाय हाय हाय क्या करूं, जानलेवा। चलिए अच्छा जी, आपके लिए पहला सवाल ये है कि बिजली का आविष्कार किसने किया?
3: क्या मैडम?
0: बिजली का आविष्कार।
3: बचपन लग रहा है टॉप हो गया मैम।
0: मुश्किल हो गया क्या?
3: याद ही नहीं आ रहा है।
0: अरे अरे अरे अरे, अरे। चलिए, बिकॉज आपने कहा कि आपने मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपने मोहतरमा ने भी बोला कि वो मोहतरमा ने भी बोला, चलिए कोई नहीं, मोहतरमा ने बोला कि आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए इसी के नाम। अच्छा आप बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किसे कहा जाता है?
3: माउंट एवरेस्ट।
0: वेरी गुड, बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है?
3: लेखक के क्षेत्र में,
0: साहित्य में। वेरी गुड
3: जी, साहित्य।
0: तीसरा सवाल आपके लिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल?
3: प्रतिभा सिंह पटेल। इंदिरा गांधी।
0: चुग गए, मैंने कहा भारत की पहली महिला राज्यपाल, दोस्त अब नहीं दे पाऊंगा।
3: द्रौपदी।
0: नहीं, अब गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पर। वो मोहतरमा को सॉरी कह दीजिएगा जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर को हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद गाना। जी हेलो, कैसे हैं?
5: अच्छे मैम।
0: एकदम अच्छे, बिंदास।
5: हाँ मैम
0: जी, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं?
5: प्रफुल्ल मैम, अमरावती महाराष्ट्र से मैम।
0: वाह क्या बात है प्रफुल्ल, यानी कि आप हमेशा प्रफुल्ल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं ना?
5: हाँ मैम।
0: वेरी गुड, अच्छा ये बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
5: 208।
0: 208 करेक्ट कर लीजिए, अभी भी समझ रही हूँ
5: क्या।
0: देखिए अभी तो समय नहीं है कि मैं गिन के बताऊं, सॉरी। अगर मैं अपनी हड्डियां गिनने बैठूंगी तो फिर शो कौन करेगा, है ना? तो 206 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं।
5: ओके मैम।
0: क्योंकि 206 के बाद गिनती मैं भूल गई हूँ।

0: खैर कोई बात नहीं, सबसे बड़ा महासागर?
1: अटलांटिक। पैसिफिक है, पैसिफिक।
0: अब जनाब हो गई बात यहाँ खत्म। सॉरी, मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहूंगी, और दोस्त आप यूं ही कोशिश करते रहें, है ना?
1: हाँ मैम, हर किसी पहली बार लगा मैम कॉल।
0: कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि जीवन का दस्तूर यही है कि आगे चलते बढ़ा जाए। वैसे हम यही चाहेंगे कि आप, क्योंकि आपको चांस दिया गया, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हर प्रोग्राम में, कार्यक्रम में हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, जो जीते उनको भी और जो नहीं जीते उन्हें भी, क्योंकि अगर वह इस शो में शामिल ना होते तो ये शो इतना खूबसूरत कैसे बनता। फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं भी ना कुछ कुछ आप जैसे ही हूँ, आप मेरे जैसे और हम सब एक दूसरे के जैसे। और जब कहते हैं दुनिया में कुछ लोगों को मिलने के बाद ये महसूस होना कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब यही होता है कि आपको आपके जैसे लोग मिल गए हैं। बिल्कुल आपके जैसे सर फिर। आप नहीं है, मैं हूँ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल। प्रोग्राम चल रहा है रेनबो जीनियस, एक ऐसा शो जहां 5 सही जवाब देकर, यानी कि सवालों के सही जवाब देकर बन जाते हैं रेनबो जीनियस। तो बहुत सारे कॉलर्स इस वक्त अपना फोन घुमा रहे हैं, हमें मिला रहे हैं कि शायद मौका लग जाए और वो बन जाए रेनबो जीनियस। तो पहले कॉलर इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
2: मैम
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
2: मेरा नाम सूरजभान चौरसिया है, मैं कालका से हूँ, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका, और हम तो दिल ओ जान से बस आप ही का इंतजार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मिले हमारे रेनबो जीनियस। अब देखते हैं कि आप हमारे सवालों के जवाब देने के बाद आज रेनबो जीनियस बनते हैं या नहीं। खैर, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। तो पहला सवाल आपके लिए, हवा महल कहाँ स्थित है?
2: हवा महल राजस्थान में
1: जयपुर में। चलिए आप
2: जयपुर
1: जी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं?
2: किसमें?
1: ओलंपिक ध्वज आपने देखा, ओलंपिक
2: उसका
1: जो ध्वज है उसमें कितने गोले होते हैं?
2: उसमें उसका पता नहीं,
1: नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं चलेगा यहाँ से, कौन बता रहे आपको पीछे से गलत बात।
2: मैम भाई भी है
1: नहीं, देखो रेनबो जीनियस तो एक बनेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जवाब खुद बखुद।
2: ओके मैम, ओके मैम
1: जी। चलिए माफी यहाँ पर हमने आपको दे दी। अगला सवाल आपके लिए, दिल्ली भारत की राजधानी किस सन में बना था?
2: मैम इसका नहीं पता,
1: इसका नहीं पता। खैर कोई बात नहीं दोस्त, आपने कोशिश की, प्रयास की, और मैं यही चाहूंगी कि आप निरंतर प्रयास करते रहें और अपने सवालों के जवाब हमेशा जिंदगी में कैसे भी मोड़ क्यों ना आए खुद दीजिए, आप स्वावलंबी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, कौन बोल रही है?
3: रूही कुमारी अररिया बिहार से बोल रहे हैं। गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है रूही। तो आप एकदम तैयार हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, है ना?
3: जी
1: जी। अच्छा आप ही हमें बताएं कि दिल्ली भारत की राजधानी किस सन में बना था?
3: 1911 में।
1: वेरी गुड। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
3: मीथेन। मीथेन,
1: शाबाश। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी?
3: कौटिल्य।
1: वेरी गुड, तीन सही जवाब आपने दिए हैं तीन सवालों के। नेताजी किसे कहा जाता था, किस महापुरुष को कहा जाता था?
3: सुभाष चंद्र बोस।
1: वेरी गुड। और अगला सवाल आपके लिए, यानी कि आखिरी सवाल आपके लिए, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर,
3: हृदय।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं रूही आपको, आप बन चुकी हैं हमारी आज की फीमेल रेनबो जीनियस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको,
3: खुशी मिला मैम।
1: बस यूं ही खुश होती रहिए, कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान है ना उसके पास खुशियां ही खुशियां हैं, और खुशियों से ना दोस्त बहुत आसानी से बनते हैं, यानी कि ज्ञान से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर इस पर टेलीफोन लाइन पर। हेलो
4: हेलो,
1: सबसे पहले आपसे गुजारिश दोस्त की आप अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लें, जिससे कि आपसे बात करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए।
4: जी कर दिया गया।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नाम बताएं, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप?
4: जी मैं सचिन बात कर रहा हूं, बहादुरगढ़ हरियाणा से।
1: जी सचिन, आपके लिए पहला सवाल, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी?
4: मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी।
1: बहुत बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
4: यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी।
1: जी 24 अक्टूबर 1945। आप बताएं, बहुत आसान सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है?
4: जी देवनागरी।
1: जी बहुत बढ़िया। उज्जैन किस नदी के किनारे है?
4: ये शिप्रा नदी के किनारे है।
1: शाबाश। और अब आपके लिए आखिरी सवाल हमारी ओर से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
4: द हेग में।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी बन गए हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस भाई। मैं आज

0: बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन कोई चीज अगर मुझे दुखी करती है तो ये आवाज टू टू, ना जाने दिल में ना कैसे कैसी आवाजें और कैसे कैसे आघात पहुंचाने लगती है ये आवाज। तो कहते हैं कि जीवन में ना संघर्षों के साथ साथ अगर पेशेंस थोड़ी सी हम बरत ले तो सफलता निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं जनाब। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: हेलो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। आप रेडियो पे सुन रहे हैं हमें या फिर मोबाइल ऐप के जरिए?
2: मैं मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहा हूँ
0: जी। तभी जब आप ऑनलाइन सुनते हैं तो थोड़ा सा लैप्स होता है, हमारी बात थोड़ी देर तक बहुत से पहुंचती है, इसलिए जो सवाल मैं पूछ चुकी थी वही सवाल मेरे कानों में दोहराने लगे। तो एक ही नई बात है, शायद आपको इस बारे में इल्म हासिल कर अच्छा लगा हो कि थोड़ा लैप्स होता है जब हम इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं। खैर दोस्त, जीवन में सीखना ही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपका नाम बता दें हमें।
2: जी, मेरा नाम है श्रवण कुमार प्रजापति, मैं राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला हूँ।
0: वाह वाह, बहुत,
2: लेकिन अभी मध्य प्रदेश में हूँ।
0: वाह, तो श्रवण जी आपके लिए ये पहला सवाल हमारी ओर से, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था?
2: जी, बाल गंगाधर तिलक ने।
0: हाँ, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। अब आप में बताएं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है?
2: जी, प्रतिवर्ष 4 साल बाद।
0: बहुत खूब, अगला सवाल आपके लिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है हमें, कौन सा विटामिन?
2: विटामिन डी।
0: बहुत खूब, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है?
2: जी, मुंबई में।
0: मुंबई में स्थित है, तो आपने दे दिए हैं 4 सवालों के सही जवाब। और अब ये सवाल आपके लिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने कहा?
2: रामप्रसाद।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, और हम यही कहेंगे आप यूं ही प्रगति मार्ग पर प्रशस्त रहें, आपको हमेशा सफलता मिले। जिसके पास ज्ञान है उसके पास जीवन में सब कुछ है, दुनिया के सब ऐशो आराम है, सब सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान से कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त।
2: धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू मैम।
0: तो बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए हमें, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में ना सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं और उसके प्रश्नों को जानने की कोशिश करते हैं तो उन प्रश्नों से हमें बहुत सारे जवाब मिलते हैं, और कभी कभी हमें हमारी उलझनों तक का जवाब मिल जाता है, इसलिए सुनते रहिए। लेकिन जब मौका मिले तो बोलना बिल्कुल मत छोड़िएगा, और कहते हैं कि जीवन में अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि आज आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी, जहां आप सही सवालों के, जो मैं हमेशा पूछती हूँ, उनके सही जवाब देकर बन सकते हैं रेनबो जीनियस।

0: माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: वेलकम बैक, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका अनियाल और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रेनबो जीनियस, जहां आप मेरे द्वारा पूछे गए सही सही सवालों का सही सही जवाब देते हैं और वो भी पूरे 5। तो जुड़ गए हैं हमारे अगले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, जानते हैं कि क्या है इनका नाम। हेलो।
7: हेलो, नमस्कार जी।
6: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं।
7: जी रजनेश राठी, महेंद्रगढ़ से कॉल कर रहा हूं।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब आपके लिए पहला सवाल हमारी ओर से ये कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी?
7: स्वामी विवेकानंद ने।
6: बहुत खूब। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
7: चार्ल्स बेबेज को।
6: वेरी गुड। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है?
7: ये खड़गवासला में।
6: इंडियन मिलिट्री अकेडमी
7: जी पुणे के पास खड़गवासला।
6: दोस्त आपने कंफ्यूज
7: देहरादून।
6: NDA खड़गवासला में है लेकिन इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है।
7: NDA
6: जी। अब आपसे चौथा सवाल पूछ रहे हैं हम, पंचतंत्र के लेखक कौन है?
7: विष्णु शर्मा।
6: वेरी गुड। और आखिरी सवाल, नासिक किस नदी के किनारे है?
7: गोदावरी नदी के।
6: शाबाश, तो आप बन गए हैं हमारे अगले रेनबो जीनियस। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, यूं ही प्रगति मार्ग पर आप अग्रसर रहें, यानी कि आपको हमेशा उन्नति मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
7: धन्यवाद।
6: अगले कॉलर, हेलो।
8: हेलो, नमस्कार मैडम
6: जी। नमस्कार, नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
8: सुधीर पूर्णिया यहाँ से बोल रहे हैं मैडम
6: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी।
8: मैडम रिकॉर्ड कर रहे हैं।
9: This call is now being recorded.
6: ये बात ना, ये जो जुमला है ना, ये जो मोहतरमा आती है और कहती है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई हाय मजा आ जाता है कसम से कि हम जो बोल रहे हैं उसे कोई रिकॉर्ड कर रहा है। जी आप बता दी, आपने बहुत अच्छा काम किया। वैसे आजकल भला इसी बात में कि अगर आप किसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बता दीजिए कि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी जी, आप एक सजग नागरिक हैं, इस बात का सबूत आप दे चुके हैं यहाँ पर। जी आपसे पहला सवाल ये है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है?

0: क्या मैडम?
1: राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जब राष्ट्रपति बनते हैं उससे पहले उनको शपथ कौन दिलाता है?
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो दिलाता है।
1: हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
0: मुख्य न्यायाधीश जी।
1: रामचरितमानस किसने लिखी?
0: तुलसीदास जी मैडम।
1: जी, दूसरा सवाल सही। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है?
0: क्या कौन सा मैडम?
1: पेनल्टी किक। चूक गए यहाँ पर, नहीं याद
0: मैडम, एक बार दोबारा बोलिए।
1: पेनल्टी किक जब एक खेल है, एक खेल का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं।
0: ये फुटबॉल से हो सकता है।
1: कौन बता रहा है?
0: सही नहीं बता रहा है, मतलब किक बोले तो पैर से ही होता है।
1: मर जावा गुड़ खा के, मतलब पूरी कहते हैं ना कि पूरा दिमाग इसका इस्तेमाल कर लिया आपने। कोई बताया तो नहीं रहा है ना, प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रहा है
0: मैडम।
1: चलिए चलिए ठीक है, आपने हमें दे दिए हैं, अब तक गिन लेती हूँ मैं, कहते हैं ना हिसाब किताब करने में थोड़े कमजोर हूँ, तो 3 सही जवाब आपने दिए हैं। अच्छा, अब चौथा सवाल आपसे, गोदान की रचना किसने की? गोदान किसने लिखी है? गोदान आपने पढ़ी है? गोदान
0: प्रेमचंद के है मैडम, गोदान के।
1: 4 सवाल आपके सही। और अब आप बताएं, मेट्रो मैन, मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है?
0: श्रीधरन को कहा जाता है, दिल्ली मेट्रो मैन।
1: वाह वाह वाह, जिस जोश के साथ आप बोले हैं, इस बात का सबूत है कि आपको पता है कि आप आज रेनबो जीनियस बन चुके हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, आप यूं ही खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपना ज्ञान ना इसकी वृद्धि भी कीजिए और पढ़िए। और
0: उसका एक रीजन तो आपका ही चैनल है मेरे लिए, मतलब
1: क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो मेरे सर पे जो छोटे छोटे सींग थे और बड़े हो गए क्योंकि क्योंकि ताज तो मैंने पहना नहीं है,
0: तो हम लोग का भी मतलब ये भत्ता बनाऊंगा कार्यक्रम जानकारी भी मिलता है। और मैं तो जो है डेली सुबह 7 से 8 बजे तक सुनता हूँ उसमें।
1: क्या बात है, आप
0: और हमको बहुत अच्छा नॉलेज और मिलता है इससे जो है।
1: क्या बात है, और करते क्या है, करते क्या है आप?
0: अभी मैम तो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर रहे हैं।
1: पर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना?
0: आज ही जो मनुष्य एक्सरसाइज का जो है एग्जाम देगा है मैडम आज।
1: क्या बात है, जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी, मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है?
0: थैंक यू मैडम, बोलेंगे मैडम
1: जी। जी बहुत
0: योगदान है, जो सवाल पूछे आज गोदान वाला ये पूछा था जी एग्जाम में मेरा।
1: क्या बात है, अच्छा देखा, मैं यही कहूंगा
0: यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र वाला पूछे थे वो सब भी कॉलर उसमें पूछ चुके। 10 क्वेश्चन मेरा यहाँ।
1: वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कॉलर इंतजार कर रहे हैं।
0: दिन होता है ना मैडम, तो हम रविवार को सुनते हैं कार्यक्रम टाइम निकाल कर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।
0: सबको नोट करते हैं, आपका जितना पूछते हैं सब नोट करते हैं।
1: क्या बात है, आपकी जीत में हम हमेशा शामिल रहेंगे। और कहते हैं कि जीवन का दस्तूर भी यही होना चाहिए कि हम किसी की जर्नी में उसके साथ हों, इससे बड़ी बात जीवन में कुछ और हो नहीं सकती। उसकी सफलता उसकी असफलता में अगर आप उसके साथ हैं तो इसका मतलब आप उसके सच्चे वाले दोस्त हैं, और सच्चे वाले दोस्त हम भी हैं आपके। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं
2: जी। मेरा नाम आकाश।
1: बस आकाश, आप ही का इंतजार था, मैं सोच रही थी कि आज आकाश कहाँ रह गए, इनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है, लगता है कहीं व्यस्त है जी। आकाश, आपसे पहला सवाल ये है कि यरवाडा जेल किस राज्य में है?
2: यरवाडा जेल ये महाराष्ट्र में है।
1: वेरी गुड, अगला सवाल आपसे, बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा?
2: विद्यानंद सरस्वती जी ने बोला था, आर्य समाज।
1: वाह क्या बात है, कहा। आज आप घर पर ही हैं, आज कहीं ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं? पिछली बार तो आप ट्रैवल कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर थे।
2: नहीं, आज मैं घर पे हूं।
1: चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
2: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है
1: जी, संसद की जो सदस्य हैं वो करते हैं,
2: दोनों लोकसभा।
1: जी जी जी जी, 3 सवालों के आपने सही जवाब हम तक पहुंचाए, इसके लिए हम आपका शुक्रिया यहाँ पर ज्ञापन करना चाहते हैं। अगला सवाल आपके पास ये पहुंचता हुआ, 3 सवाल आप दे चुके हैं, और अब आपके लिए अगला सवाल ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
2: स्पोर्ट्स में दिया जाता है। इसको पहले इसको अभी मेजर ध्यानचंद
1: जी जी जी जी
2: पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।
1: जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगला सवाल आपके लिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल?
2: ये उत्तर प्रदेश में थी, सरोजिनी नायडू जी।
1: जी बहुत बढ़िया, आपने ये सही जवाब यहाँ पर दिया है। और लोह पुरुष किसे कहा जाता है?
2: सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को।
1: वेरी गुड, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप भी बन गए हैं हमारे आज के रेनबो जीनियस। हमारे कुछ नियमित श्रोता हैं जो हमारे शोज पर जरूर कॉल करते हैं और हमें भी बहुत खुशी

हमारा दिल कब धड़कता है जब आप खुश होते हैं, और आप कब खुश होते हैं जब आपको ज्ञान मिलता है। और जैसा कि दोस्त ने कहा कि आज जो एग्जाम वो देकर आए हैं उसमें वही सवाल पूछे गए जो यहाँ हम आपसे पूछते हैं। तो जिंदगी के लिए भी हम आपको तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप जीवन में कभी भी हारे नहीं। आजकल हर व्यक्ति ना कहीं हार के बाद थम जाता है और कहता है कि नहीं अब नहीं उठ पाऊंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगी इसी को कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का अर्थ ये है कि जहां से आप गिरते हैं वहीं से आपको दोबारा उठना होता है। खाकी के सेट्स पर एक बार अमिताभ बच्चन साहब ने जब ऐश्वर्या राय गिर गई और वो रोने लगी, परेशान हो गई, तो अमिताभ बच्चन साहब ने ऐश्वर्या राय से यही बात की थी कि जहां से गिरो वहीं से दोबारा उठो, और जिस व्यक्ति में ये जज्बा है उठने का उसको हार कभी छू भी नहीं सकती। हो सकता है कि छूने आए लेकिन छू भी नहीं सकती। फिलहाल आपकी दोस्त नाचीज गीतिका आपसे इजाजत लेती है, आपसे होगी फिर मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें। अपना ख्याल रखिए और हमसे बातें करते रहें, क्योंकि आपकी बातें करने से ना हमारा दिल धड़कता रहता है।

शाम के 5 बज गए हैं। पेश हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है, एक भारतीय अब भी लापता है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद

0: स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान कई समझौते संपन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधा कृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण करने और मन्नम स्मृति मंडपम ने उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय उद्योग जगत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम सैटेलाइट लेकर हाजिर हूं मैं। मेरा नाम है शाहिद। तो सिटी की बहुत सारी अपडेट्स मेरे साथ और साथ ही एक्साइटिंग म्यूजिक बैक टू बैक।

IMD के मुताबिक बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है। हालांकि सुबह थोड़ी बहुत हवा तो चली, लेकिन बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं और आगे भी कोई उम्मीद फिलहाल अगले 2-3 दिन तक नहीं है। जिस पिछली तेज बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है, उसमें भी अब बहुत ज्यादा हद तक सुधार हो चुका है। इसमें शामिल हैं शाहदरा, लाजपत नगर, द्वारका, रोहिणी जैसे इलाके। मैक्स टेम्परेचर फिलहाल जो उम्मीद है वो ये है कि 36 और 38 तक जा सकता है और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आने वाले कुछ दिन ड्राई एंड हॉट एंड ह्यूमिड रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश के बाद से हॉस्पिटल्स में डेंगू के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी की खबर है, इसलिए आप अपने घर में या आसपास कहीं भी पानी को इकट्ठा बिल्कुल भी ना होने दें, यह खतरनाक हो सकता है। टंकियों, कूलरों को साफ रखें और कहीं भी पानी को जमा बिल्कुल भी ना होने दें।

ये जलवा वांटेड से, और आपको बता दूं मैं आगे भी मौसम का हाल मैं बताऊंगा कि बारिश से जो एयर क्वालिटी में फर्क पड़ा है वो कितना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमसे रिलेट करती हुई न्यूज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली के 3 ऐसे अनमैनेज्ड कॉरिडोर्स को ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी अब अपने हाथ में अपने सर पर ले ली है। और ये ऐसे 3 कौन से ऐसे अनमैनेज्ड कॉरिडोर्स हैं दिल्ली के, वो रोड्स हैं मैं आपको बताता हूँ। ये रोड्स हैं इंडिया गेट से बदरपुर तक जाने वाला मथुरा रोड, पंजाबी बाग से पीरा गढ़ी होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक जाने वाला टीकरी बॉर्डर मार्ग, और अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बॉर्डर तक मेहरोली गुरुग्राम यानी MG रोड इसमें है शामिल, यानी कि ये 3 रोड हैं। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि इन रोड्स को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली वालों को तो राहत मिलेगी ही, क्योंकि यहां से जब आप जाते हैं बॉर्डर की तरफ और उन एरियाज में जो बॉर्डर क्रॉस करने से आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और आपको घंटों घंटों उसमें फंसना पड़ता है, तो दिल्ली वालों को मिलेगी राहत। साथ ही यूपी हरियाणा के कम्यूटर्स को भी बहुत ज्यादा इससे होगा फायदा, क्योंकि दिल्ली और इन स्टेट्स के बीच आना जाना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा आने वाले वक्त में। देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेडियो पर शायद आपके साथ सिटी लाइट्स में, और ये बहुत ही एक्साइटिंग ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

सुखविंदर सिंह की शानदार आवाज, तेरे नाम का यह शानदार ट्रैक। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। दिल्ली पुलिस लगातार चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए अलग अलग स्कूलों में प्रोग्राम चला रही है ताकि बच्चों को गलत टच के बारे में और दूसरी जरूरी जानकारियों से उनको अवगत कराया जा सके, उनको अवेयर बनाया जा सके। साथ ही दिल्ली सरकार विमेन सेफ्टी और ईज ऑफ ट्रैवल के लिए विमेन स्पेशल बस सर्विस को एक्सपेंड करने जा रही है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, इस स्कीम यानी महिला विशेष बस सेवा के तहत लगभग 50 नई इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। इन 50 बसों में से 25 आउटर दिल्ली एरियाज में चलाई जाएंगी और बाकी 25 बसें कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल के रूप में ऑपरेट की जाएगी। और एक खास बात आपको बता दें कि जो नई बस सर्विस शुरू की जा रही है विमेन स्पेशल, इसमें इन बसेस में महिलाओं की सेफ्टी का खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
2: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा, जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

102.6 यह है देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम सिटी लाइट्स। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिल्ली की उन कंजेस्टेड एरियाज कॉलोनीज के लिए जहां पर बड़े फायर टेंडर्स पहुंचना होता था मुश्किल।

अक्सर कई बार फायर टेंडर्स को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ कंजेस्टेड इलाकों में या संकरी गलियों में पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और आमतौर पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को जो वहां पर फंसे हुए होते हैं और कोई भी रास्ता नहीं निकलता कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता निकाल लिया गया है। दिल्ली फायर सर्विस ने कंजेस्टेड कॉलोनीज में सेफ्टी को मजबूत करने के लिए 26 नई QRVs लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। QRVs यानी क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स। ये ट्रेडिशनल फायर टेंडर्स की तरह से बड़े बड़े ट्रक्स की तरह से नहीं होंगे जिन्हें कंजेस्टेड एरियाज में पहुंचने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ता रहा है अभी तक। ये जो छोटी गाड़ियां होंगी QRVs क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये मिनी फायर टेंडर्स हैं जो अच्छे खासे पानी की क्वांटिटी को लेकर के हाई प्रेशर पंप्स के साथ लैस हैं। ये मिनी फायर टेंडर्स पिछली दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट्स के साथ मिलकर के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगी और उन इलाकों में पहुंचेगी जहां पर ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, आग लगने की या कोई दूसरे हादसे की सिचुएशन में। तो दिल्ली पुलिस की PCR यूनिट इनके साथ मिलकर के काम करेगी ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो या क्रिटिकल सिचुएशन हो उसको समय रहते और तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। यानी कि जो भी अब पतली गलियों में संकरी इलाकों में या कंजेस्टेड एरियाज में रहने वाले लोगों को जो एक डर था वो अब बहुत जल्द किसी हद तक दूर हो जाएगा।

तो हमने बात की थी कि दिल्ली में बारिश का मौसम, मतलब मानसून तो आ चुका है और दो दिन जो लास्ट वीक बारिश हुई है उसने भी काफी ज्यादा एक अच्छा बदलाव भी दिल्ली वालों को एहसास करवाया. मतलब ठंडक हुई, एसी कम चले और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के AQI पर पड़ा इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा असर. इस मौसम के बदलाव से बिजली की खपत में बहुत बड़ी गिरावट भी आई, क्योंकि जो लोग दिन में भी घंटों एसी चला रहे थे उन्होंने रात को भी नहीं चलाया एक दिन दो दिन, तो ये अच्छी बात हुई. जब दो दिन लगातार बारिश रुक रुक कर होती रही और एक बहुत बड़ा फायदा हुआ वो हुआ दिल्ली की आबो हवा को, क्योंकि एयर पोल्यूशन में जबरदस्त गिरावट आई बारिश के साथ चली तेज हवाओं से और दिल्ली का AQI सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक कैटेगरी में पहुंच गया था. हालांकि उसके बाद से फिर दोबारा से दिल्ली का पोल्यूशन अपने उसी रूप में आने लगा है. तो अब उम्मीद ये की जा रही है जो IMD के मुताबिक कि फिलहाल अभी दो तीन दिन तो ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा बारिश की, लेकिन हाँ हल्के फुल्के छींटे पड़ सकते हैं या अलग अलग इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन आने वाले वीकेंड में फिर से अच्छी बारिश मिल सकती है और फिर से ठंडक हो सकती है और फिर से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आ सकता है.

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्य पोत GFS गैलेक्सी के हमले पर कड़ी निंदा की है। 10 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया, एक भारतीय अब भी लापता है। क्षेत्र में वाणिज्य जहाजों पर लगातार हो रहे हमले पर भारत ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान कई समझौते संपन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफ अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन

खलीफा अल थानी दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने कतर के विकास और समृद्धि के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई से इस दावे को झूठा बताया गया है। और खेल में चेकिया के लिंडा नोजोकोव का अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर्स कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश के कैरोलिना मुकोवा पर शानदार जीत दर्ज की। ये थे मुख्य समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: स्वागत है दोस्तों आपका प्रोग्राम MMM में मैसेज मसाला मिक्स, और ये है आपका प्रोग्राम क्योंकि मैसेज है आपके और सिर्फ आवाज है मेरी। बात तो हम करेंगे और बात का हमेशा होता है एक टॉपिक, तो टॉपिक देना अब हम शुरू करते हैं। और आप प्लीज टॉपिक से रिलेटेड अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हम मुझे भेजिए। आप जानते हैं आपको मैसेज कहाँ भेजना है, 9868107070 पे, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो दोस्तों आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, आज सुबह से मैं सोच रही थी भाई आज अपने दोस्तों पे किस टॉपिक पे बात की जाए, तो मुझे लगा आज का टॉपिक सबसे अच्छा जो मैंने चुना है वो ये है कि आप अपनी कोई खूबसूरत सी मेमोरी अपने किसी पेट के साथ, जो आपके घर में आपके पालतू जानवर हैं जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ की कोई प्यारी सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है जिनके घर में पेट्स नहीं है वो हमें मैसेज नहीं करेंगे। आप बिल्कुल हमें मैसेज करिए, हम तो सिर्फ आपका प्रेम प्यार और स्नेह वाला संबंध उन जानवरों के साथ जानना चाहते हैं जो या तो आपके घर में हैं या गली में हैं या पड़ोस में हैं, कहीं भी हैं। वो सड़क का छोटा सा कुत्ता जो आपको देख करके आ जाता है कि आज तो मेरे लिए रोटी आई है, या गाय, कोई भी ऐसा जानवर जिसके साथ आप स्नेह महसूस कर पाए हैं, उसके साथ कोई अपना रिलेशनशिप, कोई अपना वाकया, कोई अपनी प्यारी सी बात हमको लिख करके भेज दें 9868107070 पे। और अगर आपके घर में पेट हैं जो कि बहुत शरारती होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, बहुत सिर चढ़े होते हैं, अगर वो हैं तब तो मैं जानती हूँ आपके पास किस्सों की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो फटाफट भेज दें रैबिट का, तोते का, कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का, किसी का भी किस्सा, और किसी भी जानवर के साथ आपने कभी स्नेह महसूस किया हो तो वो फटाफट मुझे भेज दें। ओके, शुरुआत करते हैं खूबसूरत गाने के साथ, और मेरी नज़र लगातार बनी हुई है स्क्रीन पे आपके मैसेजेस के लिए।

प्रोग्राम चल रहा है MMM और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और भाई मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। मैं बस एक बात आपको जरूर रिमाइंड कराऊंगी कि आप लोग मैसेज भेज रहे हैं तो आप अपने पेट का नाम भी जरूर भेजिए कि आप उसे क्या कह के पुकारते हैं। और ज़रूरी नहीं है जो हमारे घर में ही हमारे साथ जो पेट होते हैं वही हम उन्हीं को हम प्यार करते हैं या उन्हीं को हम नाम देते हैं। नाम तो हम हर एक उसको देते हैं जिसको हम स्नेह करते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा पेट है आप कि आप सुबह गाय को रोटी देने जाते हैं या आप किसी जानवर को खाना खिलाते हैं, आप किस नाम से उसको पुकारते हैं, ये भी हमें लिख भेजिए। तो चलिए मैसेजेस पढ़ना मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला मैसेज है, वेलकम है आपका। पहले मैं पढ़ देती हूँ कि किन्होंने भेजा है। ये सरफराज आलम है दर्शन बाजार से। ये लिख रहे हैं, हमारे घर में एक पालतू बकरी से हमारा रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं है बल्कि स्नेह का है। और जब भी मैं घर से लौटता था तो वो मेरी आहट जानकर दौड़ी चली आती थी। एक दिन वो अचानक कहीं दिखाई नहीं दी। पूरा परिवार बेचैन होकर उसे ढूंढने लगा। काफी देर बाद पड़ोस के आंगन में आराम से बैठी हुई मिली। उसे सुरक्षित देखकर सुकून और खुशी मिली। उसका एहसास हुआ जैसे स्नेह केवल इंसानों से नहीं बल्कि बेजुबान जीवों से भी उतना ही गहरा हो सकता है। उसका प्रेम और ये सुंदर यादें हमारे जीवन में हमेशा शामिल रहती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आपने कभी घर पे पेट रखा हो या पेट के क्लोज रहे हो तो आप इस बात को जान सकते हैं कि ये बहुत स्पेशल रिश्ता होता है क्योंकि वो बेजुबान होता है और बहुत कुछ अपनी आँखों से और अपनी हरकतों से कह देते हैं जो हम समझ भी जाते हैं क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते हैं। अगला मैसेज है, हेलो मैम, मुझे कुत्ते बिल्ली गाय जैसे एनिमल बहुत बहुत लगाव है, मैं उनका नाम भी रखती हूँ। ये सरिता ढाली फ्रॉम छत्तीसगढ़ से धर्म जी गढ़ से बोल रही लिख रही हैं। आप प्लीज़ नाम भी लिख करके भेजिए। आपके पास अगर कोई पेट है तो उसका नाम भी हमको लिख करके भेजिए। अगला मैसेज एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। ये सत्या लिख रही हैं लखनऊ से। सत्या लखनऊ से लिख रही हैं कि उन्होंने एक तोता पाला था और उस तोते को बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया और वो उसकी प्रॉपर उसको बोलना सिखाती थी और देखिए उन्होंने कितना अच्छा तरीका बताया कि वो YouTube पे वीडियो लगा करके तोते को दिखाती थी। ये तो सत्या जी आपने बहुत ही ग्रेट काम किया है। और लेकिन ये आगे शिकायत करती है कि उनका तोता कुछ ही दिन में उनका पिंजरा छोड़ करके उड़ गया। तो देखिए मुझे हंसना तो नहीं चाहिए सत्या जी, लेकिन आपकी इस बात पे मुझे ज़रूर हंसी आई कि आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से आप कैसे सिखाएंगे आप तोते को बोलना। लेकिन मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूँगी कि हाँ स्नेह तो बहुत हो जाता है और मुझे ये भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन हो सकता है कि वो तोता पालतू ना हो, अब इतनी नॉलेज तो मुझे नहीं है। लेकिन आपका कुछ भी कहिए, आपका मैसेज है बहुत बहुत बहुत मज़ेदार। तो दोस्तों आप भी हमें मैसेज भेजते रहिए। आपको पता है आपको मैसेज कहाँ भेजना है और आपको किस बारे में भेजना है। आपको मैसेज भेजना है 9868107070 पे और आपको भेजना है आपका स्नेह का, प्रेम का, लगाव का संबंध आपके आसपास के जानवरों के साथ, वो आपके गली के, आपके नुक्कड़ के, आपके कॉलोनी के गेट पे बैठे हुए भी जानवर हो सकते हैं। शाम के वक्त जो आपके पीछे पीछे ऐसे ही आ जाते हैं कि थोड़ा आपके साथ खेल लें, या फिर आपके घर के पले हुए आपके पालतू जीव भी, और आप उनका नाम भी हमें ज़रूर लिख करके भेजें। मैसेजेस आ रहे हैं बिल्कुल धड़ाधड़ और मैं लूँगी सारे मैसेजेस इस एक अगले गाने के बाद।

प्रोग्राम चल रहा है MMM और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी, और मैसेजेस आ रहे हैं ढेर ढेर ढेर सारे। ठीक है दोस्तों, तो अगला मैसेज मैं लेती हूँ। ये आयांश पाठक का है, वो मेरठ से लिखते हैं, और ये लिखते हैं कि मेरी एज, इनकी एज 10 साल की है, और जो इनके बाबूजी को बहुत ज़्यादा जानवरों से प्रेम है, और लेकिन इन्होंने शायद ये नहीं लिखा, मैसेज बहुत बड़ा है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि बाबूजी का घर कहाँ पे है। ये बता रहे हैं कि इनके बाबूजी के यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, तोता है, घोड़ा है, डॉग्स हैं, डॉग्स के बेबीज हैं, बहुत सारे हैं जानवर। और ये बता रहे हैं कि लगभग ऐसा लगता है बाबूजी के घर जाके कि जैसे एक छोटा सा चिड़ियाघर है अपना। ये तो बहुत ही क्यूट बात है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। इन्होंने बताया कि इनके दोनों जो डॉगी हैं उनका नाम डॉलर और रुपया है, और दोनों हॉर्सेस का नाम चेतक और चीना है, और पैरट

नाम पूछी और चीची है. दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट. बहुत प्यारा मैसेज है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज. अगला मैसेज है कविता देवभूमि उत्तराखंड से. कोरोना के समय कुछ दिनों के लिए कुछ दिनों मैं और मेरे दोनों बच्चे माँ के घर गए थे. वहाँ एक बहुत बड़ा सा भोटिया कुत्ता आ गया जिसको खाना खिलाते थे और वो दूर से ही पूरे घर की देखभाल करता था और वो वहीं रहता था. उसको किसी भी अजनबी को वहाँ पास नहीं आने देता था. देखिए, एक ना डॉग और डॉग और ह्यूमन बीइंग का रिश्ता ना कुछ अलग ही है. वो एक अलग लेवल का होता है और उसको थोड़ा सा समझ पाना, मतलब वो किसी के लिए अगर जो महसूस कर सके तो उनके लिए तो बहुत प्यारी बात है, और लेकिन जो समझ ना पाए उनके लिए वो बहुत ही मुश्किल बात है. बड़ा ही प्यारा मैसेज है आपका. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कोई भी आप देखिए, अगर आपने किसी स्ट्रे डॉग को आपने खाना खिला दिया है ना, तो फिर वो फिर आप ही के पास आएगा, वो उसी वक्त पे आ जाएगा. अच्छा, अगला मैसेज मैं पहले नाम पढ़ती हूँ. अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से लिखती हैं. घर में स्ट्रीट डॉग बहुत आ जाते हैं डेली हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं, और ब्लैक कलर का है और ग्रे कलर का है, और बहुत प्यारा मैसेज है. और मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हम लोग स्ट्रे डॉग्स का कितना ध्यान रखते हैं, कितना उन्हें प्यार करते हैं उन जानवरों को, और शायद जिस जिस प्यार के वो हकदार हैं, जितना प्यार वो हमको देते हैं. अगला मैसेज विकास कुमार मौर्य फ्रॉम भदोही उत्तर प्रदेश से. मेरी एक भैंस से बहुत लगाव था और उसका लगाव मुझसे भी था, और मैं कहीं भी रहता था तो हमारी आवाज़ पहचान कर आ जाती थी और उठ के खड़ी हो जाती थी. दैट्स सो स्वीट. इतना कि जब वहाँ वो एकदम बुढ़ी हो गई तो वो सुबह से उठ नहीं पाती थी तो भी वो आवाज़ सुन के उठने की कोशिश करती. दैट्स सो स्वीट. बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और दोस्त अगला है, मेरे डॉग का नाम शेरू कह के बुलाते हैं. वो हमारे परिवार का सदस्य है और बहुत ज़्यादा उसको अच्छे मैनर्स हैं. अरे वाह, ये अनिल शर्मा जी लिख रहे हैं सरिता बिहार से. दैट्स सो स्वीट. ये देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने अच्छा ट्रेन भी कर रखा है उसे. अगला मैसेज, गुड मॉर्निंग वेलकम टू द शो. ये तो मैं आपको कहूँगी वेलकम टू द शो, है ना. और हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हमने एक बिल्ली पाल रखी है जो कि ब्लैक है और बहुत ही प्यारी बिल्ली है. तरह तरह से टीवी में देख कर नाचती है. ओ माय गॉड, डांस करती है. दैट्स सो स्वीट. हमारे दोस्त उसको देखने देख कर बहुत खुश होते हैं. नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू. ये किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से. दैट्स सो स्वीट. अगर कैट नाचती है, बिल्कुल भाई, मैं भी काश देख सकती आपके यहाँ उस छोटी सी कैट को नाचते हुए. जोया लिख रही हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से. द लेडी हु वाज टीचिंग पैरट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग लेसन सो ही फ्लोन अवे. करेक्ट, मैंने भी यही बोला था और मुझे उम्मीद है कि उन्हें बुरा ना लगा हो. हम लोग इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल तो खुश कर दिया. सत्या जी ने लखनऊ से ना दिल तो खुश कर दिया एकदम, कि उन्होंने यूट्यूब ट्यूटोरियल से तोते को बोलना सिखा रही थी. दैट्स सो, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज. और ये मैसेज पढ़ सुन के ना आप सभी लोग बहुत हंस रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है. थैंक यू सत्या जी, हम सब के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए. अगला मैसेज, हमारे गाय का नाम लालिमा है, उसके बच्चे का नाम भोलू है. सो स्वीट. और बैल का नाम मदन. वाह, कितना सुंदर नाम है, इतना सुंदर लग रहा है आपका मैसेज पढ़ के. मैं आपका नाम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रहा है. आप इसके बाद अपना नाम ज़रूर लिख करके भेजें प्लीज़, आपका नाम नहीं मिल रहा है. ओके, सो अब हम चलते हैं. बहुत देर हो गई है मुझे बात करते करते और मैसेजेस खूब सारे आ रहे हैं और मैं ना इसमें एकदम खो गई हूँ, क्योंकि हम सभी पेट लवर हैं. मैं भी पेट लवर हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे पेट्स हैं, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा दिल से निकला हुआ टॉपिक है. और आप लोग के मैसेजेस इतने ऑनेस्ट आ रहे हैं ना कि आप मैसेज लिख रहे हैं अपना नाम लिखना भूल जा रहे हैं. आप समझ रहे हैं कितनी ऑनेस्टी है इन मैसेजेस में. दैट्स सो स्वीट. चलिए एक गाना और सुनते हैं और मैसेजेस भेजते रहिए. इस गाने के बाद मैं पढ़ूंगी आपके ढेर सारे मैसेजेस.

कितना पेपी सा गाना है ना ये, कितना यूथफुल, कितना प्यारा सा गाना है ये, दैट्स सो स्वीट। चलिए अब आगे चलते हैं प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देखिए दोस्त मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको भी ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। ओके, तो हम चलते हैं अगले मैसेज पे। अगला मैसेज है अच्छा, जिनको बाद बाद में याद आ रहा है वो फिर से मैसेज लिख करके भेज रहे हैं। सरिता धाली छत्तीसगढ़ से फिर से लिख करके भेजते हैं कि मेरी बिल्ली का नाम शेरू मिनी चानू बेबी, कितने क्यूट क्यूट नाम है, कितने क्यूट नाम है। बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, अब मैं और मैसेजेस भी ज़रूर लूँगी। और ओके ना, अगला मैसेज गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम माला कुरुक्षेत्र है। मुझे आगे आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आया माला जी, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, और अभी मैं बताऊंगी भी टॉपिक क्या है मैसेजेस पढ़ने के बाद। फिर आप मैसेज से रिलेटेड ज़रूर हमको, टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर हमको मैसेज भेजिएगा। ओके, ये सरफराज आलम जी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी जो बकरी है जिसका मैसेज मैंने पढ़ा था पहले, तो उसका मैं नाम लूँ। देखिए वो नाम लेना ऐसे माइक पर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो शुक्रिया आपका मैसेज शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला मैसेज जैसे दर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं, हम तो बर्ड्स के लिए मक्का बाजरा और पानी छत पर रख देते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। अगर आप बर्ड्स के लिए छत पे पानी रख देते हैं और मक्का बाजरा ये सब रख देते हैं, इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती है सच में। और अभी तो पिछले दिनों तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत बहुत अच्छा करते हैं। ओके, ये कंचन सोनिया सोनिया विहार दिल्ली से, सोनिया विहार दिल्ली से बोल रही हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। और वो आगे लिखती हैं, हाँ ये लिख रही हैं कि इनके पास रैबिट थे और वो रैबिट बहुत ही सुंदर थे और बच्चे भी उन्हें बहुत बहुत बहुत प्यार करते थे। और एक रैबिट का नाम इन्होंने लिखा है और उन दोनों का नाम भी चीकू रखा था। चीकू मतलब दोनों रैबिट्स का नाम अपने चीकू रखा था, दैट्स सो स्वीट। वो अपना नाम पहचानते कैसे थे, दैट्स सो स्वीट। रैबिट तो कितने क्यूट होते हैं ना, और फ्रेंडली भी होते हैं। ओके, अगला मैसेज है प्रदीप सलूजा जी, आप मैसेज हमको लिख करके भेजिए। अभी तो आपने सिर्फ नमस्ते लिख के भेजा है, नमस्ते के बाद मैसेज भी भेजिए। ओके, बहुत सारे कबूतर हैं। ओके, ये उमेश कुमार जी बोल रहे हैं ख्याला से लिख रहे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं, उनको 3 टाइम दाना पानी देता हूँ और छोटे छोटे अंडे बच्चे भी निकल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका ध्यान रखिए। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मैसेज को शेयर करने के लिए। और मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आज के मैसेजेस ना बहुत ज़्यादा दिल से निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लिखने वाले अपना नाम लिख करके भूल जा रहे हैं, लिखने वाला अपना नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं। और ओके, नमस्कार दीदी, नमस्कार, शुभ संध्या, हमने कुत्ता पाला है जिसका नाम टॉमी है और वो हमारी रक्षा करता है। यशवंत अडमुटे धाराशिवा महाराष्ट्र से, थैंक यू, और थैंक यू इतना क्लियरली मैसेज लिखने के लिए, थैंक यू यशवंत। नेक्स्ट मैसेज है, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारे घर स्ट्रीट डॉग बहुत आते हैं। हाँ ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ मैसेज। ओके, अगला मैसेज पढ़ा जाए भाई, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं और मैंने तो अंडर एस्टिमेट ही कर लिया कि आज मैसेज कम आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं। अगला मैसेज मैं पढ़ती हूँ, ये लिखते हैं मिसेस धामा भाटिया रोहतक से, ये लिखते हैं कि यहाँ मेरी घर पे 250-300 के आसपास पिजन, पैरट और कलरफुल स्पैरोज हैं, 2 कैट भी आती हैं। कितनी प्यारी बात है कि अगर आपने घर ऐसा खुला छोड़ रखा है जहाँ पे कोई भी जानवर जिसको खाने पीने की ज़रूरत हो वो आपके पास आ जाए, तो वो तो फिर है ना, वो तो स्वर्ग से कम नहीं होता ऐसा घर। बहुत खूबसूरत सा मैसेज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस धर्म जी। ओके नाउ नेक्स्ट मैसेज है, मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है, मकान ख़रीदा है तो हमारे गेट के सामने 2 कुत्ते बैठे रहते हैं, उनको मैं रोज़ खाना देती हूँ, अब उनकी आदत हो गई है, और कभी गांव जाते हैं तो
हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने वो पाले हैं, लेकिन अच्छा कोरोना के बाद कभी आए नहीं, पता नहीं बेचारे कहाँ हैं। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनको और कोई प्यार करने वाला मिल गया होगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर वो कभी आपसे दो चार होंगे, कभी वो आपसे मुलाकात होगी, कभी रास्ते में वो मिलेंगे, तो वो मतलब डॉग्स तो देखिए गंध पहचान जाते हैं, आप एक बार उनसे मिलिए वो हमेशा के लिए आपको पहचान लेते हैं और कभी नहीं भूलने के लिए पहचानते हैं। अगला मैसेज है, हाँ मेरा परिवार आपका प्रोग्राम, अभी तो बहुत अच्छी बात है, परिवार सहित आप प्रोग्राम सुनिए, यही तो खूबसूरती है इस प्रोग्राम की। और

0: ओके, आपने देखिए मैसेज नहीं लिखा है, आपने मुझे नाम बहुत सारे लिख के दे दिए हैं। ये जिला मुरादाबाद से ग्राम धौलापुर उत्तर प्रदेश से, आप हमको मैसेज भी लिख करके भेजिए, मैं आपको आपका मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी। सिर्फ लिसनर्स का नाम पढ़ने में ना वो मज़ा नहीं रह जाता, वो कनेक्ट नहीं रह जाता, वो बात नहीं बन पाती है जी, जिससे ये महसूस हो कि हाँ मतलब आप एक एक किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो आप ज़रूर हमको हमारे टॉपिक पे मैसेज लिखकर ज़रूर भेजिए। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपके घर में कोई भी पालतू जीव है, आपके पास कोई भी पालतू पेट है, उसके साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, कौन सी सुंदर सी मेमोरी है, आपने क्या प्यारा सा उनका नाम रखा, और अगर आपका नाम बहुत ही प्यारा सा है और रेडियो पे यहाँ पे माइक पे पढ़ने लायक है, तो मैं ज़रूर पढ़ दूंगी। और ये भी बताइए आपका उसके साथ रिश्ता कैसा है, और आपके घर में, पड़ोस में, कॉलोनी के गेट पे, थोड़ा बगल वाली गली में जाके, कहीं भी, कोई भी, किसी भी जानवर के साथ अगर आपका हाथ मिलाने का, थोड़ा सा खेलने का, खाना खिलाने का कोई भी संबंध है, तो वो आप हमको लिख भेजिए, ज़रूर से लिख भेजिए। और नंबर आपको पता है 9868107070 पे, और आपके मैसेजेस का मैं कर रही हूँ इंतज़ार, और बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अभी हम लेंगे बहुत ही छोटा सा एक ब्रेक।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: एक जमाने से कहानी

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कितना सुंदर गाना है ना, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में बहुत खूबसूरत लगता है गाना। ओके, मैसेजेस का दौर शुरू होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ। अगला मैसेज हम लेते हैं भवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली से लिख रहे हैं। हाउ आर यू, टॉपिक अच्छा है, थैंक यू। आगे लिखते हैं, आई हैव अ पेट डॉग एंड आई एम वेरी क्लोज टू हर। व्हेन आई केम होम फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग शी केम रनिंग वेलकमिंग मी। ये तो बहुत ही स्वीट बात है, और उन्होंने बहुत प्यार से बताया कि उनके स्वीट स्वीट स्वीट इस डॉग का नाम है विस्की। वाओ, क्यूट नेम है ना, कुछ अलग ही है रिश्ता देखिए इंसान का जानवरों से और खासकर कुत्तों से। अच्छा, अगला है, हेलो मैम, वेरी ब्यूटीफुल शो एंड टॉपिक, थैंक यू। हमें जानवर काफी पसंद है, खास तौर पर हम उनकी आंखों में मैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश करता हूँ। वैसे हमारे घर तोता है और गाय है, सो स्वीट। विकास पाठक जी लिख रहे हैं ये। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज शेयर करने के लिए। लेकिन दोस्त, कई सारे जानवर और खासकर जो पालतू ना हो, उनकी आंखों में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, वो अटैकिंग पोजिशन पे आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो पेट्स होते हैं वो आप उनकी आंखों में देखेंगे ना, पेट्स की, खासकर डॉग्स की, आप उनकी आंखों में देखिए, उनके इमोशन चेंज होते हुए आपको दिखते रहेंगे। अब उनके इमोशन मतलब आंखों से वो इतना बयां कर देते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आंखों में देखना सच में अच्छा लगता है। ओके, अगला है, अगला है, ये उन्होंने लिखा है कंचन सोनिया जी, सोनिया बिहार दिल्ली से। इन्होंने जो एक अपने पेट का नाम एक ही लिखा था चिंकू, तो दूसरे का नाम मिंकू भी लिख करके भेजा है, दोनों पेट्स का नाम है ना, कितना क्यूट लग रहा है। लग रहा है 1-to-1 बातें हो रही हैं, हम लोग सब आपस में ही बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी स्वीट। ओके, हम ओके हम निक नेम अगला मैसेज मैं पढ़ती हूँ। अनिल शर्मा जी का, सरिता विहार से, हम शेरू कह करके बुलाते थे और हमारे परिवार का सदस्य होता है। ये तो मैंने पढ़ा है आपका मैसेज। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग ना कोई मैसेज को आप लोग कोई रीसेंड करते हैं, आप उसमें कोई नया मैसेज लिख करके भेजते हैं, तो वो मैसेज फिर से नया हो जाता है और फिर मेरे विंडो पे आ जाता है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं है। अगला मैसेज प्रवीण चौहान जी का है, खरगोन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, मुझे गाय को खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर के आसपास बहुत सारी गायें हैं, मैं उनको खाना खिलाता हूँ। इतना क्यूट लगता है सच में। वैसे किसी भी जानवर को, अगर कोई जानवर बहुत प्यार से आपके हाथ से खाना खा रहा है, तो उसको खाना खिलाना सच में बहुत अच्छा लगता है। ओके, अच्छा, अगला मैसेज है, हमारे गाय का नाम लालिमा है, ये तो मैंने पढ़ा था दोस्त। और हाँ, अच्छा, वही मैं आपसे बता रही हूँ, बहुत सारे मैसेजेस है ना जो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें फिर से कुछ आ जाता है नया मैसेज, तो वो फिर से नई विंडो पे ओपन हो जाता है। ओके, तो फिर अगला मैसेज लेती हूँ मैं। अगला मैसेज है, नमस्ते मोक्ष जी, गुड इवनिंग। हाँ, अच्छा, हाँ, कल भी आपका शो, आपका प्रोग्राम, अरे थैंक यू, आपको कल का प्रोग्राम भी अच्छा लगा और आज का प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और

प्लीज मेरा नाम ठीक तरह पढ़ना. ठीक है ठीक है. मैं नवलू वरक, मैंने आई होप मैंने ठीक पढ़ा हो, नवलू वरक फ्रॉम मलपड़ गांव, मलपड़ गोवा से. और हमारे यहाँ कुत्ते कुत्ते का एक नाम है, कुत्ता उनका जो पेट डॉग है उसका नाम है टॉप्सी. ओके. और वो बहुत प्यारा है. और हमारे घर में एक बिल्ली भी है और उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ. और दैट्स वेरी स्वीट. और लिख रहे हैं कि गोवा से और भी कोई लिसनर्स हैं. अगर दोस्त कोई और अभी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं रहते हैं, वो तो सब जगह से जुड़ते रहते हैं लिसनर्स. अभी भी कोई मैसेज आएगा तो मैं ज़रूर पढ़ दूंगी. ओके. अगला मैसेज है, गुड इवनिंग शमशुल कमर राही. हमारे घर में ऐसा कोई जानवर नहीं है. हाँ, बड़े भाई बहुत शौकीन हैं, उनका फार्म हाउस पर है. अक्सर जाता हूँ तो कभी खरगोश मोर और ये सब वहाँ पे हैं, हिरन, और उनको देख के बहुत अच्छा लगता है. खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और कुछ लम्हे उनमें खो जाता हूँ. दैट्स वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. बड़ा अच्छा लग रहा है मैसेजेस पढ़ के मुझे. और दोस्तों, आपकी रफ्तार हो गई है क्यों कम? कम तो नहीं होनी चाहिए रफ्तार, क्योंकि अभी तो हमारे पास है वक्त. आप मैसेज भेजिए, क्योंकि मैसेज पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. और आपको पता ही है मैसेज कहाँ भेजना है, 9868107070 पे. और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी.

तो दोस्तों मैसेजेस तो आ रहे हैं और आज के मैसेजेस में मुझे पहली बार बहुत सारे मैसेजेस ये भी ज़रूर आ रहे हैं, मैं अवॉइड कर रही हूँ उसे पढ़ना, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा लग रहा है जैसे आप सबको ना बहुत दिल को छू गया है, क्योंकि सब लोग मैसेज में ये लिख रहे हैं। और देखिए यही खूबसूरती है इस कार्यक्रम की, और हम में से कोई भी इस कार्यक्रम को जब हम पेश करते हैं तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम आपसे जुड़ जाएँ, आपकी किसी खूबसूरत से याद के साथ हम जुड़ जाएँ, बहुत प्यारी सी याद के साथ। ओके, अगला मैसेज हम लेते हैं। अगला मैसेज लिखती हैं ये कविता जी लिखती हैं देवभूमि उत्तराखंड से। ये लिखती हैं कि हमारे यहाँ एक गाय भी है और वो बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है, बच्चे उनके साथ खेलते हैं, रहते हैं, और कहती है उसको पुकारने के लिए हम क्या ही बोलें, हम बस उसे माँ कहते हैं। ये बात तो है, ये बात तो बहुत प्यारी बात कही आपने, थैंक यू कविता जी, थैंक्स अ लॉट। और हमारे साथ एक नए लिसनर हैं जिन्होंने अपना नाम लिख करके नहीं भेजा है, पर उनका नाम एसके कटारिया जी है। एसके कटारिया जी कहाँ से लिख रहे हैं ये भी इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने पहली बार मैसेज लिखा है, और मैसेज में ये लिखा है कि इनके पास भी एक डॉग है जिसका नाम है कैंडी। आपका वेलकम है यहाँ पे, और थैंक यू एसके कटारिया जी मैसेज हमें भेजने के लिए। और अगला मैसेज रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी गाय और बहुत सारी बकरियां हैं। नाइस। और ये गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बदावन से, मेरे पास बैल की एक बहुत सुंदर, एक बहुत प्यारी जोड़ी थी, और खेत में बैलगाड़ी को जोत के सो जाते थे और घर आकर के रुकते थे, उनको प्यार से उनका नाम था बंसी और बल्लू। दैट्स सो स्वीट। और ये एक आपने बहुत प्यारी सी चीज़ आपने बताई कि आके सो जाते थे। सच में हम लोग, मतलब जो बहुत बलिष्ठ जानवर होता है ना, हम इमोशन के बारे में उसके नहीं सोच पाते हैं कि वो उसके भी कोई इमोशंस होंगे, है ना, लेकिन ये तो आपने बहुत प्यारा, बहुत बहुत बहुत प्यारा। ओके, अगला मैसेज है प्रखर जैन जी, आपका मैसेज तो बहुत बहुत लंबा है। प्रखर जैन फ्रॉम मेरठ, हमारे पेट नहीं है पर एक डॉग है जो हमारे घर के बाहर है। ये तो आपने, हाँ ये तो बात सही है, ये तो हम लोग बोल ही रहे थे कि भाई ऐसे तो बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके साथ हम बहुत प्यारा संबंध बना लेते हैं, जिसका नाम मेरी छोटी बहन ने, ये आगे लिखते हैं, जिनका नाम इनकी छोटी बहन ने गोंचू रखा है, और हमारे उसको, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और उसके बहुत क्यूट से बच्चे भी हैं। और आगे मैसेज बहुत लंबा है दोस्तों, मैं बहुत लंबा मैसेज तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ये बहुत प्यारी बात है। हाँ, आगे लिख रहे हैं कि उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत भागदौड़ करी, लेकिन अब उसकी हेल्थ ठीक हो गई है और उसकी भी फैमिली कंप्लीट हो गई है। दैट्स सो स्वीट, बहुत अच्छा। बस कोशिश किया करिए ना मैसेज कम से कम शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा असरदार हो, ताकि पढ़ने में आसान रहे और आपकी बात भी पूरी तरह से सब तक पहुँच जाए। और अगला मैसेज रवि गुप्ता जी कानपुर से लिखते हैं कि इनकी जो पेट है वो बहुत बुजुर्ग हो गई है, उनकी बहुत उम्र हो गई है, और वो बता रहे हैं कि वो देख नहीं सकती है, इनके पास एक पेट डॉग है, फीमेल डॉग, वो देख नहीं सकती है, और जब वो ऑफिस से आते हैं तो वो सुन भी बहुत ज़्यादा नहीं पाती है, लेकिन जब ये उनके पास खड़े होते हैं, जब ये उनके आस पास होते हैं, तो वो उनकी स्मेल से इन्हें पहचानती है और फिर बहुत तेज़ पूँछ हिलाती है और खुश होती है। देख रहे हैं आप, इससे प्यारा, इससे खूबसूरत इमोशनल मैसेज नहीं मिला था अभी तक।

मेघालय, बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टुडे. इन विंबलडन जैनिक सेनम टू लॉक हॉर्न्स विद अलेक्जेंडर ज्वेरेव फॉर मेन सिंगल्स टाइटल दिस इवनिंग. इन क्रिकेट थर्ड डेज प्ले ऑफ वन ऑफ वुमेन्स टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया अंडर वे एट लॉर्ड्स इन लंदन. एंड इन फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना एंटर सेमीफाइनल्स.

0: वाणी आकाशवाणी।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी

भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: I had told you that one of our Urdu poets for this evening is Mirza Ghalib. Ishq mujhko nahi vahshat hi sahi, meri vahshat teri shohrat hi sahi. Kate ki jena taluk humse, kuch nahi hai to adawat hi sahi. Mere hone mein hai kya ruswai, ye wo majlis nahi khalwat hi sahi. Hum bhi dushman to nahi hai apne, ghair ko tujhse muhabbat hi sahi. अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आग ही गर्द नहीं गफलत ही सही. उम्र हरचंद की है बर के खर्राम, दिल के खून करने की फुर्सत ही सही. हम कोई तर के वफा करते हैं ना सही, इश्क मुसीबत ही सही. कुछ तो दे ऐ फलक ना इंसाफ, आह हो फरियाद की रुखसत ही सही. हम भी तस्लीम की खून डालेंगे, बेन्याजी तेरी आदत ही सही. यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वसल तो हसरत ही सही.
1: Our own boy from Lucknow,
0: Cliff Richard, back to back.
1: Congratulations to Lionel Messi,
0: to Argentina,
1: to Harry Kane,
0: to England,
1: to Yamal, to Spain,
0: and to Mbappe and France. From all of us here at Akashvani.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे।

0: ही बदली स्टाइल गया है बम्बई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यस, एक जमाने से कहानी सुनाती आ रही है आकाशवाणी फॉर द लास्ट 90 इयर्स। एंड देयर वाज अ टाइम विद इन दोज लास्ट 90 इयर्स व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड माय संडे मॉर्निंग्स इन विंटर इन द कंट्री साइड आर्म्ड विद अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स एंड सलीम अलीज और विस्लर्स बुक्स ऑन इंडियन बर्ड्स। माई फेवरेट हॉन्ट्स यूज्ड टू बी द बैंक्स ऑफ द यमुना बिहाइंड तिलपत विलेज, सूरजकुंड, द डैम दैट सप्लाइज वाटर टू इट्स पूल, and the ruins of Tughlakabad fort with its troops of rhesus monkeys. There I made acquaintance with waterfowl, skylarks, weaver birds and a variety of wild plants like uk, dehla, adusa, mesquite, Mexican prickly poppy, and lantana, which grow in profusion all around the national capital region. What is all this? I keep talking in air. I'm not getting it. Are you getting it? I'm not getting it. I'm not getting it. If noise be the order of the evening, you can ask for no better host than your host with the most. Supradeep Mukherjee, your main man from the city of joy. Hey baby, I'm a getting it. I'm a getting it.

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। 10 भारतीय सुरक्षित, 1 लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेन में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश की आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। और खेलों में चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ।

वाणी आकाशवाणी तुम तकिन दिख

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और भाई रुकना मना है, थिरकते रहिए, वॉल्यूम करिए थोड़ा सा लाउड, और इस ट्रैक को स्लोली स्लोली एंजॉय कीजिए।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 9 बजे के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिमी एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव करने का आह्वान किया है। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य है सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता गृह मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे पेड़ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में

भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी है। तो ये थे सुबह रात 9 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी याद आती रही।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर रात के 9 बज चुके हैं। हाजिर हूँ मैं आपका पसंदीदा शो लेकर, जहाँ यादें और सुर आपस में बातें करते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। तो आज का एक कार्यक्रम बेहद खास है। हम अपनी आंखों में कुछ खूबसूरत ख्वाब सजाने जा रहे हैं। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो फिर आज कुछ सपने ऐसे भी हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं आगाज, यानी कि शुभारंभ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से

जी हाँ, वेलकम बैक। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और संडे की बिल्कुल प्यारी सी एक शाम है और हम रात की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे रात बीतेगी हम अपने बिस्तर में होंगे और फिर एक बहुत प्यारी सी मीठी सी नींद के साथ सपनों के एक नए संसार में जाएंगे। सपनों का एक सच ये भी है कि ये कभी अकेले नहीं आते, ये किसी खास की याद लेके आते हैं, और जहां खुली आंखों से एक प्यारा सा ख्वाब बुना जा रहा होता है ना। तो आपने भी कोई ख्वाब बुना? अगर नहीं बुना तो मेरे साथ बुन लीजिए। मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और ये है आपकी याद आती रही। तो आइए बुनते हैं एक प्यारा सा ख्वाब।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया, तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आय हाय,
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

0: हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: जी हाँ, वेलकम बैक। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। आपके साथ मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, यानी कि सपनों की। तो ऐसा ही एक ख्वाब देखा एक किसान ने, जिनका नाम है गोपाल चौधरी, और उनकी माँ राजबाला, दोनों ने मिलकर एक ख्वाब देखा कि अपने बेटे पंकज चौधरी को हम एक बहुत ही अच्छा भविष्य देंगे, कि धूप में जलकर हरियाली बोता हूँ, वो किसान अपने बच्चों का भविष्य सजोता है। बिल्कुल बहुत प्यारा सा ये एक मैसेज मेरे पास आया है, जिसको भेजा है हमारे पास मथुरा तहसील छाता से ग्राम बठैन कला कोसी से जी। और लिखने वाले हैं डॉक्टर पंकज चौधरी साहब, जो रिसर्च डिपार्टमेंट एम्स में डॉक्टर हैं। लिखते हैं कि उनके पिता गोपाल चौधरी और माँ राजबाला ने एक सपना देखा छोटी बहन नीलम और छोटे भाई कपिल के साथ। क्या? कि याद रखना बेटा, खेत की हर मेड़ पर मेरे पसीने की कहानी लिखी है। मेरे अपने सपनों से पहले, मैंने अपने सपनों से पहले तुम्हारे सपनों को सींचा है। मेहनत से कभी घबराना नहीं, क्योंकि यही वो दौलत है जो इंसान का सर हमेशा ऊंचा रखती है। और आज मैं धूप बारिश ठंडी हवाओं में खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी आराम सम्मान और खुशियों से भरी हो। मेरी सबसे बड़ी कमाई फसल नहीं बल्कि कामयाबी और अच्छा इंसान बनाना है तुम्हें, क्योंकि मेहनत की रोटी में जो मिठास होती है वो किसी दौलत की थाली में कहाँ होती है। बिल्कुल ये जो सपने उन्होंने देखे वो सपने सच हुए, और उन सपनों का जो साकार रूप है वो आप हमारे सामने है। तो ऐसे ही सपने देखना बहुत ज़रूरी है, उन सपनों को यथार्थ में बदलना कड़ी मेहनत के साथ संभव हो सकता है। आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव उर्फ संजू।
1: मैंने

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और आपके साथ मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, आज हम बात कर रहे हैं ख्वाब की, आपके सपनों की। जब कोई ख्वाब में आया कोई शख्स सुबह उठने के बाद भी दिल के सबसे करीब महसूस हो, तो जानते हैं सपनों की इस जादुई दुनिया का मतलब क्या होता है। जी, वहाँ कोई पाबंदी नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, बस आप होते हैं और आपकी मोहब्बत होती है ना। तो उस बहुत करीब वाले आदमी को जो आपके सपनों के बाद भी सुबह उठने के बाद आपके दिल के सबसे करीब है, महसूस करना चाहेंगे आप?

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास भेजे हैं लोगों ने, अपने सपनों की बात की है। ये हैं पंकज अमरावती महाराज से लिखते हैं कि जो अपने किसान गोपाल चौधरी जी और उनकी माँ माता जी का सपने की बात की पंकज चौधरी जी की, बहुत अच्छा लगा और वो सपना सच हुआ। आज वो एम्स में रिसर्च विभाग में साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा अगला मैसेज मेरे पास भेजा किसने जी, ये हैं सुदर्शन मुखी जी, अनिता मुखी जी, सिमरन मुखी जी, और लिखते हैं शांतिनगर सोनीपत से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अति उत्तम, बहुत सुंदर गीत आप प्ले कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज, गीत बहुत खूबसूरत आप प्ले कर रहे हैं, डॉली ने लिखती हैं कि, और सपनों की बात जब हम करते हैं तो ख्वाब

में आज डायलॉग सुनाना अच्छा लगा बिल्कुल जी। और ये अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा जी, इसको भेजा हमारे पास आनंद बिहार से किशन बजनानी, नीलम स्वाति और केशु रेलू, रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से जी। और अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा जी, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा सा ये मैसेज है। यह मोहम्मद इम्तियाज़ साहब जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। तेरे ख्वाब भी कुछ इस तरह से हैं कि याद कि हर शय पे महल बनाता हूँ, तू है नहीं मुझे मालूम है, फिर क्यों अपने आप में बिखर जाता हूँ। बहुत सुंदर बात लिखी है मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने जवाहर पार्क से। और ये हमारे पास एक दोस्त है हमारी, जिनका नाम क्या जी, आपने अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखा, और लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और ये रेनबो के आरजे जो हैं वो जब दिल से बात करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। शुक्रिया, हम आपसे दिल की ही बात करते हैं। और अगला जो मैसेज मेरे पास किसने लिखा, ये कस्बा गुन्नौर से जी। ये कौन है कस्बा गुन्नौर से हमारे पास, बहुत ही प्यारे से हमारे दोस्त फारूक अली खान साहब, फैजी फराज, फरीन फरहान ताहिरा जी। तो चलिए एक और बहुत प्यारे से सपने की बात हम कर देते हैं कि ख्वाब ख्वाबों ख्यालों के पैकर संवार लो, अक्स मोहब्बतों के दिल में उतार लो, इससे पहले कि गम आंखों को रुला दें, इस जिंदगी को दोस्तों हंस के गुजार लो। प्रेमचंद प्रेमी जैतरा धामपुर बिजनौर से। तो चलिए हम आपके सपनों की बात करते हैं, आपके मंजिलों की बात करते हैं।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और ये है आपका अपना प्रोग्राम है आपकी याद आती रही, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू केपी तोमर साहब मेरठ से लिखते हैं, संजू जी नमस्कार। ख्वाब दिन में भी देखे जाते हैं जिन्हें दिवा स्वप्न कहते हैं, जागते में भी देखे जाते हैं और ख्वाबों की श्रेणियाँ होती हैं साहब। बिल्कुल ठीक बात आप कहते हैं। और ये जो अगला मैसेज मेरे पास बहुत ही प्यारे से एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने लिख के भेजा जी, बिल्कुल वो लिखते हैं कि बारिश की रात थी, शहर खामोश पड़ा था, यह ख्वाब तेरी यादों का दिल में खड़ा था, भीगी हुई हवाओं ने जब तेरा नाम लिया लगता था कि हर कतरा तुझसे ही जुड़ा था। मोहम्मद सरफराज आलम साहब जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। कितना डर होता है ना इस बात का कि कहीं आँख न खुल जाए, और सपनों का टूटना भी एक मीठा दर्द दे जाता है, क्योंकि वो हसीन ख्वाब जब अधूरा रह जाता है तो लगता है कि हम अकेले नहीं, हम अकेले रह गए, बल्कि किसी के साथ मिलकर इस ख्वाब को देखते तो कितना अच्छा होता। तो चलिए चांदनी रात में एक बहुत मीठा सा ख्वाब देख लिया जाए।

जहाँ यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। जब कोई जिंदगी में आता है तो सूखे हुए दरख्त पर भी बहार आ जाती है, सारे अधूरे सपने अचानक पूरे हुए लगते हैं। सचमुच कभी कभी सामने बैठा इंसान ही एक खूबसूरत ख्वाब जैसा दिखने लगता है। यकीन ही नहीं होता कि किस्मत इतनी मेहरबान भी हो सकती है। इसलिए जब इस हालत में हम होते हैं तो बस हमारी खैरियत मत पूछिए आप, बस अपनी खैरियत बताइए आप कैसे हैं। ये हैं हमारे पास कृष्ण कुमार मिश्र जी, दिल्ली में रहते हैं और कहते हैं कि इनके दोस्त अब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, उनके लिए ये शुभकामना देना चाहते हैं। चलिए तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दोस्त को जो ऑस्ट्रेलिया में हमें सुन रहे हैं, और ये प्यारा सा नगमा, खैरियत मत पूछिए बस हमारे साथ बने रहिए।

0: बिल्कुल जी, मेरी हैसियत मत पूछिए, मेरा दिल देखिए, सिर्फ मैं, मेरा वक्त हो चला है आपसे इस कार्यक्रम के आखिरी एक गीत को सुनाने का, इस खूबसूरत एहसास के साथ कि अब मैं संजीव श्रीवास्तव संजू आपसे लेता हूँ विदा। अगली मुलाकात 11 बजे आज रात रंग महफिल में होगी। तब तक मुस्कुराती रहिए, खूबसूरत ख्वाब देखती रहिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं,
0: क्योंकि जो ख्वाब हैं वो हमेशा तभी पूरे होते हैं जब आप उन ख्वाबों के लिए उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ आप कोशिश करते हैं।

अब हकीकत को चेक करने का टाइम आ चला है. टाइम फॉर द न्यूज हेडलाइंस ऑन टॉप ऑफ द आवर ऑन एफएम रेनबो. इंडिया कॉल्स फॉर इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशन्स इन वेस्ट एशिया रीजन आफ्टर अटैक ऑन कमर्शियल शिप कैरिंग इंडियन नेशनल्स ऑफ ओमान कोस्ट. यूएस सेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन टू ऑल वेसल्स इन अमेरिकन मिलिट्री रेडी टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. Mortal remains of 15 Indian tourists who died in Vietnam boat tragedy brought to Ho Chi Minh City to be transported to India at the earliest. Uttar Pradesh creates new benchmark in environmental conservation by planting over 35 crore saplings in a single day. India bagged total of 16 medals including 3 gold at under 23 athletics championships in China. And in Wimbledon tennis, men's singles final between top seed Jannik Sinner and second seed Alexander Zverev underway in London.

वाणी आकाशवाणी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है।

जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 11 बजे के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी। तो ये थे रात 11 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रंगे महफिल की।

जी हाँ, रात के 11 बज चुके हैं और आकाशवाणी रेनबो पर बिखरने लगे हैं सुरों के रंग। ARFM रेनबो पर वक्त हो गया है पसंदीदा महफिल का, यानी रंगे महफिल। और मैं हूं आपका हमनवा दोस्त, आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। जी हाँ, आज की रात हमारी महफिल हसरत की बात होगी। हसरत यानी वो ख्वाहिश जो दिल से निकली मगर मुकम्मल ना हो सकी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर कम निकले। आइए इस खूबसूरत सी रात में हसरतों का दीदार करते हैं जगजीत सिंह साहब की इस मखमली आवाज के साथ।

जी हाँ, एक और बहुत प्यारी सी गज़ल आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल, कभी कभी किस्मत में सिर्फ हसरतें ही रह जाती हैं, लेकिन जनाब दिल की महफिल में जब किसी की यादों का चराग जलता है तो वह अधूरापन भी हसीन लगने लगता है। लेकिन ये हसरतें जब दिल के अंदर से दर्द का एहसास कराती हैं तो महसूस होता है कि कहीं दूर कोई ऐसा अपना जो हमें बिना बताए हमसे दूर चला गया, उसकी सोच को जब हम मन में हृदय में सोचते हैं तो मन कचोटने लगता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल, आपके साथ मैं हूं आपका अपना संजीव श्रोत्र संजू, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और ये है प्रोग्राम रंग महफिल। बिल्कुल, और आपके साथ मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संचू। और वक्त हो गया है 11:22 और 23वें मिनट की तरफ, सेकंड की सुई लगातार दौड़ रही है। रात जब परवान चढ़ती है, महफिल सजी हो तो उसमें अपनों को पाने की टीस ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। हसरतों का एक दौर वो भी है जब इंसान गुजरे हुए वक्त को वापस बुलाना चाहता है ना और एक वक्त वो भी है जब हम अपने किसी बहुत करीब, जिसको हम बहुत चाहते हैं, उसकी तारीफ़ करने के लिए हम कुछ कहते हैं, है ना। तो चलिए आज हम अपने किसी एक की तारीफ़ करते हैं जो सिर्फ हमारा है, हमारा अपना, जैसे आप।

जी हाँ, जब रात परवान चढ़ती है तो दिल के जख्म और गहरी हसरतें सिर उठाने लगती हैं। तब दिल कहता है कि काश वो वक्त ठहर जाता, काश वो साथ न छूटता। ऐसा ही एक नगमा आपको सुना रहे हैं हम आज के रात अपने इस प्रोग्राम रंगे महफिल में। ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है रंगे महफिल, और आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू। हसरत जब हद से गुजर जाए तो वो अश्क बनकर आंखों से बह निकलती है, लेकिन इस महफिल का रंग यही है कि यहाँ दर्द भी सुरीला है।

जी हाँ, रात भर यादों का आना और दिल का मचलना, यही तो आशिकी की सबसे बड़ी हसरत है। कहते हैं ना कि कुछ हसरतें दिल के तहखाने में दफन हो जाती हैं, तभी अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर वो सच हो जाएं तो शायद जीने का मज़ा ही खत्म हो जाए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, और प्रोग्राम है रंगे महफिल, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, वक्त हो गया है रात 11:20। तो एक और बहुत ही प्यारा सा हो जाए एक संगीत में, एक म्यूज़िकल, एक गिफ्ट आपके लिए आज की रात लता जी की आवाज़ में। हमेशा से बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट था, है और रहेगा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, यह है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाश FM रेनबो दिल से दिल तक। और वक्त हो चला है रात के 11:45, 15 मिनट का सफर और हमारा और आपका, और यह है हमारा प्रोग्राम रंगे महफिल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। और मैं आपको बताऊं कि शमा जलती रही इस हसरत में कि कोई परवाना आएगा, शमा जलती रही कि इस हसरत में कि कोई परवाना आएगा। हमारी भी ये महफिल इसी हसरत में सजी है कि आपकी रात सुकून से गुजरे। मुझे लगता है कि आपको ये नगमे या ये गज़लें पसंद आ रही होंगी। और बिल्कुल अगर आप जग रहे हैं हमारे साथ तो हम बिल्कुल आपको एक से बढ़कर एक गज़लें सुना रहे हैं। और यूं ही वादा करते हैं कि आपको हर प्रोग्राम में एक से बढ़कर एक नगमे, बहुत सारी बातें, बहुत ही प्यारे प्यारे ख्यालात आपके सम्मुख आपके साथ हम बांटते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। एक और लता जी का बहुत ही नायाब ये गीत है और बहुत नायाब शेर जिसे हम गज़ल जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी गज़ल है और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही जिंदादिली के साथ उन्होंने गाया लता जी की आवाज़ में। एक और बहुत ही खूबसूरत गज़ल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, मेरा वक्त आ गया आशियाना ढूंढने का, यानी कि आपसे विदा लेने का। दोस्तों, वक्त की आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है ये एक प्रोग्राम, आज की महफिल के आखिरी मोड़ पर। छोड़ जाता हूँ आपको इस खूबसूरत दुआ और गजल के साथ कि आने वाली सुबह आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए। सुनते रहिए AIRFM रेनबो। शुभ रात्रि, नमस्कार। संजीव श्रीवास्तव आपसे लेता है इजाजत।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाएंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जेनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। और बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। और चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। और इसके साथ ही आइए अब ले चलते हैं हम आपको हमारे अगले कार्यक्रम की ओर जिसका नाम है जीरो आर शो।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और इस मामले को सुलझाने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जेनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। और चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित 16 पदक जीते। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

और अब प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए।

नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित गबन को लेकर भाजपा की आलोचना के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और इस मामले को सुलझाने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जेनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने कल 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है भुलाए ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

Thank you.

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

अरबी इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन भी करेंगे। वे गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे श्री गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे। अयोध्या राम मंदिर चंदे के कथित गबन को लेकर भाजपा की आलोचना के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और इस मामले को सुलझाने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन सभी दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने कल 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। टेनिस में शीर्ष वीरता प्राप्त इटली के जानिक सिनर ने आज रात दूसरे वीरता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेर को 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 से हराकर विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। और चीन के अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: कुमार सानू और साधना सरगम जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। 3:12 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय,
0: तेरे तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए।

कुमार सानू जी की आवाज में एक दिल है। 3:32 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल के साथ। 4 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्य पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का भी उद्घाटन करेंगे। वे श्री गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के कथित गबन को लेकर भाजपा की आलोचना के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है और इस मामले को सुलझाने के लिए तत्पर भी है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का

पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। थाईलैंड में आज देर रात बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में पिछले एक सप्ताह में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 44 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बाढ़ से लगभग 2,67,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। टेनिस में शीर्ष वीरता प्राप्त इटली के जानिक सिनर ने आज रात दूसरे वीरता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेर को 6-7, 7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 से हराकर विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। और चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 4:04 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सारेगामा।

कार्यक्रम सारे गामा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं सोनू निगम जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: 4:35 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आय हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोल द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित परागमन मार्ग खुले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वें इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण का महाशुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे। थाईलैंड में कल देर रात बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेर को हराकर पुरुष सिंगल्स खिताब जीता और चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित 16 पदक जीते। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

अपनी सुरीली परंपरा को निभाते हुए वीनस वर्ल्ड वाइल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड आपकी मनपसंद म्यूजिक कंपनी अपने चाहने वाले संगीत रसिकों के लिए एक और भक्तिमय उपहार प्रस्तुत कर रही है, जिसके रचयिता हैं जाने माने गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन, जिनकी मनमोहक धुनों और यादगार गीतों को सुनकर आप भक्ति की संगीत धारा में आनंद विभोर हो उठेंगे और आपके रोम रोम में राम लला और श्याम सखा बस जाएंगे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: पांच बजकर 20 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।